एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, ये अलबेली प्यार की राहें। कहना तो बहुत आसान होता है कि निकलो अपनी समस्याओं से बाहर, कहना तो बहुत आसान होता है कि निकलो अपनी समस्याओं से बाहर, बेड़ियां पैरों में हो तो कोई भी तोड़ दे, बंधन दिलो दिमाग के तोड़ना इतना आसान नहीं होता। 5:42 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: ईशा आकाशवाणी श्रीनगर सुबह च शबजित 500 मिनट शब्द पेश प्रोग्राम सुबूगाही
1: प्रोग्राम सुबूगाही बोजन वेल सरी सामीन कीर्तन सानी तरफ माय बर सलाम कबूल अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम किस आगाज अंदर बोजो कुरान करीम चन यमन केचन आयात मुबारकन हिस तिलावत तर्जुमा।

0: मीडियम 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। सुबह के 6:55 हो रहे हैं। आइए अब आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में खबरें सुनते हैं।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ताः। भारतीय जनता पार्टीति दलेन पश्चिम बंगाल राज्ये 94-200 सदस्यीय राज्य विधानसभायां प्रचंडं जनादेशं प्राप्य इतिहासः विनिर्मितः। अनेन स्वाधीनतानन्तरं प्रथमवारं पश्चिम बंगाल राज्ये भाजपा दलं बहुमतेन सत्तायाम् आगतमस्ति। असम राज्ये सत्ताधारी भाजपा नेतृत्वयुक्तेन एनडीए दलेन पुनरेकवारं जनादेशं प्राप्य तृतीयवारं सत्तायाम् आगम्यते, यत्र हि भाजपा दलेन 73 आसनानि विजितानि। केरलं राज्ये कांग्रेस नेतृत्वेन यूडीएफ इति संयुक्त लोकतांत्रिक घटबंधनेन 90 आसनेषु विजयं प्राप्य निर्णायकरूपेण सत्तां प्रति प्रत्यागमनस्य संकेतः प्रदत्तः, यत्र च कांग्रेस दलेन 63 आसनानि विजितानि। पुदुचेरीत्यत्र राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक घटबंधनेन एनडीए इत्यनेन 30 आसनेषु 18 आसनानि विजित्य सर्वकारं रचयितुं स्पष्ट बहुमतं प्राप्तमस्ति। पश्चिम बंगाल राज्ये भवानीपुर विधानसभा क्षेत्रे भाजपा प्रत्याशी सुवेन्दु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्रीं टीएमसी नेत्रीं ममता बैनर्जीं 15,000 मतैः पराजितवान्। निर्वाचनसूची विशेष सघन पुनरीक्षणस्य एसआईआर इत्यस्य अनन्तरं प्रथम निर्वाचने ममता बैनर्जी नेतृत्वेन तृणमूल कांग्रेस इत्यस्य 15-वर्षीयं शासनं समाप्तं कृत्वा भाजपा दलेन बहुमतं प्राप्तमस्ति। पश्चिम बंगाल राज्ये भाजपा दलेन 60-200, तृणमूल कांग्रेस दलेन 80 आसनानि च विजितानि। अभिनेता परिवर्तित राजनेता च चंद्रशेखरन जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे तमिलग वेत्री खजगम टीवीके इति दलेन तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचने एकैक बृहत्तम दलरूपेण उद्भवन इतिहासः विनिर्मितः। राज्ये 34-200 निर्वाचन क्षेत्रेषु टीवीके दलेन 80 आसनानि प्राप्तानि। भाजपा दलस्य वरिष्ठ नेत्रा अथ प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना ऐतिहासिकः अभूतपूर्वः दिवसोऽयमिति उक्त्वा पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरलं राज्यानां जनानां दलकार्यकर्तॄणां च प्रति आभारः प्रकटितः। ह्यः नवदिल्ल्यां भाजपा मुख्यालये दलकार्यकर्तॄन् सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् अयं राष्ट्रस्य कृते नूतन प्रभातस्य सूचकः अस्ति, तथा च जनाः भारतस्य महालोकतन्त्रे कार्यप्रदर्शनस्य राजनीतिषु एकभारत श्रेष्ठ भारतस्य भावनायाञ्च विश्वासं स्थापितवन्तः।
2: जय पराजय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
1: प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना उक्तं यत् देशस्य 20+ राज्येषु भाजपा एनडीए सर्वकाराः सत्तायां सन्ति, तथा च भाजपायाः मन्त्रः जनता एव जनार्दनः इति। भाजपा दलेन पुदुचेरीत्यत्र विधानसभायाः नेतारं निर्वाचयितुं दलस्य वरिष्ठनेता एवं केन्द्रीयमन्त्री डॉ मनसुख मांडविया एवं पुदुचेरीत्यत्र दलस्य प्रभारी निर्मल कुमार सुराना च केन्द्रीय पर्यवेक्षक रूपेण चितवन्तौ। नामद्वयमपि भाजपा संसदीय मण्डलस्य केन्द्रीय पर्यवेक्षक मण्डलेन अनुमोदितमासीत्। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां मुंबई नगरस्य वानखेड़े क्रीडांगणे गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं 6 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 दिल्ली कैपिटल्स अथ चेन्नई सुपर किंग्स दलयोर्मध्ये

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की। वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। जालू कबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिल त्रगावेत्री कजगम टीवीके ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। टीवीके प्रमुख सी जोसेफ विजय ने पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती हैं। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कशगम डीएमके ने 59 सीटें हासिल की, जबकि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कशगम ने 47 सीटें जीती। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन चेन्नई के कोलाथुत सीट से हार गए। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन तिरुपुर जिले के अविनाशी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में टीवीके की कमाली एस से हार गई। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें अपने नाम की हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 26 सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। एन रंगास्वामी की पार्टी और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। और 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये जीत कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा पुदुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों पर बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। केरलम में राजनीतिक बदलाव के बीच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और दिल्ली में तेज बारिश और तूफान के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले

0: in Mumbai last night, chasing the target of 229 set by Lucknow Super Giants. Mumbai overhauled the score 18.4 overs, losing 4 wickets. Today, Delhi Capitals and Chennai Super Kings will clash at Arun Jaitley Stadium in Delhi at 7:30 p.m. And with that, we end this news bulletin.
1: मीडियम 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। सुबह के 7:10 हुए हैं। समाप्त करें मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन सर्विस के तहत प्रोग्राम पयामे सुबह।

0: कहा जाता है एजुकेशन में और लिटरेसी में।
1: लिटरेसी में बिल्कुल
0: लिटरेट आपको मिल जाएंगे हर गली के
1: डिग्री मिल
0: अंदर,
1: जाएंगे आपके।
0: लेकिन क्या वो सब लिटरेट जो हैं, क्या वो एजुकेटेड हैं? एजुकेटेड होने के लिए स्कूल जाने की
1: जरूरत नहीं
0: है। एजुकेटेड बंदा एक अपनी माँ की कोख से जब निकलता है उसके बाद वो माँ की गोद से ही एजुकेटेड होना शुरू होता
1: हो
0: है।
1: जाता है बिल्कुल।
0: आपके वालिदैन ने आपकी परवरिश कैसे की है, किस तरह की परवरिश आपको मिली है,
1: पहली दरसगाह वही होती है बिल्कुल।
0: वही दरसगाह से शुरुआत आपकी जिंदगी की होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जिंदगी में आदाब लेकर आए। आदाब पर और भी बात करेंगे, क्योंकि ये जिंदगी का जो सफर है ये ताक उम्र इंसान को सिखाता है।
1: सिखाता है हर
0: वो
1: पल
0: कहते
1: पर
0: हैं ना,
1: सिखाता
0: मरते
1: है,
0: दम तक इंसान कुछ ना
1: इंसान
0: कुछ
1: सीखता
0: सीखता है।
1: है बिल्कुल।
0: लेकिन क्या आप सच में सीखना चाहते
1: चाहते
0: हैं?
1: हैं
0: आप में सीखने का मादा है? क्या आपके पास वो बर्तन है जिसमें आप ये चीजें सीख जो मिल
1: सीखेंगे
0: रही हैं उन सीखों को लेकर उसमें जमा करें? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिंदगी का मतलब ही है चलना, और जो
1: बिल्कुल
0: रुक गया तो जिंदगी खत्म।
1: खत्म।
0: जब तक आप चल रहे हैं तब तक जिंदगी जारी है।

0: रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। सामईन, हार के रुकना कोई मतलब नहीं, मतलब तब है कि आप थके हुए हैं, आप कहीं हारे हुए हैं। मज़ा तब आता है जब थक कर हार कर आप दोबारा खड़े होते हैं,
1: दोबारा चलना शुरू करते हैं।
0: बिल्कुल, और अपनी मंजिल को पाने के लिए और कश्मकश करते हैं और मेहनत करते हैं, तब जिंदगी के मज़े आते हैं। क्यों रहूँ?
1: बिल्कुल। तो तबरेज़, हम बात कर रहे थे आदाब जिंदगी के हवाले से।
0: जी,
1: जब आप बोलते हैं तो आपके अल्फाज से किसी के दिल आजारी ना हो, ये भी एक आदाब
0: जिंदगी है।
1: जी, और बात इतनी करें जितनी ज़रूरत हो, और दूसरे की बात काटना

0: छे आकाशवाणी। सुबह 7:05 सपद खबर नाम है चुस बु तजम्मुल अहमद गोड़ अख नजर खास खास खबरन हजन सुर्खियन पे। बीजेपी यन चे मगरबी बंगाल असेंबली चुनावन मज बार अक्सरियत सान कामयाबी प्रवमच। आसामस मज चे एनडीए न बे एक फिर कामयाबी प्रवमच। केरलमस मज चे यूडीएफ न नमनमत सीट जेनमच यल जन पुडुचेरी मज एनडीए कामयाब सपदमुत छु। तमिलनाडुस मज चे सियासतदान बनेमतिस अदाकार विजय जोसफ सिंजी पार्टी टीवी के एन बार कामयाबी हासिल करमच। वजीर अजम नरेंद्र मोदी चे चुनावन अंदर कामयाबी भारत चन जमहूरीत आईनी कदरन हज कामयाबी करार दिचमच। तो बचाव वजीर राजनाथ सिंहन तुल प्रयागराज उत्तर प्रदेश मज रात शामस नॉर्थ टेक सिंपोजियमस दस। खबर तफसील सान। भारतीय जनता पार्टी चे मगरबी बंगाल असेंबली चुनावन मज बार अक्सरियत सान कामयाबी प्रवमच। तो ताजा तरीन आदादुशुमारो मुताबिक चे जहत चुनमत मेंबर असेंबली मज पार्टी जहत शे सीटन पेट कामयाबी प्रवमच यल जन तृणमूल कांग्रेसन शीत सीट जेनमच चे। बीजेपी दिस चुनावन मज जहत शे सीट जेनन पत चे ये कत हतमी जी रियासत मज चु ममता बनर्जी हिंजी सरबरही वाली तृणमूल कांग्रेसुक इक्तदार अंद वोतमुत तो वन आस रियासत मज भारतीय जनता पार्टी हिंज हुकूमत। अद दौरान चे वजीर आला ममता बनर्जी ते पन्निस मजबूत गढ़ बाबनीपुरस मज पन्निस सबिक पार्टी लीडर सुवेंद्र अधिकारी उस बीजेपी उम्मीदवार ओस तस निश 15,000 खोत ज्यादा वोटों से हारियमच। अद दौरान चु असामस मज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या एनडीए लगातार त्रेमी फिर चुनाव जूनमुत अति चे कुल अखत शतवह सीटों मज बीजेपी यन दोईशीत कांग्रेसन कुनू बीओपीएफन दह एजीपी यन दह तो बाकी पार्टियों कुल 5 सीट जेनमच। तो यथ कन बनावे रियासत मज बीजेपी सरबरही वोल कौमी जमहूरी इतिहाद बे एक फिर हुकूमत। केरलमस मज यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंटन अखत 40 मेंबर असेंबली मज नमनमत सीट हासिल करमच यम किन इतिहादुक हुकूमत बे एक फिर बनाउन तय छु। अति चे कांग्रेसन 63 सीपीआईएम शतु आईयूएमएल जुतवु तो सीपीआई एन 8 सीट जेनमच यल जन बाकी जमाचो 21 सीट हासिल करमच छे। तमिलनाडुस मज सियासतदान बनेमतिस फिल्म अदाकार सी जोसफ विजय सिंजे तमिलागा वेत्री कजागम यानी टीवी के जहत 34 मेंबर वाजिन असेंबली मज अखत 8 सीट जेनमच यल जन अति डीएमके हस 69 एडीएमके 87 कांग्रेस 5 तो बाकी जमाचन 8 सीटन पेट कामयाबी मेजमच छे। यथ कन छे ये कत ताय जे टीवी के बनावे अति हुकूमत। पुडुचेरी मज छे 30 मेंबर असेंबली मज एन रंगास्वामी सन सरबरही वाजिन एनडीए हुकूमत बे इक्तदारस आमच। अति छे ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस 2 बीजेपी 4 कांग्रेस 1 तो बाकी जमाचन 10 सीट मेजमच। अद दौरान कोर वजीर अजम नरेंद्र मोदी रात नई दिल्ली मज बीजेपी के सदर दफ्तर पे पार्टी लीडर तो कारकुनन खिताब यह दौरान तमो मगरबी बंगाल आसाम पुडुचेरी तमिलनाडु तो केरलमस मज पार्टी लीडर तो वर्करन हुंद शुक्रिया करान रातुक दो बीजेपी बापत अख गैर मामूली दो करार दुत। तमो वोन जी यह चु मौक बापत यह चु कौम बापत अख नो सबूत तिकाज लोको चु बे एक फिर भारत किस जमहूरियत पे भरोस कोरमुत। तमो वोन जी असेंबली चुनावन अंदर बीजेपी तो अमचन इतिहादी जमातन हज कामयाबी छे दरअसल भारत चन जमहूरी तो आईनी कदरन हज कामयाबी तो लोको चु एक भारत श्रेष्ठ भारत किस नजरियास पन एतमाद भरोस पेश कोरमुत। मरकजी दाखिल वजीर अमित शाह बीजेपी सदर नितिन नवीन तो बाकी पार्टी लीडरों तु चु चुनावन मज बार कामयाबी प्रावनस पे पार्टी वर्करन लीडरन तो आम लोकन मुबारक कोरमुत। अद दौरान चु बीजेपी च सीनियर लीडर तो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड च चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी आसाम मगरबी बंगाल तो पुडुचेरी मज असेंबली चुनावन अंदर शानदार जीत दर्ज करनस पे खुशी बावान वोनमुत जि तिहजि जमात चे लोकन हिज बजाई यकीनी बनावन बापत प्रेत सुत्रिस पे काम करमच। रात वोन जुनूबी कशीर हिंदिस कोलगाम जिलस मज पार्टी वर्करन हिंदिस अकिस इजतिमास खिताब करन पत आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत कत करान तिमो।
1: लोग आजकल बहुत जागरूक हो चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस विकसित भारत को हर कोने में पहुंचा

आप लता मंगेशकर को सुन रहे थे फिल्म दोस्ती से। ईशा आकाशवाणी श्रीनगर 7:35 दिन सब दिन उलिबोजो कशरण खबरन हन बुलेटिन।

रात 9:30 पर कश्मीरी अदबी मैगजीन समाप्त करें संगरमाल। मौजू कशुर अफसान तो मौजूद दौर। शब 10 बजे फिल्मी नगमों का फरमाइशी फोन इन प्रोग्राम पेश होगा। हेलो आपकी फरमाइश। प्रोग्राम पेश करेंगे रोहित मुश्ताक।

हम सफर ये 5 मिनट प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा सुबह 12:45 पर। मौजू है नजर पूरा करने के अहकाम। आज आप इस मौजू का तीसरा शुमारा सुनेंगे। इस मौजू पर बात करेंगे प्रोग्राम के रूहे रवा मौलाना फयाज अहमद जरू साहब, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सलीम एजाज कपरा। सुबह 9 बजे मकामी रोजनामों की सुर्खियां पेश होंगी। सूफी सदा यह प्रोग्राम पेश होता है सुबह 10 बजे। आज का प्रोग्राम मारूफ सूफी शायर समद मीर से मुतलिक है। तहरीर पेशकश गुलाम रसूल आखून।

शेख अब्दुल अजीज और साथी सोफियाना मौसीकी पेश करेंगे दिन के 11:30 पर और फिर 2:30 इनसे आप बेतरतीब मकामी हुसैनी और मकामी आशरन सुनेंगे। ख्वातीन की महफिल बज़्म निस्वार आस्ता होगी 12:40 पर। दिन के 1:10 पर एनसीईआरटी का तैयार करदा सुपानसर प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा उमंग।

सपहर 3 बजे प्रोग्राम पेश होगा फौजी भाइयों के लिए। पहाड़ी प्रोग्राम सपहर 4 बजे नष्ट होता है। पंजाबी अदबी मैगजीन समाप्त करें सपहर 4:30 पर। गोजरी प्रोग्राम शाम 5 बजे नष्ट होता है। दयाती भाई अपना प्रोग्राम सुनेंगे शाम 6:05 पर।

हालात और वाकयात की जानकारी आपको मिलती है प्रोग्राम शहरबीन के जरिए शाम 7 बजे। प्रोग्राम वादी की आवाज़ का वक्त नशरिया है रात 8 बजे। समीन, यहीं आपके बाद हमारे यहाँ से नशर होने वाले प्रोग्राम।

मीटिंग 268 अशारिया 8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। सुबह के 8 बज रहे हैं। आइए अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में खबरें सुनते हैं। खबरों का जरा सा इंतज़ार फरमाइए।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार। पुद्दुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बरकरार। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन की जीत। तमिलनाडु में टीवीके 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। राज्य में किसी को बहुमत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों ने प्रदर्शन की राजनीति पर भरोसा जताया। ईरान के ड्रोन हमले में संयुक्त अरब अमीरात में 3 भारतीय नागरिक घायल। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाम दल को 1 सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पे आ रही है भाजपा। लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस की इस हार से राज्य की राजनीति एक नई मोड़ पर आ चुकी है। पहले ही बताया गया था कि चुनाव आयोग के निर्देश पर दक्षिण 24 परगना की फलता विधानसभा के क्षेत्र में पुनः चुनाव 21 मई को होगा। उस सीट की गिनती 24 मई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुशासन की राजनीति की जीत हुई है। जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई सरकार हर संभव प्रयास करेगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कजगम डीएमके ने 59 सीटें हासिल की, जबकि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम ने 47 सीटें जीती। इससे जुड़ी और जानकारी हमारे संवाददाता से।
2: तमिलनाडु के सियासी पर्दे पर फिल्म स्टार विजय ने सुपर हिट एंट्री ली और उनकी पार्टी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। थलाइवा, जन नायकन, मरसल, सरकार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के नायक रहे जोसेफ विजय अब फिल्मी पर्दे पर नहीं बल्कि असल जीवन में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उनके सामने राज्य के मतदाताओं के सपनों को पूरा करने की बड़ी चुनौती है। 51 साल के अभिनेता को आज उनकी पार्टी के विधायकों द्वारा नेता चुने जाने की संभावना है। पार्टी गठबंधन सरकार के गठन को लेकर फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं और विजय के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती सरकार बनाने और उसे बेहतर ढंग से चलाने की होगी, क्योंकि इस बार उन्हें अपनी कामयाबी की स्क्रिप्ट खुद लिखनी है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर 126 सदस्यीय विधानसभा में 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। भाजपा को 82 सीटें मिली, जबकि उसके सहयोगी असम गण परिषद एजीपी ने 9 सीटें और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 10 सीटें जीती। दूसरी ओर कांग्रेस को 19 सीटें, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और रायजोर दल को 2-2 सीटें और टीएमसी को 1 सीट मिली। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने निर्णायक जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती, जबकि उसके सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें जीतकर गठबंधन को पूरे राज्य में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। राज्य भर में लगभग सभी प्रमुख यूडीएफ नेता स्पष्ट बहुमत से निर्वाचित हुए। सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ से सीपीआईएम ने 26, सीपीआई ने 8 और आरजेडी ने 1 सीट हासिल की। विधानसभा में एक भी सीट न होने के बावजूद भाजपा ने इस बार 3 सीटें अपने नाम की। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 30 सदस्यीय विधानसभा में 18 सीटों के आरामदायक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। इसके घटक दलों में अखिल

0: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 12 सीटें, भाजपा ने 4 सीटें जीती, जबकि अन्य सहयोगी दलों अखिल भारतीय, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम और एलजेके ने एक एक सीट हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही।
1: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं।
1: देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही।
0: श्री मोदी ने कहा कि भाजपा का मंत्र है नागरिक ही भगवान है और पार्टी जनता की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि देश में एक नया सवेरा हुआ है और जनता ने भारत के महान लोकतंत्र, प्रदर्शन की राजनीति और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में अपना विश्वास जताया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने चारों राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की जनता को भाजपा और एनडीए पर अपना समर्थन और विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल, असम और पुद्दुचेरी में पार्टी की जीत का स्वागत किया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जीत को भय, तुष्टीकरण और घुसपैठियों को पनाह देने वालों के खिलाफ जनता की करारी प्रतिक्रिया बताया। श्री शाह ने असम की जनता को ऐतिहासिक हैट्रिक जनादेश के लिए बधाई दी। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में एनडीए सरकार द्वारा सुरक्षित, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील राज्य के निर्माण के लिए किए गए अथक प्रयासों का सशक्त समर्थन बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने जमैका की विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत और जमैका के बीच साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल पर्यटन, खेल, मनोरंजन और बहुपक्षीय मुद्दों में संबंधों को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में एलपीजी वितरकों के यहाँ आपूर्ति की कोई कमी नहीं हुई है और पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं। कल दोपहर नई दिल्ली में हुई अंतर मंत्रालयी बैठक में अधिकारियों ने नागरिकों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी न करने और सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने का आग्रह किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में प्रमुख अधिकारियों और मुख्य वार्ताकारों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों की प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत से निर्यात करने के लिए अधिक व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के तरीकों पर चर्चा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान के ड्रोन हमलों के बाद कल फुजेराह तेल उद्योग क्षेत्र में भीषण आग लग गई। पिछले महीने युद्ध विराम लागू होने के बाद से संयुक्त अरब अमीरात पर यह पहला हमला है जिसमें भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सोमवार के हमलों ने 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद से हफ्तों से बनी शांति को भंग कर दिया। ईरान ने इस कदम को खारिज करते हुए चेतावनी दी कि जलमार्ग में प्रवेश करने वाली प्रत्येक जहाज पर हमला किया जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में ईरानी ड्रोन और मिसाइल

0: ने संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाया, जिससे फुजेराह में एक प्रमुख तेल संयंत्र में आग लग गई। एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी ने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि ईरान के संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाने की कोई योजना नहीं है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इन हमलों को हिंसा और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन बताया है और चेतावनी दी है कि ये देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। फुजेराह पर ड्रोन हमलों की खबरें ऐसे समय में सामने आई जब अमेरिका और तेहरान के बीच युद्ध विराम वार्ता ठप्प पड़ी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: अमेरिका और ईरान के बीच नई चेतावनियों और सैन्य कार्रवाइयों के दावों के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अमेरिका के जहाजों को निशाना बनाता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पश्चिम बंगाल में उद्योग जगत और व्यापार संघों ने विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी है। व्यापारिक नेताओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश अनुकूल नीतियों के एक नए युग की शुरुआत करेगी। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा निर्धारित 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने 18 ओवर और 4 गेंद में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। रॉयल रिकेल्टन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गांगेय पश्चिम बंगाल सहित उत्तरी राज्यों के कुछ हिस्सों में दिन के समय गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीष शर्मा।
2: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम बंगाल में भाजपा की रिकॉर्ड जीत, ये आज सभी समाचार पत्रों की पहली सुर्खी है। असम, पुदुचेरी में एनडीए गठबंधन के सर सत्ता का ताज सजने, तमिलनाडु में टीवीके के धमाल और केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत को भी मुख्य अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, छा गए बाबू मोशाय। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, बाबू मोदी शाय। तमिलनाडु में टीवीके की लहर को प्रकाशित करते हुए हिंदुस्तान ने सुर्खी दी है, विजय की सुनामी में सियासी दिग्गज साफ। केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत पर पंजाब केसरी लिखता है, केरलम में कांग्रेस को सत्ता, सीएम पिनराई का इस्तीफा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही भाजपा की जीत पर नवभारत टाइम्स ने जीत के नायक मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, असम में सत्ता की हैट्रिक। भाजपा के पक्ष में आए भारी जनादेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान, बदला लेने के बजाय बदलाव के लिए करें काम को भी ज्यादातर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। हिंदुस्तान ने जनादेश का संदेश शीर्षक से संपादकीय में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हाथों सत्ता फिसलने का विश्लेषण करते हुए लिखा है, अव्वल तो एसआईआर की जरूरत से ज्यादा आलोचना तृणमूल को भारी पड़ी। दरअसल इससे संदेश गया कि पार्टी संदिग्ध वोटरों को बचाना चाहती है। होर्मुज जल क्षेत्र पर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम से बढ़ता तनाव भी मुख्य समाचार पत्रों की सुर्खी बना हुआ है। और आंधी बारिश ने दिल्ली को दिलाई सबसे साफ हवा, 88 रहा AQI। मौसम के मिजाज पर यह है नवभारत टाइम्स के शब्द।
1: धन्यवाद मुनीष। और अंत में एक बार मुख्य समाचार फिर। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार, पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बरकरार, केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन की जीत, तमिलनाडु में TVK 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, राज्य में किसी को बहुमत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों ने सुशासन की राजनीति पर भरोसा जताया। पश्चिम बंगाल के औद्योगिक निकायों और व्यापार संघों ने भाजपा की जीत का स्वागत किया। और IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लाइव मॉर्निंग शो पर मिस सुबह आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं और अपने मेजबान रूफ अली और मेरे साथ
1: तबरेज मदनी के साथ। समय जैसा कि आप जानते हैं कि आज वर्ल्ड आजमा डे है और इस आजमा को लेकर बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारे फेक न्यूज़ आ जाती हैं, लेकिन ये आजमा होता क्या है, इससे कैसे निपटा जा सकता है, ये मिथ्स क्या हैं, इस पर आइए पहले नज़र डालते हैं। उस पर बात करने के लिए सीधा चलते हैं प्रोफेसर डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह साहब के पास, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है चेस्ट मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। आइए उनसे जानते हैं आज के दिन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम
1: वालेकुम डॉक्टर साहब, आप ठीक हैं?
2: बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह।
1: डॉक्टर साहब, आज वर्ल्ड आजमा डे है, तो इस हवाले से आज के दिन क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए, वर्ल्ड एजमा डे हम मई 5 को मना रहे हैं। ये बेसिकली हर फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को मनाया जाता है और एजमा हम देखते हैं कि एक कॉमन डिजीज है जिसकी इंसिडेंस जो है न कि कश्मीर में बल्कि पूरे मुल्क में या इवन इन द वर्ल्ड काफी बढ़ रही है। इसमें हर साल एक थीम होता है जिससे हम एक लोगों को एजुकेशन फराहम करते हैं। तो इस साल का थीम है कि एक्सेस टू एंटी इन्फ्लेमेटरी इनहेलर्स फॉर एवरीवन विद एजमा, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि अगर हम किसी को एलर्जी होती है, एलर्जिक एजमा होता है, तो वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेता है उस टाइम इन द फॉर्म ऑफ एंटी एलर्जिक या कोई इनहेलर SOS बेसिस पे। लेकिन जो बेसिस ट्रीटमेंट की होती है, जैसे हम एक डायबिटिक को ट्रीट करते हैं, जैसे एक हाइपरटेंसिव को ट्रीट करते हैं, कि इनको कुछ मेडिसिन अपनी बीमारी कंट्रोल रखने के लिए कंटिन्यूस खानी पड़ती है। लेकिन ये लोगों में काफी मिथ्स हैं कि हमें जी इसका ट्रीटमेंट तभी करना है जब हमें सिम्टम्स आ जाएंगे। तो इसी लिहाज से जो हमने इस टाइम थीम रखी हुई है कि हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि जो एजमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक पेशेंट को कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट लेना पड़ता है ताकि उसकी इन्फ्लेमेशन यानी कि जो सूजन होती है हमारे विंड पाइप में, उसको हम कंट्रोल में रख पाए। तो यही कोशिश रहेगी कि हम लोगों को अवेयर कराएं कि एजमा है क्या, कैसी बीमारी है, उसके क्या कॉजेज होते हैं, कैसे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, और जो ये एक जानलेवा बीमारी साबित हो सकती है उसको हम कैसे एक उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि एजमा जो है एक प्रिवेंटेबल डिजीज है, ये क्योरेबल नहीं है। यानी कि हमें इसको कंट्रोल करने के लिए एक पेशेंट को हमेशा कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट रखना पड़ता है ताकि उसकी प्रॉब्लम दिन ब दिन एग्रीवेट ना हो।
1: डॉक्टर साहब, लोगों में एक बहुत ज़बरदस्त मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर हम इनहेलर्स पे आ जाते हैं या वो जो हमारे पास इनहेलर छोटे पोर्टेबल पंप्स होते हैं उन पे आ जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार हो गए हैं और उन्हें लगता है कि ये दवाई हमें ज़िंदगी भर नहीं छोड़ेगी, इसके बारे में कुछ बताएं।
2: बिल्कुल, ये काफ़ी एक बड़ी मिथ है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट होता है अस्थमा का, दैट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अगर हम ये मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स लें तो इसे काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, स्टोमक इश्यूज, बोन इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर इसी फॉर्म को हम, इसी मेडिसिन को हम अगर इनहेल फॉर्म में लेते हैं तो इसके साइड इफेक्ट्स जो है वो ऑलमोस्ट निल हो जाते हैं। तो सेकेंड चीज जो ये एडिक्टिव मिथ है कि एडिक्शन हो जाता है इसका या कंटिन्यूअसली देना पड़ता है। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारा एम होता है कि पेशेंट को जो बीमारी है वो कंट्रोल में रहे और वापस ना आए और उसकी सीवियरिटी ना बढ़े। तो इसको इस कंट्रोलर कंट्रोल करने के लिए इसके लिए बेस्ट रहता है कि वही यही इनहेल मेडिसिन ले, क्योंकि पेशेंट इस कंसेप्शन में होता है कि मुझे ये सिम्टम्स कंट्रोल करने के लिए है। लेकिन नहीं, हमारा एम होता है कि उसकी बीमारी आगे ना बढ़े, उसके अटैक्स ना हो, तो जिसकी वजह से उसको ये पेशेंट को ट्रीटमेंट जो है थोड़ा प्रोलॉन्ग पीरियड तक लेना पड़ता है और तब भी लेना पड़ता है जब उसके सिम्टम्स कंट्रोल में हो। तो इसी वजह से एक तासुर ये है कि ये कंटिन्यूसली लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा और इसमें जो तभी लेना पड़ेगा जब ये डिजीज जो है सीवियरिटी इख्तियार कर चुकी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम अर्ली स्टेज पे ये मेडिकेशन स्टार्ट करें, बीमारी भी कंट्रोल में रहेगी और हो सकता है ही कैन लेटर ऑन बी शिफ्टेड टू SOS मेडिसिन, यानी कि तभी लें जब जरूरत पड़े, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स की एक पेशेंट खुद ही परसीव कर ले कि अब मैं एसिम्टोमेटिक हूं तो मैं ट्रीटमेंट स्टॉप कर लूंगा।
1: जी डॉक्टर साहब, आज के दिन क्या तैयारियां हैं, किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप ये वर्ल्ड आजमा डे?
2: देखिए, हमारा प्रोग्राम तो यही है कि अवेयरनेस हम पैदा करें लोगों में इन द फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में भी हमने कोशिश की है कि लोगों को अवेयर करने की। वी आर ऑर्गेनाइजिंग वेबिनार इन द इवनिंग फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, क्योंकि इसमें

0: में से काफी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में भी है, तो उनके लिए भी हमने एक वेबिनार इवनिंग में ऑर्गेनाइज किया है, एवरीबॉडी इज फ्री टू ज्वाइन दैट, जिसमें हम कुछ लेक्चर्स देंगे और एक अवेयरनेस पैदा करेंगे अमंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रिगार्डिंग द मिथ्स ऑफ एस्मा।
1: आखिर पर कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों के लिए?
0: मैं ये कहूँगा कि एस्मा जो है एक प्रिवेंटेबल डिजीज है, ये कोई हम इसको बिल्कुल एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं जो एस्मेटिक्स होते हैं, सब्जेक्ट टू जो उनका ट्रीटमेंट है वो रिलीजियसली फॉलो करें ऑन मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, तो वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है एज अ कॉमन पर्सन स्पेंड्स हिज लाइफ अगर वो रेगुलरली अपना ट्रीटमेंट लें।
1: डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आकाशवाणी को अपना समय देने का, वक्त देने का, और ये जो आपने बातें कही हमें पूरी उम्मीद है कि लोग इससे इस्तेफादा जरूर उठाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के दिन। तो सामाइन, ये थे प्रोफेसर डॉक्टर नवीद नजीर शाह साहब, जिनसे हमने बात की एस्मा को लेकर, और उन्होंने भी यही कहा कि एस्मा एक मैनेज करने वाली बीमारी है, इसको हम मैनेज कर सकते हैं, इसको हम कंट्रोल में रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें लगातार डॉक्टर से राबते में रहना पड़ेगा और दवाइयों का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा, दवाइयां वक्त पे लेनी पड़ेंगी। अगर हमने दवाइयां लेना छोड़ दिया तो ये बीमारी जो है ये खतरनाक वो शक्ल इख्तियार कर सकती है।
2: बिल्कुल, डॉक्टर साहब ये भी बोल रहे थे कि ये जो इन्हेलर आप हम ये जो मरीज होते हैं वो लेते हैं तो ये पहला इलाज नहीं है, बल्कि ये मतलब आखिरी नहीं है, पहला इलाज है। सो आप जब कोई मेडिसिन लेते हैं तो पहले वो पूरे जिस्म में जाता है और फिर वो जहाँ पे पहुँचना होता है फेफड़ों में फिर पहुँच जाता है, लेकिन इन्हेलर जो है ये बराह रास्त अपनी जगह पर पहुँच जाता है। सो ये आदत नहीं है बल्कि एक तहफ़ है इन्हेलर।
1: बिल्कुल सही फरमाया आपने, और इसीलिए लोगों को चाहिए कि गूगल से दवाइयाँ ना पूछें, डॉक्टर से मशवरा करें, डॉक्टर से राबता करें और उसके बाद अपनी जो ट्रीटमेंट है उसे कंटिन्यू करें।

0: आप सुन रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पायम सुबह। और समीन, जैसे कि आप जानते हैं कि कल से जो है बारिशें हुई और कहीं कहीं जगह पे बर्फबारी भी हुई और तेज़ आंधियां भी चली। आप जानना चाहेंगे कि हमारा जो राष्ट्रीय मार्ग है, नेशनल हाईवे हैं, वहाँ से जो उसका क्या हाल है। वहाँ से हम जानना चाहेंगे, हमारे जो नुमाइंदे हैं मोहम्मद तस्कीन अभी इस वक्त फ़ोन कॉल पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे।
1: जी हाँ, आइए जानते हैं मोहम्मद तस्कीन साहब से कि आज नेशनल हाईवे का क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
1: तस्कीन साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। हमें बताएं, मुख्तसरन ही जानना चाहेंगे कि सड़क का क्या हाल है।
2: जी, जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बिल्कुल ट्रैफिक के लिए बहाल है और जो मामूल का ट्रैफिक आज सुबह से फिर शुरू किया गया है। जो रूटीन में दो तरफा ट्रैफिक है मुसाफिर गाड़ियों को दोनों तरफ से, और जो माल बरदार गाड़ी है ट्रक और जो ईंधन बरदार टैंकर वगैरह होते हैं तो उन्हें भी दो तरफ से चलने की इजाजत है। कल जो रामबन बरहाल सेक्टर था इसमें कई बार हल्की हल्की बारिशें हुई दिन भर, तो अलबत्ता आज सुबह से धूप निकली हुई था। हम जो महकमा मौसमियात है उन्होंने मजीद जो पेशन गोई आगा रखी कि बादलों के साथ साथ गरज चमक और बारिशों का इम्कान आज भी जाहिर किया गया और कल 6 तारीख के लिए भी ऐसी पेशन गोई की गई है। तो फिलहाल जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, इस पर ट्रैफिक की जो आम दरफ्त बराबर चल रही है और जो गाड़ियां हैं सैकड़ों की तादाद में अपनी अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ रही हैं। इसके अलावा अगर कहेंगे तो कल जो दोपहर बाद जो अचानक से और गैर मुतवक बर्फबारी हुई, जो मुगल रोड है पुंछ और वादी कश्मीर को जोड़ने वाला शुपियन के रास्ते से, तो उस पर भी बर्फबारी हुई और कल देर तक वहां पर करीबन 200 से करीब गाड़ियां जो है वो मुसाफिर गाड़ियां फंस गई थी अचानक बर्फबारी की वजह से। तो उसके बाद जो इंतजामिया है वहां पर हरकत में आई थी, तो पुंछ से भी और कश्मीर से भी, तो उनकी कोशिशों से फिर रात देर तक जो ट्रैफिक वहां पर फंसा हुआ था उसे भी अपनी अपनी मंजिलों की तरफ निकाला गया था।
1: बहुत बहुत शुक्रिया तस्कीन साहब ये अपडेट देने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि रास्ता ठीक रहे और लोग अपनी अपनी मंजिलों को पहुंच जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: शुक्रिया।
1: तो समय ये थे मोहम्मद तस्कीन, हमारे नुमाइंदे, जिन्होंने हमें एग्जैक्टली डाटा दिया कि अभी सड़क का क्या हाल है।
0: तो तबरेज पहले रुकते हैं, चंद तजारती पैगाम सुनते हैं।
1: जी जरूर।
3: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
4: अरे राकेश, चिप्स खाएगा? एक मिनट यार, ये कुछ अजीब टेस्ट कर रहे हैं।
5: अच्छा, जरा पैकेट दिखा। ओए, ये तो एक्सपायर्ड है।
4: क्या
6: ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें, खाने पीने की कोई भी चीज खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करें। अगर कोई एक्सपायर्ड फूड आइटम्स बेच रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं 1800-112100 पर।
7: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार।
8: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
9: बस एक बार, सिर्फ एक बार, और हर बार लगता है क्या ही तो हो जाएगा, सेफ है यार। लेकिन ड्रग्स सिर्फ एक बार का मजा नहीं देता, धीरे धीरे सेहत, दोस्ती, सपने और जिंदगी पर असर डालता है। किडनी और लिवर खराब होने लगते हैं, बेचैनी और तन्हाई बढ़ने लगती है, दिल तेज धड़कने लगता है और सोच धुंधली पड़ती है, और रिश्तों में दूरी आने लगती है।
10: पर क्या कर सकते हैं?
9: गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेकर आए हैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। बस अभी टेलीमानस हेल्पलाइन 14416 पर कॉल करो। यहां सुनते हैं बिना जज किए, समझते हैं और मदद भी करते हैं। अगर कोई और भी इस दौर से गुजर रहा है तो समय रहते रिपोर्ट करने से एक जिंदगी बच सकती है।
11: आओ चलें और एक नया रास्ता चुनें, जिंदगी की असली पहचान बचाएं और बनाएं नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
0: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। सुबह के 8:30 हो रहे हैं। आइए अब आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू में खबरें सुनते हैं।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मगरबी बंगाल और आसाम में बीजेपी नई सरकार बनाने के लिए तैयार है। पुदुचेरी में भी एनडीए ने अपना इकतदार बरकरार रखा है। केरलम में कांग्रेस के जेर क़यादत यूडीएफ फिर से इकतदार में आ गया है, जबकि तमिलनाडु में किसी भी पार्टी को वाज़ह अक्सरियत नहीं मिली है। टीवीके पार्टी 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अवाम ने कारकर्दगी की सियासत में अपने एतमाद का इजहार किया है। मगरबी बंगाल के सनती इदारों और तजारती अंजुमनों ने बीजेपी की कामयाबी का खैर मकदम किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात में ईरान के ड्रोन हमले में 3 भारतीय शहरी जख्मी हो गए। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात में 2 महाजों पर तारीख रकम हुई है। मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने पहली मर्तबा जबरदस्त अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में पहली बार चुनाव लड़ने वाली तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इधर दीगर असेंबली इंतखाबात में आसाम और पुदुचेरी में अवाम ने फिर से हुक्मरान पार्टियों में एतमाद का इजहार किया है, जबकि केरलम में लोगों ने तब्दीली के हक में राय जाहिर की है। मगरबी बंगाल में बीजेपी ने 206 सीटें जीतकर असेंबली में 2/3 से ज्यादा अक्सरियत हासिल की है। इस तरह तृणमूल कांग्रेस का 15 साल से जारी दौरे हुकूमत खत्म हो गया है। तृणमूल कांग्रेस को 80 सीटें मिली हैं, जबकि एक सीट पर उसे सबकत हासिल है। 293 असेंबली सीटों में से 292 हलकों के नतीजों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस और आम जनता उन्नयन पार्टी को 2-2 सीटें मिली हैं, जबकि सीपीआईएम एक सीट पर कामयाब हुई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: मगरबी बंगाल में बीजेपी ने तकरीबन 45.84% वोटों के साथ 206 सीटें जीती हैं। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस का वोट तकरीबन 8% कम होकर 40.8% रह गया, जबकि उसने 2021 के इंतखाबात में 48.5% वोट हासिल किए थे। तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े रहनुमाओं को हार का सामना करना पड़ा है। इस इलेक्शन में बीजेपी ने न सिर्फ शिमाली बंगाल में बड़ी कामयाबी हासिल की, बल्कि तकरीबन पूरे जनूबी बंगाल में भी अपनी मजबूत गिरफ्त बना ली। ममता बनर्जी को अपने भवानीपुर हलके में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा वोटों से हराया। अधिकारी ने नंदीग्राम सीट भी जीती है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: तमिलनाडु में अदाकार से सियासतदान बनने वाले विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। पार्टी की तश्कील के बाद पहले चुनाव में टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं और वो वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय पिरम्बूर और तिरुची ईस्ट दोनों हलकों से चुनाव जीत गए हैं। 234 रुकनी असेंबली में हुक्मरान डीएमके पार्टी को 59 सीटें मिली हैं, जबकि उसकी हरीफ पार्टी ऑल इंडिया अन्ना डीएमके 47 सीटों पर कामयाब हुई है। हमारे नामा निगार ने बताया है कि टीवी के पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय जल्द ही तमिलनाडु के नए वजीर आला की जिम्मेदारी संभालेंगे। टीवी के पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं, जो सरकार बनाने की खातिर अक्सरियत के लिए दरकार 10 सीटें कम हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: तमिलनाडु के सियासी पर्दे पर फिल्म स्टार विजय का सुपरहिट आगाज हुआ है और उनकी पार्टी रियासत में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। थलाइवा, जननायकन, मरसल और सरकार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के हीरो रहे जोसेफ विजय अब फिल्मी पर्दे पर नहीं बल्कि असल जिंदगी में वजीर आला का रोल निभाने जा रहे हैं और उनके सामने वोटरों के ख्वाब पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी है। 51 साल के विजय को आज उनकी पार्टी के एमएलए अपना रहनुमा चुन सकते हैं। पार्टी मखलूत इत्तेहाद की सरकार बनाने को लेकर फिलहाल चुप्पी साधे हुए है और विजय के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज सरकार बनाने और उसे बेहतर तरीके से चलाने का होगा, क्योंकि इस बार उन्हें अपनी कामयाबी की स्क्रिप्ट खुद लिखनी है। खबरनामे के लिए चेन्नई से सुशील चंद्र तिवारी।
0: आसाम में हुक्मरान बीजेपी के जेर क़यादत एनडीए ने 126 रुकनी असेंबली में 82 सीटें जीतकर लगातार तीसरी मुद्दत के लिए तारीखी कामयाबी हासिल की है।

0: पार्टी की इत्तेहादी आसाम गण परिषद को 9 सीटें मिली हैं, जबकि बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 10 सीटें जीती हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस को 19 सीटें मिली हैं, जबकि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और राइजोर दल ने दो दो सीटें जीती हैं। तृणमूल कांग्रेस को एक सीट मिली है। केरलम में कांग्रेस की जेर क्यादत यूडीएफ ने फैसलाकुन कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि उसकी इत्तेहादी पार्टी आईयूएमएल को 22 सीटें मिली हैं। इस तरह इस इत्तेहाद को रियासत में बालादस्ती हासिल हो गई है। यूडीएफ के करीब करीब सभी सरकर्दा रहनुमा वाज़े अक्सरियत से मुंतखब हो गए हैं। इधर हुक्मरा एलडीएफ की तरफ से सीपीआईएम को 26, सीपीआई को 8 और आरजेडी को एक सीट मिली है। बीजेपी को इस मरतबा 3 सीटें मिली हैं, जबकि अभी तक असेंबली में पार्टी की कोई नुमाइंदगी नहीं थी। पार्टी के रियासती सदर राजीव चंद्रशेखर ने तिरुवनंतपुरम में नेमम हल्के से जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। पुदुचेरी में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने 30 रुकनी ऐवान में 18 सीटें जीतकर वाज़े अक्सरियत हासिल की है और इख्तदार बरकरार रखा है। इत्तेहादी पार्टियों में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 12 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी को 4 सीटें मिली हैं। कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीतने में कामयाब हुई है, जबकि 3 सीटें आज़ाद उम्मीदवारों के हक में गई हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी को तारीखी और बेमिसाल करार दिया है। जनाब मोदी ने मगरबी बंगाल, आसाम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के अवाम और पार्टी कारकुनों के तई तशक्कुर का इजहार किया है। चुनाव नतीजों के बाद कल शाम दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बीजेपी एनडीए की सरकारें 20 से ज़्यादा रियासतों में इकतदार में हैं। जनाब मोदी ने कहा कि बीजेपी का मंत्र है अवाम भगवान है और पार्टी अवाम की खिदमत के लिए वक्फ है। उन्होंने कहा कि इसीलिए लोग पार्टी में और ज्यादा एतमाद का इजहार कर रहे हैं।
1: जय पराजय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के लिए एक नई सुबह का आगाज हुआ है और अवाम ने मुल्क की अजीम जमहूरियत और कारकर्दगी की सियासत में अपने एतमाद का इजहार किया है।
1: ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
0: इधर बीजेपी के सदर नितिन नवीन ने भी बीजेपी और एनडीए में फिर से अपने एतमाद का इजहार करने पर चारों रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके के अवाम के तई तशक्कुर का इजहार किया। बीजेपी के सरकर्दा लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल, आसाम और पुदुचेरी में पार्टी की कामयाबी का खैर मकदम किया है। जनाब अमित शाह ने मगरबी बंगाल में पार्टी की जीत को डर, खौफ, खुशनूदी और दरअंदाजों को पनाह देने वालों के खिलाफ अवाम के जवाब से ताबीर किया। उन्होंने लगातार तीसरी बार पार्टी में एतमाद का इजहार करने पर आसाम के लोगों को मुबारकबाद दी। मगरबी बंगाल के सनती इदारों और तजारती अंजुमनों ने बीजेपी की शानदार कामयाबी का खैर मकदम किया है। कारोबारी रहनुमाओं ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार रियासत की मईशत में नई जान डालने के लिए सनतकारी बुनियादी ढांचे के फरोग और सरमायाकारों के लिए साजगार पॉलिसियों के एक नए दौर का आगाज करेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में ईरान से किए गए एक ड्रोन हमले के बाद जबरदस्त आग लग गई। पिछले महीने नाफिज की गई जंगबंदी के बाद से मुत्तहिदा अरब इमारात के इलाके में यह इस तरह का पहला हमला है, जिससे काफी नुकसान हुआ। वहां के हुक्काम ने यह जानकारी दी है। मालूम हुआ है कि इस वाकये में 3 भारतीय शहरियों को कुछ जख्म आए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अबू धाबी में भारतीय सिफारत खाने ने बताया है कि वो मुतासर

0: मीटर में 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। सुबह के 9 बज चुके हैं।
1: आज की सुर्खियां।
2: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं।

0: होंडा, पियाजो, एक्साइड, इशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बा इख्तियार डीलर, कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।
1: सुबह खैर। आज मंगलवार है, 1447 हिजरी के माहे जीकादा की 17 तारीख मुताबिक 5 मई 2026 ईस्वी। मकामी रोजनामों की सुर्खियां लेकर हम हाजिर हैं। रोजनामों में मुख्य मौजूदात की खबरें शाया हुई हैं और चंद अहम खबरों ने अखबारात के पहले सफात पर जगह बनाई है, जिनको लेकर आज की सुर्खियां तरतीब पाई हैं। एक उर्दू रोजनामे की सुर्खी है, मगरबी बंगाल असेंबल इंतखाबात, ममता बनर्जी की कुर्सी 15 बरस बाद गई। बीजेपी की मगरबी बंगाल में जीत, आसाम और पौंडचेरी में इक्तदार बरकरार। तमिलनाडु में अदाकार विजय की पार्टी टीवी के उभरी, केरला में यूडीएफ की वापसी।
2: मेरे हाथ में अंग्रेजी रोजनामा और खबर पहले सफ़े पर लिखी हुई कि दरबार मूव रियोपन्स इन श्रीनगर, सीएम रिव्यूज वार्म रिसेप्शन, सीएम रिसीव्स वार्म रिसेप्शन, सीएम रिव्यूज फंक्शनिंग फैसिलिटीज फॉर एम्प्लॉयज पब्लिक। और साथ ही में यही अखबार इसी खबर को आगे लिखता है, सीएम चेयर्स मीटिंग एज दरबार मूव ऑफिसेस ओपन इन श्रीनगर।
1: बंगाल में भाजपा का जादू सर चढ़ कर बोला, आसाम और पौंडचेरी में भी आसान जीत दर्ज। गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिला, बंगाल में अवामी ताकत गालिब आई, वजीर आजम नरेंद्र मोदी।
2: कश्मीर अपर रीजन रिसीव फ्रेश स्नोफॉल रेन्स लैश प्लेन्स, गुरेज बांडीपुरा मुगल रोड एसएसजी राउट क्लोज ड्यू टू स्नो।
1: लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिया खिलाड़ियों को सामाजिक तब्दीली के अलम बरदार करार, खेलों के जरिए मजबूत पैगाम आम करने पर जोर। मुनशियात के खिलाफ जंग में नौजवान खिलाड़ी खास किरदार अदा करें। कश्मीर यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया वुशु चैंपियनशिप का आगाज, 1000 से जायद खिलाड़ी शरीक, सोशल मीडिया के जरिए बेदारी मुहिम तेज करने की हिदायत। खिलाड़ी सिर्फ मैदान तक महदूद नहीं, इनका किरदार मौशरे की रहनुमाई में नई नस्ल के लिए मशाल रहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा।
2: ओवर 13,000 MSMEs assessed by JKMHC across J&K. CS calls for scaling up interactions, AI-driven interventions.
1: मर्दमशुमारी में शेरियों से आज खुद इंदराज में भरपूर शिरकत की अपील, 17 ता 31 मई 2027 डिजिटल मरहला, घर बैठे तफसीलात जमा कराने की सहूलियत, दुरुस्त मामलात फराहम करें, मुस्तकबिल की मनसूबेबंदी में मदद दें, श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन।
2: रेलवे पुश सेट टू बूस्ट कश्मीर चेरी ट्रेड, अखबार लिखता है, विद द चेरी हार्वेस्ट सीजन अराउंड द कॉर्नर, फ्रूट ग्रोवर्स अक्रॉस कश्मीर आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन हाउ देयर प्रोड्यूस रीच मार्केट आउटसाइड द वैली।
1: 4 साल बाद दरबार मूव की श्रीनगर मुंतकली, 6 माह का गवर्नेंस एजेंडा तय, पहले दिन रिवायती तौर पर वजीर आला का गार्ड ऑफ ऑनर पेश, सिविल सेक्रेटरेट में आला सतही मीटिंग।
2: हैवी रेनफॉल डिस्टर्ब्स नॉर्मल लाइफ इन रजौरी पुंछ, यही अखबार लिखता है। एक और खबर, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे सीज स्लो ट्रैफिक, स्नोफॉल फोर्सेस नेशनल हाईवे 244 क्लोजर।
1: जी, श्रीनगर में शाम के बाद किसी भी प्राइवेट अस्पताल में यूएसजी की सहूलियत दस्तियाब नहीं, 40,000 क्लिनिक और 60 निजी अस्पताल सिर्फ दिन में रुकुमात बटोरने में मसरूफ।
2: नॉन डिमार्केशन एब्सेंस ऑफ मास्टर प्लान एक्सपोज मानसबल लेक टू एनक्रोचमेंट्स,
1: ईंधन की बिला तातुल फरामी यकीनी बनाना मतलूब, मरकजी हुकूमत ने इकदाम तेज किए, अहम रहनुमा खतूत जारी।
2: जी, अब अगली खबर से पहले हम रुकते हैं यहाँ तिजारती वक्फे के लिए।
3: पैदा कर ہے لون صبا
4: اے حکم کر سا یارا
3: ہے ونچکات اکشی ڈورس گورو گورو کران باسا اس وڈر پٹ کے زمین کھاتا سگنے وی
4: ان سم وے کیا کر یا سا چم پرون اب موٹر ا چھ ٹائم لگنی سگونس
3: داسا چت ما چھ تاگے تم ساتن کچ پھر ونم مسان بیر کون کمپنی ہند اب موٹر زمیندار اس ہسا چھ پتکین ڈوک سری

0: आप जगजीत सिंह की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। समीन, एक इतना समाप्त करें। महकमा हायर एजुकेशन ने जम्मू कश्मीर के तमाम कॉलेजों में तालीमी साल 2026-27 के लिए 4 साला अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और 5 साला इंटरग्रेट पीजी प्रोग्रामों का दाखिला का ऐलान किया है। तो जो स्टूडेंट्स हैं तो वो अब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है तो वहाँ पर देख सकते हैं।
1: हमारी जिंदगी के लिए जरूरी मालूमात,
2: माहिरीन की आरा, तजुर्बा और रहनुमाई,
3: उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिव फंडिंग रखी है और स्टेट गवर्नमेंट ने न कि इसको एक्नॉलेज किया, इसको चैनलाइज किया, अपनी तरफ से अच्छा खासा पैसा डाला हुआ है।
1: सेहत के मशवरे,
4: ऑर्थोपेडिक कुन ती तकलीफस मंज छ ब्रॉडली करन इम क्लासिफाई इनटू सम ग्रुप्स,
1: साइंसी मालूमात और रोजमर्रा के मुफीद नुकात
2: जो आप तक पहुंचेंगे एक मौसर और बावकार अंदाज में।
1: आकाशवाणी श्रीनगर का मॉर्निंग लाइव शो पयामे सुबह,
2: इल्म और आगही का संगम हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक पयामे सुबह,
1: मीडियम वेव 268.81 और FM 103.5 MHz पर पयामे सुबह।
5: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
6: अरे राकेश, चिप्स खाएगा? एक मिनट यार, ये कुछ अजीब टेस्ट कर रहे हैं।
7: अच्छा, जरा पैकेट दिखा।
6: ओए, ये तो एक्सपायर्ड है।
7: क्या
8: ऐसा आपके साथ भी हो सकता है? इसलिए ध्यान रखें, खाने पीने की कोई भी चीज खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करें। अगर कोई एक्सपायर्ड फूड आइटम्स बेच रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं 1800-112100 पर।
9: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार।
10: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
11: बस एक बार, सिर्फ एक बार, और हर बार लगता है क्या ही तो हो जाएगा, सेफ है यार। लेकिन ड्रग्स सिर्फ एक बार का मजा नहीं देता, धीरे धीरे सेहत, दोस्ती, सपने और जिंदगी पर असर डालता है। किडनी और लिवर खराब होने लगते हैं, बेचैनी और तन्हाई बढ़ने लगती है, दिल तेज धड़कने लगता है और सोच धुंधली पड़ती है और रिश्तों में दूरी आने लगती है।
12: पर क्या कर सकते हैं?
11: गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेकर आए हैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। बस अभी टेलीमानस हेल्पलाइन 144116 पर कॉल करो। यहां सुनते हैं बिना जज किए, समझते हैं और मदद भी करते हैं। अगर कोई और भी इस दौर से गुजर रहा है तो समय रहते रिपोर्ट करने से एक जिंदगी बच सकती है।
13: आओ चले और एक नया रास्ता चुने, जिंदगी की असली पहचान बचाए और बनाए नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
14: यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस। 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के लिए एडमिशंस ओपन है। अप्लाइड जियोलॉजी, अरबिक, BA LLB, बॉटनी, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी स्टडीज, हिंदी, होम साइंस, कश्मीरी, लिंग्विस्टिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, पर्शियन, फिजिक्स, संस्कृत और टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज में। साथ ही 4-year UG प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। डिजाइन योर ओन डिग्री, म्यूजिक और फाइन आर्ट्स में लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है।
0: अब खबरें सुनते हैं, पहले कश्मीर उसके फौरन बाद उर्दू में।

0: हमने एक बार फिर बीजेपी की कयादत और तर्ज हुकुमरानी में अपने एतमाद का इजहार किया है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत आज वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले में एक बड़ी पदयात्रा का इनेकाद हो रहा है। पदयात्रा को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुबह 10:30 बजे न्यू बस स्टैंड बडगाम से झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस पदयात्रा में समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद शिरकत कर रहे हैं। रवा महीने की 9 तारीख को अनंतनाग में भी इसी तरह की एक पदयात्रा का इनेकाद हो रहा है। जिले के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने कल अफसरान की एक मीटिंग में इस यात्रा के लिए किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के दरमियान करीबी तालमेल की जरूरत पर जोर देते हुए पदयात्रा के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तलबा एथलीट्स पर जोर दिया है कि वह नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के सफीर बनकर जम्मू कश्मीर को इस लानत से पाक करने में अपना कलीदी रोल अदा करें। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी विश्व चैंपियनशिप का इफ्तिता करने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंतजामिया तमाम आला तालीमी इदारों में एक फाल स्पोर्ट्स कल्चर कायम करने और हर एक तालब इल्म को मसावी मौके फराहम करने की वादाबंद है।
1: इस कंपटीशन में भाग लेते हुए आप सभी को याद रखना है कि भागीदारी और खेल भावना जीत या हार से कहीं अधिक उन अमूल्य संबंधों को सुदृढ़ करती है जो हमें एक परिवार के रूप में जोड़ते हैं। मैं चाहूंगा कि अपने फोन पर एक स्टूडेंट एथलीट कम से कम 20-30 सेकंड या एक मिनट का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करे और जम्मू कश्मीर तथा अपने राज्य और देश के सभी नौजवानों से नशा छोड़कर स्पोर्ट्स को अपनाने की अपील करें और मुझे विश्वास है कि आपकी अपील भटके हुए नौजवानों को सही मार्ग पर चलने के लिए जरूर प्रेरणा देगी।
0: सेहत व खानदानी बहबूद की वजीर मुमलिकत अनुप्रिया पटेल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश की तकनीकी तालीम के वजीर आशीष सिंह पटेल भी उनके हमराह थे। इस दौरान वजारत खजाना की पार्लिमानी कायमा कमेटी जिसकी सरबराही बरतरू हरी महताब कर रहे थे ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कश्मीर के वफद ने चैम्बर के सदर तारिक गानी की कयादत में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की और कारोबारी बरादरी को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल उनकी नोट्स में लाए। वफद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को श्रीनगर में मुनाकिदा तारीखी नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम और पदयात्रा के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद भी पेश की और मुनशियात से पाक मुआशरा तश्कील देने और नौजवानों के मुस्तकबिल के तहफ्फुज के लिए इस इकदाम को सराहा। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर के तमाम कॉलेजों में तालीमी साल 2026-27 के लिए 4 साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और 5 साल इंटीग्रेटेड पीजी प्रोग्राम के दाखिले का ऐलान किया है। इस सिलसिले में डायरेक्टर कॉलेज जम्मू कश्मीर डॉक्टर शेख एजाज बशीर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: इस साल हम सारे एडमिशन 10+2 मेरिट के बेस पे कर रहे हैं, तो ये सारा एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन है। 9 तारीख को ये हम लिंक लाइव कर रहे हैं, 27 तारीख तक ये खुली रहेगी, फिर 30 तारीख को हम पहला लिस्ट निकाल रहे हैं, उसके बाद हम 9 जून को दूसरा लिस्ट निकालेंगे, तो दूसरे लिस्ट के बाद फिर ये एक स्पॉट राउंड होगा लास्ट में, वो 18 जून से 25 जून तक चलेगा और 15 जून से कश्मीर डिवीजन में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे और 15 जुलाई से जम्मू डिवीजन में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन एडमिशन प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलेगा विंटर जोन कॉलेज के लिए भी और समर जोन कॉलेज के लिए भी।
0: नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर ए के सूद ने कल श्री कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के शालीमार कैंपस का दौरा करके रूरल बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में जरिए तिजारत और दीहकार खानादारी की पेशरफ्त का जायजा लिया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने उन्हें इस बारे में तफसीली जानकारी दी। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतन किशोर ने जिला अफसरान की एक मीटिंग में सालाना माता खीर भवानी मेला 2026 के इंतजाम का जायजा लिया। यह मेला 22 जून 2026 को मुनाकिद होगा। उन्होंने कहा कि 2025 में इस मेले में 15,000 से ज्यादा अकीदतमंदों ने शिरकत की थी। मीटिंग में बताया गया कि खीर भवानी माता खीर भवानी मंदिर अहाता और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर तुलमुला कैंपस को मरकजी कयामगाहों के तौर पर नामजद किया गया है। और अब दर्जे हरारत, श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.9 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नशर होगा। खुदा हाफिज।
3: लाइव मॉर्निंग शो पैम सुबह आप आकाशवाणी श्रीनगर से बराह रास्त सुन रहे हैं। जी तब्रीज।
4: जी हाँ, आज एक खास बात हमारे सामने को बताना चाहेंगे कि आज नशा

0: मुक्त भारत की जो हम यहाँ जो नशा मुक्त भारत का अभियान चल रहा है अक्रॉस कंट्री, उसमें जम्मू कश्मीर भी पेश पेश है, और उस नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जो अभी हमने देखा कि श्रीनगर में एक अच्छी खासी पद यात्रा की गई जिसमें ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब ने क़यादत की और
1: बिल्कुल
0: हज़ारों की तादाद में लोग आए और उन्होंने उसमें शिरकत की और उसे कामयाब बनाया। और आज उसी की दूसरी कड़ी बड़गाम ज़िले में आज ये पद यात्रा होने जा रही है और वहाँ भी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब आज इस क़यादत करेंगे इस पद यात्रा की। और मकसद सिर्फ ये है कि हम जम्मू कश्मीर को इस नशे से पाक करें, जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उन तक ये बात पहुंचानी जरूरी है कि आप भी अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन दें, इस पद यात्रा का हिस्सा बने और इसे कामयाब बनाएं।
1: आपकी भी जिम्मेदारी है
0: जी,
1: अपने माशरे को इस लत से साफ करना है।
0: बिल्कुल सही, और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि ये जो नशे की जो ये लत है इससे अपने कौम को बचाएं, अपने नौजवानों को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं,
1: आने वाले मुस्तकबिल।
0: कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जिम्मेवारी माँ बाप की आती है, पेरेंट्स की सबसे पहले आती है, उसके बाद टीचर्स की, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा आपसे दूर दूर रहने लगा है, वो तनहाई पसंद हो रहा है, उसे अच्छा नहीं लगता,
1: बार बार गुस्सा करता है,
0: उसका मूड जो है मूड स्विंग्स हो रहे हैं, चिड़चिड़ाहट आ गई है, इस तरह की चीजें अगर आपको लगती हैं, और अगर आपको लगता है कि उसके जिस्म पे कहीं निशान है, सुई के प्रिक्स के निशान है या कुछ ऐसा है, तो आपको चाहिए कि आप इमीडिएटली उस बच्चे से बात करें और जल्द अज जल्द आप डॉक्टर का मशवरा लें, डॉक्टर से सलाह लें, ताकि आप अपने बच्चे को इस वबा से बचा पाएं।
1: और बच्चों में जो डिप्रेशन का इजहार होता है ये बड़ों से मुख्तलिफ होता है।
0: बिल्कुल सही,
1: तो इसमें ये जो है गुस्सा करता है या तनाही इख्तियार करे जैसे आपने बजा फरमाया,
0: तो हमें चाहिए कि कोशिश करें कि सानंद बचन से वक्त दूं, बेशक
1: उनको समझना है। बिल्कुल
0: बेशक आज जो मोल थे मोल थे दशवे कमावान दशवे नेरान जॉब खतर दशवे नेरान सुबह शाम न शिवान बचन से छुन पत ज्यादा टाइम मिला के मगर उस वक्त तो मिलान छु
1: सुबह से बचन से
0: फोन थे तो साइडन
1: बिल्कुल
0: थे तो लेट पेट थे तो ताकचस पेट मगर कोशिश कर तो कि यम साथ तो वक्त
1: में फ्री टाइम
0: वक्त दी तो पाइनन बचन अगर तुम्हें क्वांटिटी है क्यों दित के मगर क्वालिटी टाइम दी तो बचन यम साथ क्वालिटी टाइम बचन दियो डेफिनेटली तिम रोजन डिप्रेशन नि दूर तिमन पे न कुन ते चीज उक सहार ने जरूरत किहिन क्या इस के बच छु सहार तेल नेवा ये सुकुन साइड छु आसान आमुत सु चाटन अगर तिमस कुन जाय छु बासा मे नक्शन बोजन बोल कहिन सो सुच पत समखान लुकन सुच दोस्तन यारन से रोजान या तच
1: मच तनाही महसूस करन
0: तच मच तिमस तित के यार समखान यम तिमस गलत
1: गलत वचन। बिल्कुल
0: ते मेन गुजारिश है तमाम बोजन वाले खासकर पेरेंट के पनन बचन दी तो कीमती वक्त पनो सो क्वालिटी टाइम दी तो ताकि सन बच रोजन आई मीन नश निश बचत तिमन निश यूस तिमन सो एक्सपेक्टेशन छ तिमन निश तुहन तो एक खत सो एक्सपेक्टेशन कर तो पूर तिम बुझ तो तिमन दियो वक्त तिमन हिज मतलब कत बोजनी ये अगर तुम सिर्फ कत बुझ तम सब मसल हल तो इनशा सन बच रोजन अमि नश नश दूर।

0: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
1: पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रजमा।
2: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
3: सब्र रोशित सुलम।
2: सुनते रहिए हमारी नशरियात
0: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
4: जहां जाएगा हमें पाएगा।
5: तब्रेज़ इस कतकरण के आज शो चिल्ड्रन

0: अभी हम पद यात्रा की बात कर रहे थे, बड़गाम में इसके हवाले से क्या सरगर्मियां चल रही हैं। इस वक्त जुड़े हुए हैं फोन कॉल पे बड़गाम से हमारे नुमाइंदे यूनुस परे। जी यूनुस
1: जी, तम साहब का रुख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मैं बिल्कुल बरा रास्त आपसे न्यू सिटी बस स्टैंड बड़गाम से बता रहा हूँ, और यहाँ पे मुखातिब हूँ जो मेरे पीछे जो आप जो आपका शो जो आ रहा है, यहाँ पे जो पद यात्रा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अभी कुछ देर के बाद यानी 20 मिनट के बाद वो बड़गाम के तशरीफ फरमाएंगे, और यहाँ के अगर लोगों की बात करें तो तकरीबन हजारों की तैदाद में यहाँ लोग जमा हुए हैं। मुस्लिम मुलाजमीन खिलाड़ी और यहाँ तक कि किसानों की एक बहुत बड़ी तैदाद जो है इस वक्त नजर आ रही है। न्यू बस स्टैंड बड़गाम में पूरी तरह से खचा खच से भरा हुआ ये बस स्टैंड जो है, और मुद्दा मकसद ये है कि नशे से मुतन जो है यहाँ पे बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। 100 रोजा मुहिम जो है आज 20 दिन हो चुके हैं बड़गाम में, ये मुहिम जो है जोर शोर से जारी है। एलजी मनोज सिन्हा अभी कुछ देर के बाद बड़गाम जिले का दौरा कर रहे हैं, और इस वक्त यहाँ पे कश्मीरी छकरी के तौर पर स्टेज पर यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट के तौर पर हम सकाफती प्रोग्राम किए जा रहे हैं। आप जो आवाज सुन रहे हैं मेरे पीछे जो ये आवाज आ रही है, ये लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि तंबाकू नोशी के हवाले से किस तरीके से हम फर्क करना चाहिए, और यहाँ के फनकार जो है मुख्तलिफ अंदाज में वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और आपको मैं ये भी बताता चलूं कि फिर से बताना चाहूंगा कि बड़गाम जिले में आज एक बहुत बड़ी पद यात्रा की जा रही है, जिसका इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा रूफ साहब।
0: बिल्कुल जी, हमें ये बोलिए कि बच्चों को इसमें शामिल किया गया है।
1: जी जी जी, बच्चों की अगर बात करें तो मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा तालिबात जो है जोश खरोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं, और यहाँ जो मैंने आपसे कहा कि बस न्यू बस स्टैंड जो है ये खचा खच से भरा हुआ नजर आ रहा है, और मुख्तलिफ फिक्र तबके फिक्र से लोगों के अच्छी खासी तैदाद इस वक्त न्यू बस स्टैंड पे नजर आ रही है।
2: यूनुस साहब, ये पद यात्रा बस स्टैंड से शुरू होकर कहाँ तक जाएगी?
1: ये बताया जा रहा है कि न्यू बस स्टैंड से ये ओल्ड बस स्टैंड तक जाएगी, और जिसमें काफी तैदाद जो लोग जो है वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सर
2: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये मालूम हम तक देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: ये थे बड़गाम से हमारे नुमाइंदे यूनुस परे, जो पद यात्रा के हवाले से हमें जानकारी दे रहे थे।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो कशीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सूफी सदा ये प्रोग्राम चु प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ साढ़न दहन बजन ताम नश सबदान वली बोजो प्रोग्राम सूफी सदा।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सबिन तुएसु प्रोग्राम बोजान सूफी सदा। ये प्रोग्राम छु प्रेत दो आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ साढ़े 10 बजे तक नश्र सब्दान।

0: सुहिला, सामिन, ये जो सेगमेंट की बात सुहिला ने की है, ये इंटरेक्टिव सेशन होता है हमारा, जिसमें हम किसी न किसी मेहमान से बात करने की कोशिश करते हैं। आज भी एक खास मेहमान से बात करेंगे, बस कुछ ही पलों में।
1: वादी कश्मीर की खूबसूरत फिजाओं में एक नई सुबह, एक नई ताजगी, पयामे सुबह।
2: आकाशवाणी श्रीनगर पेश कर रहा है एक जामिया लाइव शो पयामे सुबह,
1: जहां होंगी सेहत, साइंस और जिंदगी से जुड़ी मुफीद मालूमात,
2: और साथ ही खेल, सकाफत और अवामी मसाइल पर बामाने गुफ्तगु पयामे सुबह।
3: यारो यारो
1: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी श्रीनगर से।
2: मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। पयामे सुब
4: सुनो सजना,
2: पयामे सुब।
0: जी हाँ दोस्तों, आपने ट्यून किया आकाशवाणी श्रीनगर का स्टेशन और समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम पयामे सुब। पयाम सुब प्रोग्राम में हम आज एक खास मेहमान से मिलने जा रहे हैं। आज वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। ये कम्युनिटी मेडिसिन का सब्जेक्ट है जिस पर आज हम थोड़ा रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आज वर्ल्ड चाइल्डहुड डिप्रेशन अवेयरनेस डे भी है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं डॉक्टर सोलेहा रसूल, जो कि एक साइकोलॉजिकल काउंसलर हैं और साथ ही साथ आर्ट थेरेपिस्ट हैं, अभी हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ी हैं। आइए उनसे जानते हैं आज के दिन के हवाले से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आज के दिन के हवाले से जानना चाहेंगे, जो आज हम बात कर रहे हैं चाइल्डहुड डिप्रेशन अवेयरनेस डे की, ये क्या होता है? चाइल्डहुड डिप्रेशन होता है तो क्यों होता है?
5: देखिए, चाइल्डहुड डिप्रेशन बिल्कुल होता है, और अब आजकल के लाइफस्टाइल में और सिनेरियो में बच्चे इस चीज का बिहेवियरल सिम्टम्स देने शुरू कर दिए हैं, विच इज कि 7 से 8 साल तक के बच्चा दिखाना शुरू कर रहा है कि वो अग्रेसिव हो रहा है
0: जी।
5: या अटेंशन स्पैन जो होता है एक बच्चे का, फोकस
0: जी,
5: वो घट रहा है, वो ज्यादा डिपेंडेंट हो रहा है मोस्टली ऑन द डिजिटल गैजेट्स। और आप देखेंगे कि बच्चों का जो प्ले टाइम था या प्ले में इंटरेस्ट था, आउटडोर एक्टिविटीज में इंटरेस्ट था, वो कम होता जा रहा है। एंड देन व्हेन दे रीच टीन्स, वी सी देम गेटिंग टुवर्ड्स ड्रग्स एडिक्शंस। इसके कारण ये है कि द एनवायरनमेंट हैज चेंज्ड, द कनेक्शन बिटवीन पेरेंट्स इवन टीचर्स एंड चिल्ड्रन हैज चेंज्ड, वो रिड्यूस हुआ है। डिजिटल स्पेस का जो कनेक्शन है उनका, वो बढ़ चुका है, और वहां जो एक्सपोजर है दैट्स अनलिमिटेड, वो रिस्ट्रेन नहीं कर सकते। तो डेवलपमेंटल ईयर्स में जो 5-6 साल से बच्चे का दिमाग जहन पढ़ना शुरू हो जाता है, उसमें हम उसे क्या खुराक दे रहे हैं दिमागी तौर पे, वो जरूरी है। अगर वो खुराक नहीं मिल रही, देन दे विल गो टू डिप्रेशन, दे विल शो सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन इन देयर बिहेवियर एज इन देयर एक्शंस एज़ वेल।
0: जी डॉक्टर साहब, जब बचपन में ये डिप्रेशन का शिकार एक बच्चा हो जाता है, क्या ये डिप्रेशन इसका ठीक हो सकता है, या फिर अगर ये अटेंड नहीं हुआ तो ये इसकी जिंदगी भर के लिए इसका साथी हो जाता है?
5: बिल्कुल, क्योंकि अगर बचपन में हुआ तो जहन पे जिसको हम कहते हैं एक छाप बैठ जाती है, इम्प्रिंट, वो रह जाता है। वो इम्प्रिंट आपको कम से कम 20-30 साल ले लेता है, उसमें इट कीप्स यू एंगेज्ड इन दैट एंड यू डोंट नो एज अ चाइल्ड एंड देन एज अ ग्रोइंग एडल्ट कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर ये चीज 20-25 या 30 साल की उम्र में अटैक करे, देन यू नो दैट देयर इज समथिंग डिफरेंट अदर देन योर यस्टरडे, राइट? लेकिन बढ़ते हुए बच्चे के साथ ये उसकी खुराक में, उसके खून में आ जाती है, एक चीज एक नर्वस सिस्टम में आ जाती है। तो जब ये बहुत बाद में आके दिखेगी, इट विल बी, इफ इट इज नॉट एड्रेस्ड टाइमली, इट विल शो अ वेरी डिवास्टेटिंग वे।
0: डॉक्टर साहब, जब
5: तो लेकिन ये करेक्ट हो सकता है बचपन में।
0: लेकिन डॉक्टर साहब, जब बच्चों में कभी हम देखते हैं अग्रेशन, अचानक देखते हैं अग्रेशन आ गया है, या बच्चा तनहा बैठना पसंद करता है, तो पेरेंट्स को अगर कोई कहता भी

0: है कि इसको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाइए, किसी से बात कर लीजिए। तो वो कहते हैं म्यूवन बच क्या पागल छा बिना मनी डॉक्टर्स, तो वो इस पर थोड़ा सा रिएक्ट कर जाते हैं। क्या ये सही है?
1: देखिए, पेरेंट्स का इस तरीके का रिएक्शन अब सही नहीं है, ये कभी भी सही नहीं था, बट नाउ लेट्स एक्सेप्ट कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है एटीट्यूड। हमें ये जरूर, ये एक अवेयर पेरेंट समझ सकता है कि मेरे बच्चे में कुछ चेंजेस आ रही हैं, मेरा बच्चा चुप बैठने लगा है या ओवर परफॉर्म सडनली करने लगा है, क्योंकि बच्चा बोलेगा नहीं, बच्चा शो करेगा अपनी एक्शंस में।
0: जी
1: तो अगर वो रिक्लूडेड बैठ रहा है, आइसोलेटेड बैठ रहा है, दिस इज अ वेरी ह्यूज इंडिकेशन जो कि इग्नोर नहीं होनी चाहिए। इमिजिएटली वी शुड रश, वी शुड फर्स्ट रश टू योर, यू शुड रश टू योर चाइल्ड एंड यू शुड टेल देम क्या बात है, क्या आपको बॉदर कर रहा है, क्योंकि ये भी एक पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। दे
0: जी
1: डोंट वॉन्ट टू लेट देयर गार्ड डाउन, है ना?
0: राइट
1: तो बच्चे को पहले पेरेंट्स पूछें कि आपको क्या चीज परेशान कर रही है और मैं यहां हूं आपके साथ समझने के लिए।
0: जी
1: उसके बाद अगर वो चीज तब भी नहीं ठीक हो रही है एंड यू सी कंसिस्टेंटली 2 वीक्स तक मिनिमम ये चीज चल रही है बच्चे के साथ, देन यू शुड सीक अ साइकोलॉजिकल हेल्प, अ प्रोफेशनल हेल्प। ये आज की दौर में जैसे जुकाम खांसी के लिए इंसान डॉक्टर के पास भागता है,
0: जी
1: वैसे एक मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए भागना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट,
0: जी
1: वेरी एसेंशियल।
0: आज के दिन क्या मैसेज देना चाहेंगे इस तमाम सुनने वालों के लिए डॉक्टर साहब?
1: तमाम सुनने वाले पेरेंट्स भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं। मैं मेजरली इन दो की बात इसलिए करूंगी बिकॉज दे प्ले अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट एंड फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन। एक कनेक्शन बिल्ड करना बहुत जरूरी है पेरेंट के लिए भी, टीचर के लिए भी, क्योंकि बच्चा सडनली, हमें समझना है, एक सेफ एनवायरमेंट से एकदम वी पुश हिम टू गेट अ बिगर एक्सपोजर विच इज स्कूल। वहां बुलिंग होती है, वहां प्रेशर होता है, वहां टीनेज डायनामिक्स खेलते हैं और अब डिजिटल स्पेस भी बढ़ रहा है। तो मैं ये कहूंगी कि आप अपने बच्चे को सुनने की कोशिश करें, उसके साथ कनेक्शन डेवलप करने की कोशिश करें। आप ये उसके बाद उसे यकीन दिलाएं दैट यू आर देयर नॉट टू जज हिम बट टू अंडरस्टैंड हिम, और एक ऑब्जर्वेशन आप करते रहें। जब भी आपको लगे कि आपका बच्चा अनयूजुअल बिहेवियर या पैटर्न शो करना है, आपको शुड गो फॉर अ हेल्प। दैट्स व्हाट आई विल से,
0: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: कनेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आज के दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। और हमें भी उम्मीद है कि जो बात आपने कही है कि कनेक्शन डेवलप करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं हम उसे मिस कर रहे हैं। आपका आज के दिन बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
1: शुक्रिया, शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू।
0: तो समय ये थे डॉक्टर सालेहा रसूल, ये एक साइकोलॉजिकल काउंसलर हैं और आर्ट थेरेपिस्ट भी हैं। तो बच्चों को बड़ी ज़रूरत पड़ती है आर्ट की, जब वो कभी अपने एक्सप्रेशंस सामने नहीं ला पाते हैं तो आर्ट के जरिए वो अपने एक्सप्रेशंस को सामने ला सकते हैं। हमें सिर्फ उन्हें स्पेस देने की ज़रूरत है।

0: दोस्त आपने नगमा सुना? जी हाँ, ये माँ के लिए नगमा था। उम्मीद करते हैं कि आप सबने पसंद फरमाया होगा। आपने समाप्त किया ये नगमा और आप प्रोग्राम सुन रहे हैं पयाम सुबह। पयाम सुबह में आज जिस खास शख्सियत से हम मिलने जा रहे हैं, इनका ताल्लुक कम्युनिटी मेडिसिन से है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, यह हेल्थ डिपार्टमेंट है कम्युनिटी मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के। नाम है प्रोफेसर डॉक्टर सलीम मोहम्मद सलीम खान साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल आज के इस प्रोग्राम में।
1: शुक्रिया तब्दील साहब, आज के मौके पे आपने दावत दी और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपको। आज के प्रोग्राम में आपने मदद किया ताकि हम आवाम तक आज के दिन के मुनासिबत से बात पहुँचाएँ।
0: जी, ये हमारी खुशनसीबी कि आपने वक्त निकाला आज के इस प्रोग्राम के लिए। जानना चाहेंगे आपसे कि आज वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया जा रहा है, ये दिन होता क्या है, क्यों मनाया जाता है और इस दिन से फायदे क्या हैं?
1: देखिए, आलमी सतह पे जो सबसे बड़ी तंजीम है वो है आलमी सेहत इदारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो दुनिया में जो भी बड़े तिबी मसाइल हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, तो उसके मुतालिक वो चाहते हैं कि लोगों तक बात पहुंचे ताकि हम इस तकालीफ होंगी, अमराज होंगे, जो इंसिडेंट्स होंगे, उस पे कुछ अपने तरीके पे उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें और लोगों तक उसके बारे में बात पहुंचाएं। आज के दिन के मुनासिबत से, जो आज मई 5 है, तो इस मुनासिबत से WHO ने ये सोचा कि हम इसके बारे में बात करें, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे के मुतालिक, जो आज
0: जी
1: 5 मई को मनाया जाता है पूरी दुनिया में। और इसके साथ और एक डे जो इसी के बहुत क्लोज है, वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है,
0: जी
1: ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। सो ये दोनों चीज़ें हाथ से मुतालिक हैं, जो हम हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ये ज़रूरी क्यों है, अगर हम नज़र डालें तो ये शुरुआत हुई 2009 में, कि अब 18वां आज

0: वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे है,
1: जी.
0: ये ज़रूरत इसलिए महसूस हुई, अगर आप रिसेंटली हम कोविड पे नज़र डालें तो जब वहाँ पर आप मास्क की बात कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, तो हैंड हाइजीन की भी बात कर रहे थे. क्योंकि दुनिया में जो बीमारियाँ होती हैं, बेशतर बीमारियाँ जो होती हैं, उसमें हैंड बॉर्न डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है कि हाथ के ज़रिए से जो बीमारियाँ फैलती हैं. अब इंसान इसमें बात करेगा हाथ से कैसे बीमारियाँ फैलती हैं. जो बेशतर बीमारियाँ जो इस वक्त दुनिया में, ख़ासतौर पर अगर हम बच्चों की बात करें, वो डायरल डिजीज़ है और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं. तो यूजुअली देखा गया कि 25-40% जो बच्चों में और बड़ों में जो डायरिया होता है, जो इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ हो जाती हैं, डायरिया, डिसेंट्री हो जाती हैं, वो हाथ के ज़रिए ये इन्फेक्शन एक से दूसरे तक फैल जाता है. और साथ ही जो रेस्पिरेटरी इलनेसेस जो होती हैं, उसमें आप जुकाम ले लीजिए, निमोनिया ले लीजिए, अगर रिसेंटली जब हम कोविड की बात करें या बाकी जो बीमारियां हैं, इबोला की बात जो कई इलाकों में इस वक्त भी हो रहा है, सो वहां पर भी देखा गया कि लगभग 15-20% वो बीमारियां भी हाथ के ज़रिए फैलती हैं. होता क्या है कि जब भी किसी शख्स कोई बीमारी लगती है, अगर उसने अपना हाथ अच्छी तरह से नहीं धोया और वो सीधा खाने को लग गया और वो खाना कई और लोगों ने वो इस्तेमाल किया, या आपने छींका, या आप वॉशरूम से बाहर निकल आए और आपका हाथ साफ़ नहीं हुआ और आपने किसी के साथ मुसाफा किया और वो अपना हाथ मुंह की तरफ, नाक की तरफ ले गया, तो ये जरासीम जो है ये इंसान के जिस्म में दाखिल होकर ये बीमारियां फैला देती हैं. साथ में जो और एक बड़ा मसला जो है हैंड हाइजीन के लिए, वो है कि जब बीमार हॉस्पिटल्स में दाखिल होता है तो वहाँ पर आप देख लीजिए, हर 10 बीमार में से एक बीमार को हॉस्पिटल में ही और कोई बीमारी लग जाती है. फॉर एग्जांपल, कोई बीमार किसी सर्जरी के लिए दाखिल हुआ था हॉस्पिटल में, या किसी प्रोसीजर के लिए, या कभी कोई और बीमारी हो उसमें, चेस्ट रिलेटेड इन्फेक्शन हो या कोई बीमारी हो, तो वहाँ पे आप देख लीजिए कि उसको और कोई बीमारी लग जाती है. कोई सर्जरी के लिए होता है तो उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, किसी डायरिया हो जाता है, कभी किसी का चेस्ट इन्वॉल्व होता है. ये उन जरासीम से होता है जो हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट होते हैं, और ये इनको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस कहते हैं. ये होता है कि किसी और बीमार जो साथ में बैठा हो, या ओपीडी में हो, या वार्ड में एडमिट हो, उसके जरासीम दूसरे शख्स के ज़रिए इस बीमार को, जिसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कमज़ोर होती है, उसको लग जाती है, और इसकी वजह से उसकी अपनी बीमारी या इस तकलीफ जो जिसके लिए वो दाखिल होता है, या प्रोसीजर के लिए या सर्जरी के लिए, वो तो ठीक होता है, बट उसका हॉस्पिटल स्टे एक्सटेंड हो जाता है उसकी वजह से, इस बीमारी की वजह से जो उसको हॉस्पिटल में लगती है. तीसरा बड़ी वजह जो हमें हैंड हाइजीन के मुतालिक इम्पॉर्टेंट है, कि जो ग्लोबली हम इस वक्त देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो हिडन पैंडेमिक है, पैंडेमिक मींस जो बीमारी इंटरनेशनल सतह पे हो, ट्रांसकॉन्टिनेंटल हो, बहुत सारे ममालिक में देखी जाती है, बट जो हिडन है हमसे, वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस. यानी कि इस वक्त जो हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स हमारे पास हैं बीमारियों को ट्रीटमेंट के लिए, उसके अगेंस्ट, उन इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, अब वो एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं. तो उसकी वजह से जो जो रूटीनली हमारे इन्फेक्शन होते थे और हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, अब वो पेशेंट उन एंटीबायोटिक्स से ठीक नहीं होते, और जबकि उसके लिए हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम और काफ़ी जो एडवांस एंटीबायोटिक्स हैं वो देने पड़ते हैं, और एक एंटीबायोटिक बनाने में, रिसर्च में कई साल लग जाते हैं, और काफ़ी रिसर्च हो जाती है, और ये हो जाता है कि हम इसी वजह से जो हमारा हैंड हाइजीन सही नहीं रहता है, तो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी हमारी दुनिया में इस वक्त काफ़ी बढ़ रही है. सो ये तीन जो मैंने बातें अभी की, इस ये सारा रिलेट है, अगर हम हमारा जो हाथ है, अगर हम इसको सही तौर साफ ना रखें, तो ये कहा जा सकता है कि हमारा जो सेहत है वो हमारे हाथों की वजह से ठीक रख सकते हैं, और हम बीमार भी इसी वजह से हो सकते हैं.
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इस पर और भी बात करेंगे. सामिन, आप बने रहिए हमारे साथ. हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान साहब से, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं कम्युनिटी मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर. उनसे आज के दिन के हवाले से बातचीत जारी रहेगी. कहीं जाइएगा मत, रुकते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए.

दोस्तों, आपने लता और रफी की आवाज़ों में ये प्यारा सा नगमा सुना, और आपको बताते चलें कि आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर का स्टेशन, और आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम पयाम सुबह। पयाम सुबह में हम बात कर रहे हैं आज के हमारे मेहमान से। जी हाँ, आज के हमारे इस शो की जीनत बनकर बैठे हैं, स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है

0: दोस्तों, आपने ये नगमा सुना? जी हाँ, ये माँ के लिए नगमा हमने पेश किया था, क्योंकि माँ ही वो दरसगाह है, वो पहला स्कूल है जहाँ से एक बच्चा तरबियत हासिल करता है, सही और गलत की पहचान उसे होती है। अगर हम अपनी माँओं से तरबियत हासिल करते हैं, और जब हमारी सही तरबियत होती है, तभी हम किसी और की सही तरबियत कर पाएंगे। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम पयाम सुबह, और पयाम सुबह में आज हमारे साथ बने हुए हैं हमारे आज के मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान साहब, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कम्युनिटी मेडिसिन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। डॉक्टर साहब, ऐसे कुछ वारिया नफर यमन अख सु साइकोलॉजिकल अख इफेक्ट छु गोमुत वन डेवलप, ये तिम छ दोहस हति लटि करान सैनिटाइजर यूज, थोद वथान सैनिटाइजर, बेहन ते सैनिटाइजर, कह ते काम करान तम पर करान सैनिटाइजर यूज। ये सैनिटाइजर यूज करन कूता छु सही सान हैंड हेल्थुक, तथा पर सानस जल्दस पर क्या असर छ हम पेवा, अमु कुन तो थोड़ा सा ये क्या मामला छ?
1: मौजू सवाल कि लुक हाइपर रेस्पॉन्सिव बनान पिसान सेहत खात कि मे गो ना इन्फेक्शन आम अत पन स्किन इंटीग्रिटी सो मेंटेन कर खात यह जरूरी कि अगर अत पे इन्फेक्शन आज हटा तथ लेवलस तान कि गो इन्फेक्शन ग मगर यूत पजन अत पे यहाँ रगड़ दिन कि अमिश स्किन कवरिंग सो ग खराब कि तथ मे यूत जख्म लगित या तथ पे त्रो यूत कैमिकल्स कि तम जर हेस अंदर इन्फेक्शन दाखिल गई पे तुम सवाल वो कि लुक सैनिटाइजर इस्तेमाल सैनिटाइजर बेसिकली अल्कोहलिक कंपाउंड यह इंसान स्किन साफ करान यह जरासीम मारान हद खत ज्यादा यूत कोशिश आसान यह जरासीम मारान तम पत अ ड्राइनेस

0: दोस्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर और समाप्त करें प्रोग्राम पयाम सुबह। पयाम सुबह में हमारे साथ बने हुए हमारे आज के मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कम्युनिटी मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो ये डिपार्टमेंट है, इसका क्या रोल है, क्या काम करता है और कैसे आपका पूरा दिन गुजरता है?
1: देखिए, कम्युनिटी मेडिसिन एक सब्जेक्ट है जो नेशनल मेडिकल कमीशन के तहत जो MBBS कोर्स होता है उसमें एक इसका एक बड़ा कलीदी रोल होता है। जो 4.5 साल का MBBS कोर्स होता है उसमें ये फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करके प्री फाइनल तक पढ़ाया जाता है, फेज़ थ्रू पार्ट वन तक, जो 3.5 साल तक हम इसको पढ़ाते हैं वहाँ पे, ताकि जो प्राइमरली जो बेसिक कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, बेसिक सब्जेक्ट्स हमारे जो हैं, उसके बाद पैराक्लिनिकल और क्लिनिकल सब्जेक्ट्स जो हॉस्पिटल बेस्ड होते हैं, उसके अलावा ये सब्जेक्ट जो है ये कम्युनिटी बेस्ड है। हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये दिखाते हैं कि हमारा जो हेल्थ है वो जो मेडिकल केयर है उसके बाहर है, कि मेडिकल केयर जहाँ पेशेंट बीमार हो वो फिर हॉस्पिटल आके अपना इलाज कराए या फिर एडमिट हो, जो हॉस्पिटल मेडिसिन है उसके बियॉन्ड कम्युनिटी मेडिसिन है, जहाँ पे हम लोगों तक बात पहुँचाएँ, लोगों में बिहेवियरल चेंज लाने की कोशिश करें, लोगों की स्क्रीनिंग करें, डिजीज़ सर्विलेंस करें, डिजीज़ को देखें कहाँ पे क्या हो रहा है, और ये सब चीज़ें ताकि लोग बीमार ना हों, और अगर हों तो एज अर्ली एज पॉसिबल उनको डिटेक्ट किया जाए और उनका ट्रीट किया जाए। सो कम्युनिटी मेडिसिन का जो रोल है मल्टी डायमेंशनल है। हम एकेडमिक्स, जैसे मैंने कहा, हम 3.5 साल ये पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। NMC ने रिसेंटली स्टार्ट किया जिसे हम फैमिली अडेप्शन प्रोग्राम कहते हैं, जिसके तहत एक स्टूडेंट को एज सुन एज वो मेडिकल कॉलेज में आते हैं तो हम उनको 5 फैमिलीज दे देते हैं, वो 5 फैमिलीज़ को अडाप्ट करते हैं जब तक वो प्री फाइनल में जाएं, वो उनको रेगुलरली विजिट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका हेल्थ चेकअप करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट फैसिलिटेट कराते हैं, वो सब चीज़ें, ताकि जो कनेक्ट हो एक डॉक्टर का कम्युनिटी के साथ वो शुरू से ही शुरू हो। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं जो हम जब जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपसे अपने सिम्टम्स पूछते हैं और आप इलाज करते हैं, बट बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जहां पे आपको बाकी फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल, जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, ऑक्यूपेशनल फैक्टर है, आपका न्यूट्रिशन

0: है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक शख्स को बीमार होने और उसका ठीक होने में। सो ये इस सब चीज़ों का हम एक्सपोजर एक स्टूडेंट को दे देते हैं। हम उनको डिजीज़ के बारे में पढ़ाते हैं, हेल्थ के बारे में पढ़ाते हैं, एनवायरमेंटल ऑक्यूपेशन हेल्थ के बारे में पढ़ाते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में, डिजीज़ इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ाते हैं, बायो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं, ये MBBS में पढ़ाते हैं। इसके अलावा हमारे पास एकेडमिकली MD होता है, 3 साल का MD होता है, जो बहुत पहले से हो 1971 से हमारे पास MD कम्युनिटी मेडिसिन के कोर्सेज, जो पहले सोशल कम्युनिटी मेडिसिन कहा जाता है, वो चल रहे हैं। उसके अलावा जो पेशेंट केयर है हमारा, जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक हजरतबल है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल कंट्रोल हमारे पास है, तो वो हमारे अंडर आता है, जहाँ पर हमारे लगभग 17 हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, तो वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स वहाँ पर जाके लोगों का इलाज कराते हैं। SMHS हॉस्पिटल में हमारा अर्बन PSC चलता है, जहाँ पर हमारा एंटी रैबीज़ क्लिनिक चलता है, जो रियासत में सबसे बड़ा एंटी रैबीज़ क्लिनिक है, जहाँ पर बेशतर हमारे पास केसेज आ जाते हैं, एनिमल बाइट्स के, डॉग बाइट्स हो, कैट बाइट्स हो, बाकी एनिमल बाइट्स हो, वहाँ पर ट्रीट करते हैं। वहाँ पर इम्यूनाइजेशन सेंटर हमारा चलता है, अर्बन फैमिली वेलफेयर सेंटर चलता है, येलो फीवर वैक्सीनेशन सेंटर जो J&K में वाहिद सेंटर है, हम वहाँ पर वो वैक्सीनेशन देते हैं, जो वो अशखास जो अफ्रीकन कंट्रीज़ या साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में जहाँ येलो फीवर की डिजीज़ है, वहाँ जाने के लिए ज़रूरी है कि येलो फीवर वैक्सीनेशन है, वो वहाँ करते हैं। उसके अलावा जो हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, वो रिसर्च की तरफ है, तो हमारे डिपार्टमेंट मल्टी सेंट्रिक रिसर्च करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स में, ड्रग ट्रायल्स में हैं। सो इस एक पूरा एक कंप्रहेंसिव तरीके पे हमारा डिपार्टमेंट काम करता है, और इसमें एक हेल्थ एजुकेशन और अवेयरनेस काफ़ी एक कलीदी रोल रहता है।
1: बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी देने के लिए। आखिर पर कोई मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से हमारे सुनने वालों को?
0: देखिए, जैसे आज के दिन के मुनासिबत से यही है कि हमारा जो हाथ है, इसके ज़रिए हमारा सेहत हमारी हाथ में है, सिंपल सी बात है। अगर आप अपना हाथ साफ रखें तो आपके हिफ्जान सेहत, आप जो आपके हेल्थ है वो ठीक रहेगा। अगर आपका हाथ अच्छा साफ नहीं रहेगा तो हम बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां लाख होने के खतरात रहेंगे। सो अपना हाथ हर बार धोने की कोशिश करें, खाने से पहले, वॉशरूम जाने के बाद, और जब भी किसी बीमार या किसी चीज़ का गंदगी सहा आपका हाथ लगे तो उसको अच्छी तरह से साफ़ करें, और जब भी घर आए अपना हाथ अच्छी तरह से धोएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, और कम से कम 20 सेकंड के लिए अपना हाथ धोएं, साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं, ताकि आप खुद भी साफ रहें और आपके ज़रिए भी किसी और शख्स को कोई बीमारी लाहक ना हो।
1: डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के दिन इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया दावत देने के लिए।
1: तो सामिन, ये थे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान साहब, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है कम्युनिटी मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में, जिनसे आज हमने बात की और उनसे जाना कि किस तरह से ये डिपार्टमेंट काम कर रहा है, और साथ ही साथ आज के दिन के हवाले से, यानी आज वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे है, उस हवाले से हमने बात की। और आप सबसे भी गुजारिश कि अपने हाथों को साफ रखा करें, कोशिश करें कि अगर कहीं पर भी आप कॉन्टैक्ट में आते हैं किसी गंदी चीज़ के, या फॉर दैट मैटर आपने हॉस्पिटल जाके किसी रेलिंग को हाथ लगाया या हैंडल को हाथ लगाया, ऑफिस में हाथ लगाया, उसके बाद कोशिश करें इमिजिएटली आप हाथ धोएं। बिना हाथ धोए कुछ न खाएं, बिना हाथ धोए अपने मुंह की तरफ हाथ ना ले जाएं, बिना हाथ धोए अपने बच्चों से हाथ ना मिलाएं, बिना हाथ धोए उस बीमार से ना मिलें जो बीमार ऑलरेडी उसकी जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो आज के इस शुमारे में बस इतना ही। इंशाल्लाह कल सुबह ठीक 7:10 पर आपसे होगी मुलाकात। जब तक के लिए दीजिए इसी अपनेपन के साथ इजाज़त कि आप अपना ख्याल ढेर रखेंगे, खुश रहेंगे और हर तरफ खुशहाली फैलाएंगे। अब आगे के लिए जुड़ते हैं वापस सुहिला रोज से। जी सुहिला,
2: शुक्रिया तबरेज भाई। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, हमारा अगला ऐलान सुनिए।

0: Semeni mătrăm tăsă, Sofian masă chibozan, să dea carăs, și obdălăzi zi în sătii, imă nici buzutăi măcame hosanei. E acașvanica Srinagar Station hai. Din că bara bajne bale, thodi dir baad acașvanii Dili se, angrezi or hindi khabrun ka bulletin nash hoga.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की, ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने फिलीपींस के प्रवासी कामगार विभाग के मंत्री हंस ल्यूक कैगडेक से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रवासियों के आवागमन और पलायन से जुड़े साझा मुद्दों पर सहयोग के बारे में चर्चा की। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में हुए हमले में 3 भारतीय नागरिकों के घायल होने की घटना को अस्वीकार्य बताया है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने इस शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है और इस संघर्ष में नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुकूल होर्मुज जलडमरों मध्य में मुक्त और निर्बाध आवाजाही की भी अपील की।

0: मंत्रालय ने कहा है कि भारत मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान में सभी प्रयासों में सहयोग देने के लिए तैयार है। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक जनादेश तथा राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी नेता डॉ. भरत बराई ने इस परिणाम को राज्य की जनता की विजय बताया और पिछली सरकार पर राज्य के सभी संसाधनों का दुरुपयोग करके माफिया साम्राज्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ भाजपा के अध्यक्ष डॉ. अदापा प्रसाद ने भाजपा की इस अभूतपूर्व ऐतिहासिक जीत पर बंगाल और असम की जनता को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुच्चेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता तथा पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली के सिया पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नवीन ने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज आईआईटी मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। मध्य चीन के हुनान प्रांत में आतिशबाजी के कारखाने में हुए विस्फोट में 21 लोग मारे गए और 61 अन्य घायल हो गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। India has said the attack on the Fujairah Petroleum Industries zone in the UAE, which resulted in injuries to 3 Indian nationals, is unacceptable. 3 Indian nationals were injured after a fire broke out at the Fujairah Petroleum Industries zone yesterday, following a drone attack from Iran. In a statement, the External Affairs Ministry called for the immediate cessation of hostilities and condemned the targeting of civilian infrastructure and innocent civilians. It said India continues to advocate for dialogue and diplomacy to address the situation so that peace and stability may be restored across West Asia. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today said that development cooperation remains a key pillar of the partnership between India and Jamaica. Dr. Jaishankar was addressing the media after his meeting with Jamaican Foreign Minister Kamina Johnson-Smith and other cabinet members. The External Affairs Minister said the talks were comprehensive and substantive, covering the full spectrum of bilateral ties and identifying new avenues to further strengthen cooperation. He noted that both countries signed several important agreements and discussed the effective implementation of recently concluded MOUs in areas such as digital transformation, cultural exchange, sports, and digital payments to ensure tangible outcomes on the ground.
3: We reviewed the entire gamut of India-Jamaica relations. We identified new avenues for further strengthening our partnership. We have signed several important agreements and we discussed effective implementation.

जी समय आपको बताते चले, फिल्मीनक में आप इस वक्त आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। अब आइए सोनू निगम और अलका याग्निक को सुनता है यह फिल्म बरसात।

जी समय अब आइए आखिर पे राहत फतेह अली खान और श्रिया घोषाल को सुनता है यह फिल्म बॉडीगार्ड।

0: आप समाप्त कर रहे थे फिल्मी नगमी आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ मीडियम भी 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर 12:30 हो रहे हैं। समाप्त कीजिए खबरें पहले और दो और उसके फौरन बाद कश्मीरी में।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बसार गुल। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत आज वस्ती कश्मीर के बड़गाम जिले में एक बड़ी पदयात्रा का इनेकाद हो रहा है। इतलात के मुताबिक पदयात्रा को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने न्यू बस स्टैंड बड़गाम से झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर से मनुष्यात के खात्मे के लिए इंतजामिया के आजम का यादा किया। उन्होंने कहा कि मनुष्यात के कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से गुरेज नहीं किया जाएगा, तहम इस वबा के शिकार अफराद की बाजाबादकारी के लिए मुनासिब इकदाम किए जाने का सिलसिला भी जारी रहेगा।
2: मैं बड़गाम में सक्रिय ऐसे सभी तत्वों और नार्को टेरर से जुड़े हुए लोगों से कहना चाहता हूं कि बड़गाम की धरती पर अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया है और मैं आज हर बड़गाम वासी के नागरिकों को भरोसा देता हूं कि एक भी ड्रग स्मगलर बचेगा नहीं, कानून के दायरे में लाया जाएगा। जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों को मिलाकर ऐसे तमाम आंकड़े हमारे पास हैं जो दर्शाते हैं कि ड्रग्स के सप्लाई चेन को पूरी तरह नष्ट करने के लिए आवाम के साथ मिलकर सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही जीरो टॉलरेंस टू ड्रग्स की नीति अपनाकर शिद्दत से काम कर रहे हैं। और आज मैं यहाँ उपस्थित हर एक नागरिक से, हर एक नौजवान से, हर एक बहन से निवेदन करना चाहता हूँ कि जागरूकता अभियान में आप भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए।
1: इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में मनुष्यात के मुजर असरात के मौजू पर दो रोजा वर्कशॉप आज भी जारी है। वर्कशॉप के इब्तदाई इजलास से खिताब करते हुए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रूमशू ने कहा कि समाज से इस्लामियत के खात्मे के लिए इदारा जाती कोशिशें भी अहमियत की हामिल है। तहम उन्होंने कहा कि इसमें समाज के हर तबके को अपना किरदार अदा करना चाहिए। वर्कशॉप के दौरान मनुष्यात के

0: कश्मीर की वेबसाइट पर विजिट करें।
1: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
2: अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्रामक अध्यक्ष मारे चस बरूबी निसा खान सनिस प्रोग्रामस मन छु तुहुंद इस्तकबाल। आज छु 5 मई। आज छु आलमी सतह पेट एज़मा डे यानी अस्थमा डे मनावने इवान। यो दो मनावने शुरुआत आई जाइना यानी ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा के जरिए 1998 मज करने। अमिक इनॉग्रल इवेंट आओ बार्सिलोना स्पेन मंस मुनकद करना। सामीन तुझी जानकारी खतर वनव जे जाइना छ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।

0: ऐसी इसकी इजाजत इंशाल्लाह ताला करो भी मुलाकात। खुदा हाफिज।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से जरूरी सूचना। अगर आप 1 अप्रैल 2026 को 18 साल के हो चुके हैं मगर अभी तक पंचायत इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर नहीं हुए हैं, या फिर आपका नाम या आपसे जुड़ी कोई भी जरूरी जानकारी दर्ज नहीं है या उसमें बदलाव की जरूरत है, तो आज ही अपने पंचायत सेक्रेटरी यानी ग्राम सेवक से संपर्क करें।
3: नई एनरोलमेंट के लिए फॉर्म PER2A, मौजूदा नाम हटवाने के लिए फॉर्म PER2B, करेक्शन के लिए फॉर्म PER2C और किसी भी पंचायत हल्के में ट्रांसपोज के लिए फॉर्म 2D का इस्तेमाल करें। आप स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट SECG के
4: समय मोहतरम। तो इस प्रोग्राम बुजाम बजमनिस्वा पेशकश समीन आशा।
5: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। श्री मोदी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान में सभी प्रयासों में सहयोग देने के लिए तैयार है। मध्य पूर्व के देशों और क्षेत्रीय संगठनों ने संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। उधर खाड़ी क्षेत्र में अमरीका और ईरान के बीच नए सिरे से हमले शुरू हुए हैं। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य के नियंत्रण को लेकर तनाव और बढ़ गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल

0: और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत की 3 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज बिहार के गया पहुंच गए हैं। उनके साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक मजबूत व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आया है। वियतनाम के राष्ट्रपति आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तो लाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति तो लाम के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। शाम को राष्ट्रपति तो लाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज IIT मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अनुसंधान क्षेत्र में एक नया इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो दिन बीत गए जब संस्थान केवल शिक्षा तक ही सीमित रहते थे। अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अनुसंधान केवल PhD थीसिस, साइटेशन पेपर या प्रकाशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अनुसंधान से नवाचार यानी इनोवेशन होना चाहिए।
2: रिसर्च मस्ट लीड टू इनोवेशन।
0: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली के सीआर पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नवीन ने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.6% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 480 अंक गिरकर 76,790 पर, जबकि निफ्टी 145 अंक लुढ़ककर 23,974 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has strongly condemned the attacks on UAE's Fujairah that resulted in injuries to 3 Indian nationals. In a social media post, Mr. Modi stated that targeting civilians and infrastructure is unacceptable. He asserted that India stands in firm solidarity with the UAE and reiterates its support for the peaceful resolution of all issues through dialogue and diplomacy. Mr. Modi underlined that ensuring safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz is vital for enduring regional peace, stability and global energy security. Yesterday, 3 Indian nationals were injured after a fire broke out at the Fujairah Petroleum Industries Zone in the UAE following a drone attack from Iran. Earlier, the Ministry of External Affairs also condemned the attack in the UAE, calling it unacceptable. In Tamil Nadu, political activity has intensified following the completion of vote counting for the assembly elections. The TVK has emerged as the single largest party in the state. Party leader Joseph Vijay paid tribute to the founder of Dravidian politics, C.N. Annadurai, in the state. Today, newly elected TVK legislators have gathered at the party headquarters in Panayur near Chennai to elect actor-turned-politician Joseph Vijay as their legislative party leader. The party is now expected to approach the governor to stake its claim to form the government in the state. BJP President Nitin Naveen, along with Delhi Chief Minister Rekha Gupta, offered prayers at the Kalibari Mandir in CR Park in New Delhi today. Later, speaking to reporters, Mr. Naveen congratulated the people of West Bengal, 3 other states and a union territory where assembly election results were declared yesterday. He said Prime Minister Narendra Modi is steering the nation on the path of development while preserving its culture and heritage. BJP MPs Raghav Chaddha, Ashok Mittal, Sandeep Pathak and Rajendra Gupta today met President Draupadi Murmu at Rashtrapati

0: सबदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है श्रोताओं, आप सबका विमलेश का नमस्कार कीजिए स्वीकार
0: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने लिखा है।
2: भीड़ में बच्चा जब तक अपनों का हाथ पकड़कर चलता है उसे मेला बहुत सुंदर और खूबसूरत लगता है, पर वही बच्चा अगर अपनों से बिछड़ जाए तो वही मेला उसे डरावना और नीरस लगने लगता है।
0: दुनिया के मेले में भी हम सब की स्थिति भी यही है। जब तक हम अपनों से जुड़े हुए हैं, उनका हाथ थामे हुए हैं, दुनिया हमें सुंदर लगती है। इसीलिए हमेशा अपनों का साथ और हाथ थामे रहिए।
2: जी, बहुत ही सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब सोशल मीडिया और आधुनिकता की दौड़ में लोग एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, बहुत जरूरी है कि हम अपने सामाजिक पारिवारिक ताने बाने को संभाल कर रखें, खासकर बच्चों और बड़े बुजुर्गों को जरूर समय दें।
0: अगला संदेश हमें मिला है मेन रोड तेल्हारा से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, कुमारी सुजाता पोहरकर का। लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत जी एवं विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। दिनांक 3 अप्रैल 2026 को प्रसारित हुआ कार्यक्रम हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रभावशाली

0: शाली लगा। आयुर्वेद के इस गौरवशाली इतिहास और उसकी वैज्ञानिकता को साझा करने के लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद।
1: आपको भी धन्यवाद।
0: ऐसी जानकारी आसानी से नहीं मिलती। एनसीईआरटी उमंग की पूरी टीम को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दिनांक 8 अप्रैल 2026 को प्रस्तुत आसमान गिरा ये कार्यक्रम हमें बाल कथा के रूप में बेहद पसंद आया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए और हर काम सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। बच्चों के लिए इतनी सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी।
0: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने लिखा है। 3 अप्रैल को कार्यक्रम उमंग में वैद्यराज जीवक के बारे में जानकारी सुनने को मिली जो बहुत अच्छी लगी। आपका कार्यक्रम जानकारी से भरपूर होता है। उमंग परिवार के साथ लेखक और प्रस्तुतकर्ता को बहुत बहुत बधाई।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया और श्रीमती कल्पना चंसोलिया जी का।
0: कृष्णा पार्क दिल्ली से आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर, अकरम आसमा फकीर।
1: आपके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। आपसे निवेदन है इसी तरह से लिखते रहिए और सुनते रहिए हमारा आपका सबका चहेता कार्यक्रम उमंग। स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर सी कविता से।
0: जी अजीत जी, श्रोताओं जब ये कविता कही जाए तो आपको अंदाजा लगाना है कि ये कविता किस पर है। जल निधि चहुं ओर अपार, प्रकृति का ये कैसा विस्तार, दिखता नहीं है आर पार, लहरों में छिपा अनंत संसार।
1: क्या बात है, दिखता नहीं है आर पार, लहरों में छिपा है अनंत संसार। और आगे लिखा है गहराई इसकी अति गंभीर, रहस्य भरे इसमें शरीर, जीवों का अद्भुत परिवार, सृष्टि का ये अनुपम उपहार।
0: तो श्रोताओं लगा कुछ अंदाजा?
1: जरूर लगा लिया होगा। यदि आपका अंदाजा समुद्र है तो श्रोताओं आप बिल्कुल सही हैं। श्रोताओं इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे समुद्र और उसकी रहस्यमय दुनिया की। तो आइए जानते हैं समुद्र की कुछ रोचक बातों को।
0: तो अजीत जी पहला प्रश्न ये उठता है कि समुद्र या सागर क्या है?
1: विमलेश जी, कहा जा सकता है कि समुद्र पृथ्वी पर फैला हुआ विशाल खारे जल का क्षेत्र है।
0: जी,
1: पृथ्वी का लगभग 71% भाग समुद्र से ढका हुआ है।
0: जी,
1: लेकिन विमलेश जी एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है।
0: वो क्या?
1: वो ये है कि कुछ लोग इसे समुद्र कहते हैं तो कुछ इसे सागर कहते हैं।
0: जी,
1: लेकिन महासागर भी तो हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि सागर और महासागर में क्या अंतर है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न अजीत जी। देखिए, पहली बात है आकार या क्षेत्रफल। सागर आकार में छोटा होता है जैसे अरब सागर, और महासागर बहुत विशाल होता है जैसे प्रशांत महासागर।
1: जी, तो मुझे लगता है कि स्थिति या लोकेशन भी मायने रखती है।
0: जी,
1: जैसे महासागर पृथ्वी के बड़े और खुले हिस्सों में फैले होते हैं जबकि सागर अक्सर महाद्वीपों के बीच होते हैं।
0: जी अजीत जी, एक और महत्वपूर्ण बात और वो है गहराई। महासागर अधिक गहरे होते हैं जबकि समुद्र या सागर थोड़े कम गहरे होते हैं। वैसे ध्यान से देखा जाए तो सभी सागर अपवादों को छोड़कर महासागरों से जुड़े होते हैं।
1: बिमलेश जी, इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का सागर हिंद महासागर से जुड़े हुए हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब जानते हैं कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं। आपसे शुरू करें।
1: जी, प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा और गहरा महासागर है।
0: जी,
1: दूसरा है अटलांटिक महासागर, ये यूरोप और अमेरिका को अलग करता है। अब आपकी बारी है।
0: और तीसरा महासागर है हिंद महासागर, ये एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। और ये सभी महासागरों में सबसे गर्म माना जाता है। फिर चौथा है दक्षिणी महासागर, ये अंटार्कटिका के पास है, इसे अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं।
1: और पांचवा महासागर है आर्कटिक महासागर, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे छोटा महासागर है। आपको विशेष रूप से बता दें कि विश्व व्यापार का सबसे बड़ा माध्यम महासागर और समुद्र ही हैं।
0: तो श्रोताओं ये थी आज की जानकारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से प्रश्न है।
1: तो प्रश्न है पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
1: श्रोताओं 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
1: जी,
0: इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है माय नेम।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक एक पाठ पर आधारित है जिसमें एक मक्खी अपना नाम भूल जाती है। वो कई पशु पक्षियों के पास जाते

0: what do you hear? Can you recognize the sounds? Can you make these sounds? Note to the teacher. Help children find the meanings of their names as it is related to their identity.
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम माई नेम और अब सुनते हैं कार्यक्रम
2: मौलाना अबुल कलाम आजाद।
1: ये कार्यक्रम भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद के जीवन और देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान की जानकारी देता है।
3: मौलाना अबुल कलाम आजाद।

0: की। सन 1888 में उनका जन्म मक्का में हुआ। उनके बचपन का नाम गुलाम मुहीउद्दीन अहमद था और आजाद बाद में उनका तखल्लुस यानी उपनाम बना।
1: उनके पिता मौलाना खैरुद्दीन बहुत बड़े विद्वान और धर्मशास्त्री थे। उनकी वालिदा आलिया बहुत नेक और रहमदिल थीं। वे मदीना के प्रसिद्ध विद्वान की पुत्री थीं। बालक अबुल कलाम को पढ़ाई का माहौल विरासत में मिला। उनके जन्म के कुछ साल बाद उनके वालिद को एक दुर्घटना में चोट लग गई। वे इलाज के लिए कलकत्ता आ गए और कलकत्ता में ही बस गए। अब सवाल बालक अबुल कलाम की शिक्षा का था, तो उनके पिता ने उन्हें घर पर ही शिक्षा दिलवाई। मजहबी परिवार में पैदा होने की वजह से दीनी तालीम पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया।
2: मेरा सपना है मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा और मजहबी इंसान बने। मुझे यकीन है मेरी परवरिश और उसको मिली तरबियत एक दिन जरूर रंग लाएगी। वो बड़ा होकर मेरे सपने को साकार करेगा।
1: पर बालक अबुल कलाम के बचपन के खेल तो निराले हुआ करते।
3: इसको इधर लगा देता हूँ।
4: अरे ये क्या कर रहे हो अबुल? ये सारे बक्से एक लाइन में क्यों लगा दिए?
3: रुको, मैं अभी अम्मी से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। जब मार पड़ेगी ना तब पता चलेगा तुम्हें।
5: ना ना, ऐसा ना करना फातिमा आपा। ये तो रेलगाड़ी बनाई है मैंने,
3: पता है क्यों?
5: क्यों? ताकि अब आप लोग संदूक पर चिल्ला चिल्ला कर कहें, हटो हटो, रास्ता दो, दिल्ली के मौलाना आ रहे हैं।
3: लेकिन भाई यहाँ तो कोई आदमी है ही नहीं, हम किससे कहें रास्ता दो?
5: अरे ये तो खेल है।
4: अरे अरे ये क्या कर रहे हो? नीचे उतरो गिर जाओगे।
5: नहीं गिरूंगा आपा, बस आप लोग मेरे बोलने के बाद तालियां बजाएं।
4: क्यों तालियां क्यों बजाएं हम?
5: भूल गई, मैं भाषण दे रहा हूँ।
4: अच्छा तो ये बात है।
0: उनका बचपन दूसरे बच्चों से अलग था। उनके खेल इस तरह के हुआ करते कि उनके घर वाले भी हैरान रह जाते। शायद वो उन खेलों के जरिए ये बताना चाहते थे कि वे भविष्य में क्या बनेंगे। मासूम बचपन के पास निराले खेलों में एक जिंदगी देखने को मिलती।
1: वक्त बीतने के साथ साथ जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनका पढ़ाई की तरफ रुझान बढ़ता गया। नतीजा ये हुआ कि उनके शौक को देखकर उनके पिता ने कई अध्यापक रख दिए। ये सभी अध्यापक उन्हें अलग अलग विषय पढ़ाया करते। अबुल कलाम बड़े मेहनती छात्र थे। 16 वर्ष की आयु में ही अनेक विषयों का गहन अध्ययन उन्होंने पूरा कर लिया। इसी उम्र में अन्य विद्यार्थियों को दर्शन शास्त्र, गणित और तर्क शास्त्र पढ़ाकर उन्होंने अपनी योग्यता दिखा दी।
0: उनकी शिक्षा धार्मिक वातावरण में पुरानी परंपरा के अनुसार हुई। इस बीच उन्हें कुछ ऐसे लेख पढ़ने को मिले जिन्हें पढ़कर उन्हें यह महसूस हुआ कि आधुनिक विज्ञान और समाजशास्त्र पढ़ना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने अंग्रेजी सीखनी शुरू की और जल्द ही विभिन्न विषयों की पुस्तकें पढ़ने लगे। वे 14 साल की उम्र से ही शेर कहने लग गए थे। वे बहुत कम उम्र से ही आजादी के आंदोलन से प्रभावित हो गए थे।

0: परंपरागत रूढ़ियों के विरुद्ध मौलाना के मन में विचारों का संघर्ष आरंभ हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपना रास्ता खुद बनाएंगे। इसी समय उन्होंने अपने नाम के साथ आजाद लगाने का निश्चय किया और वे मौलाना अबुल कलाम आजाद कहलाने लगे। वे बहुत अच्छे लेखक और वक्ता थे, इसलिए उन्होंने अपनी कलम के सहारे देश की जनता को प्रेरित करने का निश्चय किया।
1: उन्होंने तर्जुमानुल कुरान किया। उनके कई लेख लाहौर के पैसा, लखनऊ के अल अवध और अमृतसर के वकील अखबारों में छपे। समय के साथ साथ उनके लेखों से लोगों के बीच उनकी शोहरत बढ़ने लगी।
0: बीसवीं सदी का आरंभ। देश में क्रांतिकारी आंदोलन जोर पकड़ रहा था और बंगाल इसका मुख्य केंद्र था। अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भेदभाव पैदा करके इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे। 1905 में उन्होंने बंगाल का विभाजन करने का निश्चय किया। पूरे देश में जमकर विरोध हुआ। इसी बीच मौलाना आजाद बंगाल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और उनकी सहायता की। वे चाहते थे कि मुसलमान स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और अंग्रेजी शासन समाप्त करने की भरपूर कोशिश करें।
1: मौलाना के मन में ये विचार जमता चला गया। उन्होंने अनुभव किया कि भारतीय मुसलमानों को आजादी के आंदोलन से जोड़ने और जनमत तैयार करने के लिए एक अच्छा उर्दू पत्र निकालना जरूरी है। अल हिलाल पत्र का जन्म इसी निश्चय का सुफल था। अल हिलाल को लोकप्रिय बनाने के लिए उसमें बेहतर से बेहतर पठनीय सामग्री का समावेश किया गया और उसके गेटअप को भी उतना ही खूबसूरत बनाया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि अल हिलाल उर्दू पढ़ने वालों का सबसे प्रिय पत्र बन गया। ये थी कुशल पत्रकार के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जोरदार सफलता। अल हिलाल का निकलना था कि उर्दू पत्रकारिता के इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया। लोगों में क्रांति की लहर दौड़ गई। ये अखबार इतना मशहूर हुआ कि 3 महीने में ही सभी पुराने अंक दोबारा छापने पड़े, क्योंकि लोग दोबारा उसे शुरू से पढ़ना चाहते थे। अल हिलाल के जरिए क्रांति की जो आवाज उठी, उससे ब्रिटिश सरकार परेशान हो गई और वो जब्त कर लिया गया। तब अबुल कलाम ने दूसरा पत्र अल बलाक 1915 ईस्वी में प्रकाशित करना शुरू कर दिया।
0: ब्रिटिश सरकार ने समझ लिया कि इसके जादू का जोर प्रेस एक्ट का सहारा लेकर नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि अल बलाक की भी वही शान थी। अप्रैल 1916 में मौलाना को कलकत्ता छोड़ देने पर मजबूर कर दिया गया। पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मौलाना के प्रवेश पर पहले ही पाबंदी लग चुकी थी। वे कलकत्ता से रांची आ गए। 6 महीने बाद ही वहां उन्हें नजरबंद कर लिया गया और वे 3 साल बाद छूटे। रांची की कैद ने मौलाना को अब राजनीति के क्षेत्र में पूरी तरह उतार दिया और वे कुशल पत्रकार, पूरे देश के चहेते नेता बनकर उभरने लगे थे।
1: जेल से छूटने के बाद मौलाना कुछ दिनों तक तो सारे देश के दौरे में लगे रहे और तभी वे गांधी जी से मिले। गांधी जी तो उनसे पहले से ही मिलना चाहते थे। पूरे देश में असहयोग आंदोलन की एक आग सी फैल रही थी। मौलाना आजाद अब पूरी तरह राजनीति के क्षेत्र में उतर आए थे। भारतीय जनता को जगाने, विशेष रूप से

0: मुसलमानों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध रोष पैदा करने का अब एक विशेष अवसर हाथ लगा था। उन्हें प्रकृति ने लेखन शक्ति और वाक शक्ति दोनों उच्च कोटि की दी थी।
1: स्वराज उस समय तक निरर्थक है जब तक ये गरीब और अमीर के अंतर को नहीं मिटाता, और मेरे विचार से खादी का आम व्यवहार ही ये अनुभूति उत्पन्न कर दे कि हम भी इन लाखों गरीब भाइयों में से हैं जो इस देश में बसते हैं। क्या हमारी इच्छा नहीं कि हमारे बदनसीब भाई हमारे कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें और स्वतंत्रता प्राप्ति से आनंद विभोर हों?
0: सितंबर 1923 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता के लिए मौलाना का नाम आया। मौलाना की उम्र उस समय केवल 35 वर्ष की थी, जो अब तक के अध्यक्षों को देखते हुए काफी कम उम्र थी। 1923 में वे पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और खुशकिस्मती से 1940 में दोबारा यही पद उन्हें हासिल हुआ। इस बार वे 6 साल तक अध्यक्ष रहे। कांग्रेस का एक पार्लियामेंट्री बोर्ड यानी संसदीय समिति बनी। वे उसके सदस्य घोषित किए गए। उनके जिम्मे बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिंध और सीमांत प्रांत के संसदीय मामले थे। उन्होंने उन मामलों को बखूबी सुलझाया। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ही मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था,
1: आज भारत में न किसी हिंदू संगठन की जरूरत है न मुस्लिम संगठन की, हमें केवल एक संगठन की जरूरत है और वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस।
0: मौलाना आजाद कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सभी प्रांतीय नेताओं से मिलते रहे। भारत छोड़ो आंदोलन जोरों से शुरू हो गया था। हजारों लोग गिरफ्तार हुए। मौलाना को भी 8 अगस्त 1942 को फिर गिरफ्तार कर लिया गया और वे 1945 तक जेल में रहे।
2: भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनकी पत्नी का देहांत हो गया, मगर वे इस दुख को सब्र के साथ सह गए। उन्होंने उस गम को चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया।
0: उनका चरित्र आदर्श था। एक जगह उन्होंने स्वयं लिखा है,
1: 1918 से जिन बातों का संकल्प लिया है उनमें से एक बात यह भी है कि मेरे खिलाफ चाहे कोई कितना कुछ क्यों न कहे या लिखे, अपने दिल में उसके लिए कोई शिकायत पैदा न होने दूंगा। अपना दामन कांटों से उलझाओ और जरूर उलझाओ, मगर इतनी सख्त बाकी रहे कि जब चाहो निकाल लो।
2: 15 अगस्त 1947, देश आजाद हुआ। आजाद भारत के वे पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने पुरुषों से ज्यादा महिला शिक्षा पर अधिक जोर दिया। उनका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य रहा ललित कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अकादमियों की स्थापना। उन्होंने साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी की स्थापना की और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित करने के लिए साधन उपलब्ध कराए। उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के अनेक कार्यक्रम शुरू किए।
0: मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का गठन किया और खड़गपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना उनकी इस क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इससे इंजीनियरिंग की उच्च व श्रेष्ठ शिक्षा के काम को बढ़ावा मिला।
2: ऐसी आला शख्सियतें बार बार जन्म नहीं लेती और उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी हम उन्हें कभी भूल नहीं पाते। मौलाना अबुल कलाम आजाद महा

0: महान नेता, महान राजनीतिज्ञ, महान लेखक, महान वक्ता, सभी कुछ थे। उनमें एक साथ अनेक गुणों का समावेश था।
1: 22 फरवरी 1958 को इस महान देशभक्त का देहांत हुआ। वे अंतिम क्षणों तक शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। महात्मा गांधी ने कहा था,
2: मुझे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के साथ देशी और कौमी सेवा करने का गौरव प्राप्त है। इनकी राष्ट्रीयता उतनी ही दृढ़ है जितना उनका इस्लाम पर ईमान

0: मौलाना अबुल कलाम आजाद, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आप समाप्त कर रहे थे एनसीईआरटी द्वारा तैयार करदा स्पॉन्सर तालीमी प्रोग्राम उमंग। यह आकाशवाणी श्रीनगर है। हमारा अगला ऐलान सुनिए।
4: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 1:50 हो रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू और अंग्रेजी खबरों का बुलेटिन नेक्स्ट होगा। खबरों का जरा सा इंतजार।

0: खाना बनाने की कोशिश कर रही थी। इसके अलावा ईरान के क्रूज मिसाइलों को, जो अमरीकी बहरिया के मिसाइल शिकन हथियारों को निशाना बना रहे थे, अमरीका की फजाई फौज ने फजा में ही मार गिराया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी कोरिया से इस मिशन में शामिल होने को कहा है, जिसके लिए जनूबी कोरिया ने कहा है कि वो इस दरख्वास्त पर गौर करेगा। इसी दौरान ईरान की वजीर खारजा ने खलीजी मुल्कों से कहा है उसकी कार्रवाई दिफाई नौयत की है और उन्हें वार्निंग दी है कि वो अपने इलाके को अमरीका या इसराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। आज के वाक़े में फुजैरा की हिकमत अमली की दिफाई अहमियत के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। इमारात खलीज उमान पर मुत्तहिदा अरब अमारात के मशरक़ी साहिल पर वाक़े है, जो पूरी तरह आबनाए हुरमुज़ से अलग है और अबू ज़बी के तेल कुओं से इसकी बंदरगाहों तक आने वाली पाइपलाइन की वजह से यूएई नाकाबंदी के बावजूद आलमी मार्केट में कुछ खाम तेल भेज रहा है, जिससे उसने इशारा दिया है कि ईरान इस मुतबादल रास्ते को भी बंद कर देना चाहता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
1: अमरीका और ईरान ने खलीज में ताज़ा हमले किए हैं, जिससे आबनाए हुरमुज़ के कंट्रोल के मामले पर कशीदगी में इजाफा हो गया है और पहले से कमजोर जंगबंदी मजीद कमजोर हो गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक नई पहल प्रोजेक्ट फ्रीडम के ऐलान के बाद मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। इस पहल का मकसद फंसे हुए टैंकर्स और तजारती जहाजों को इस अहम आबी रास्ते से गुजारने में मदद करना है। ये लड़ाई फरवरी में अमरीका, इसराइल इत्तेहाद और ईरान के दरमियान शुरू हुई थी और इसने पूरे खित्ते में हजारों जानें ले ली हैं। खबरों के मुताबिक मालबरदार जहाजों पर अमरीकी हमले में 5 सिविलियन हलाक हुए हैं। वाशिंगटन ने दावा किया है कि इसने ईरान की 6 छोटी फौजी कश्तियों को तबाह कर दिया है। बैलकौमी मालियती फंड ने कहा है कि अगर मगरबी एशिया में लड़ाई 2027 तक जारी रहती है तो आलमी मईशत को इसके संगीन नतीज का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें तेल की कीमतें तकरीबन $125 फी बैरल तक बढ़ने का अंदेशा है। बैलकौमी मालियाती फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टानिया जॉर्जियो ने कहा कि मौजूदा सूरतहाल की वजह से तेल की कीमतें $100 या उससे ऊपर पहुंच गई है और इफरात जर के दबाव में भी इजाफा हुआ है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज कहा कि तरक्याती ताउन भारत और जमैका के दरमियान शराकतदारी का एक अहम सतून है। डॉ जयशंकर जमैका की वजीर खारजा केमिना जॉनसन स्मिथ और दिगर काबीना अरकान के साथ अपनी मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब कर रहे थे। वजीर खारजा ने कहा कि ये बातचीत जामी और ठोस रही है, जिसमें दो तरफा तालुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लिया गया और ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने के नए मौकों की निशानदेही की गई। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने बहुत से अहम माहदों पर दस्तखत किए और डिजिटल तब्दीली, सकाफती तबादले, खेलकूद और डिजिटल अदायगियों जैसे मैदानों में हाल ही में किए गए मुफाहमतनामों पर मौसर अमल दरामद पर बातचीत की गई, ताकि इस सिलसिले में ठोस नतीजे हासिल किए जा सकें। वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने आज जमैका के शहर किंगस्टन में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज में दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल और भारत का रद्दमल के मौजू पर इजहार ख्याल किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने आलमी जनूब, इसलाह शुदा कसीर जहती निज़ाम और कसीर कुतुबी निज़ाम से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती मुकम्मल होने के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। टीवीके रियासत की वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी के रहनुमा जोसेफ विजय ने रियासत में ड्रेविडियन सियासत के बानी सीएन अन्ना दुरोई को खराज अकीदत पेश किया। केरला में कांग्रेस की क्यादत वाला यूडीएफ हुकूमत की तश्कील के सिलसिले में गैर रस्मी बातचीत कर रहा है। तफसील तिरुवनंतपुरम के हमारे नमानिगार से।
2: केरलम में कांग्रेस खेमे में अगरचे हुकूमत की तश्कील के बारे में गैर रस्मी बातचीत जारी है, लेकिन कानूनसाज पार्टी की मीटिंग की तफसीलात का इंतजार है। कांग्रेस की क्यादत वाला यूडीएफ, जिसे केरलम में 140 असेंबली हलकों में से 102 पर हैरतअंगेज कामयाबी हासिल हुई है, कानूनसाज पार्टी की मीटिंग के बाद हुकूमत तश्कील देने के लिए गवर्नर से रुजू करेगा। यूडीएफ के जराये ने इशारा दिया है कि कानूनसाज पार्टी की मीटिंग दिल्ली से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नुमाइंदों के पहुंचने के बाद ही मुनक्किद की जाएगी। काबिल जिक्र है कि मौजूदा अपोजिशन रहनुमा वीडी सतीशन, साबिक अपोजिशन रहनुमा और केपीसीसी के साबिक सदर रमेश श्रीनिवासताला और केपीसीसी के मौजूदा सदर सनी जोसेफ, नौ मुंतखबा अरकान असेंबली में मुमताज सीनियर कांग्रेस रहनुमा शामिल हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पुलरुथे की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं रजी अहमद।
1: तालीम के मरकजी वजीर

जी समीन, दबंग फिल्म से आपने ये नगमा सुना। अब आइए एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म से नगमा सुनते हैं पलक मुच्छल की आवाज़ में।

आप समाप्त कर रहे थे फिल्मी नगमे। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। हमारा अगला ऐलान सुनिए। यह आकाशवाणी श्रीनगर जुबजित 3 मिनट शब्द बोलो समय सोफियान मौसकी बोझो सदा कार्य शेख अब्दुल अजीज दीन सती इमन बुजुर्ग मकाम अशीरा।

जय हिंद फौज भाइयों। फौजी भाइयों, फिल्म संगीत का प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं फिल्म राम तेरी गंगा मेली के इस नगमे से, जिसे गाए हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने।

जी दोस्तों, आपको बताते चले फिल्मी नगमे आप इस वक्त आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं आपके अपने प्रोग्राम में यानी फौजी भाइयों के प्रोग्राम में। अब आइए कल्याण जी आनंद जी की मौसिकी में आनंद बख्शी का लिखा नगमा सुनते हैं। मुकेश की आवाज़ और फिल्म का नाम है मर्यादा।

जी दोस्तों, अब आइए मदन मोहन के मासके में कैफी आजमी का लिखा ये नगमा सुनता है। यह है फिल्म हीरांझा, आवाज़ लता मंगेशकर की।

0: जी दोस्तों, फिल्मी नगमे जा रही हैं। पहले ये वक्त था।
1: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
0: जी दोस्तों, प्रोग्राम में आपका फिर से खैर मकदम है।

जी दोस्तों, प्रोग्राम के आखिर पे अब आइए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को सुनता है, ये है फन कारवां।

जी दोस्तों, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के गाए इस नगमे के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी मुकम्मल हुआ जाता है। इजाज़त दीजिए, जय हिंद।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 3:50 हो रहे हैं। आइए अब उर्दू खबरों का बुलेटिन समाप्त करते हैं।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सपहर के 3:50 हुए हैं। खबरनामा लेकर मैं शेख यासीन। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का हरेक कुंभे, समाजी तंजीम, नीज, रूहानी और सियासी लीडरों से नशा मुक्त अभियान में शिद्दत लाने की अपील। पुलिस ने हवल श्रीनगर के एक बदनाम जमाना ड्रग्स स्मगलर की 1,20,00,000 रुपए की मालियत की जायदाद को किया अटैच। अनंतराग और हंदवाड़ा में 8 ड्रग्स स्मगलर गिरफ्तार। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आवाम के लिए शुरू की गई फलाई स्कीमों की मौसर और बरवक्त अमल आवरी पर दिया जोर। और वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने हालिया असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी को तारीखी और बेमिसाल दिया करार। पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बड़गाम में हर एक कुंभे, समाजी तंजीम, नीज, रूहानी और सियासी लीडरों से अपील की है कि वो जिले में चलाए जा रहे नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में शिद्दत लाएं। उन्होंने यकीन दिलाया कि इंतजामिया पूरी मजबूती के साथ मुनशियात की लानत को उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। बड़गाम से हमारे नुमाइंदे शौकत शाह ने खबर दी है कि बड़गाम में आज नशा मुक्त मुहिम के एक हिस्से के तौर पर निकाली गई बड़ी पद यात्रा में शिरकत के बाद लोगों से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि मुनशियात का जहर हमारे नौजवानों को अंदर अंदर से खोखला बना रहा है। उन्होंने कहा कि इस लत में पड़े नौजवानों के साथ हमदर्दाना रवैया इख्तियार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ड्रग ट्रैफिकिंग और टेरर फंडिंग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।
2: मैं बड़गाम में सक्रिय ऐसे सभी तत्वों और नार्को टेरर से जुड़े हुए लोगों से कहना चाहता हूं कि बड़गाम की धरती पर अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। और मैं आज हर बड़गाम वासी के नागरिकों को भरोसा देता हूं कि एक भी ड्रग स्मगलर बचेगा नहीं, कानून के दायरे में लाया जाएगा। जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों को मिलाकर ऐसे तमाम आंकड़े हमारे पास हैं जो दर्शाते हैं कि ड्रग्स के सप्लाई चेन को पूरी तरह नष्ट करने के लिए आवाम के साथ मिलकर सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही जीरो टॉलरेंस टू ड्रग्स की नीति अपनाकर शिद्दत से काम कर रहे हैं। और आज मैं यहाँ उपस्थित हर एक नागरिक से, हर एक नौजवान से, हर एक बहन से निवेदन करना चाहता हूँ कि जागरूकता अभियान में आप भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए।
1: जम्मू कश्मीर को मुनशियात की बिद्दत से पाक करने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दोमद से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम।
3: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: नौजवानों को इस बुरी आदत से दूर रखने के लिए दरकार इकदाम के बारे में एक शहरी खान बिलाल ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा।
4: गुजारिश करता हूं आजकल के जवानों को कि हमारी गवर्नमेंट ने अच्छी सारी स्पॉन्सरिंग स्कीम्स लाई हैं। कोशिश करें, इस दलदल से निकलें, अपना फ्यूचर बनाएं, कोई बिजनेस खड़ा करें, अपनी सेहत की तरफ ध्यान दें। हमारी पुलिस बहुत अच्छा रोल निभा रही है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं और ज्यादा सख्ती बरतने की जरूरत है।
1: बीजेपी की सीनियर लीडर डॉक्टर इना भट्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से शुरू किए गए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान कलीदी अहमियत का हामिल है। श्रीनगर में मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मुहिम में समाज के सभी तबकों को बढ़ चढ़कर अपना रोल अदा करना चाहिए।
5: जम्मू कश्मीर में जिस

0: तरीके से हालात हो रहे थे हो रहे हैं, ये अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे बच्चों के लिए, यूथ के लिए। टीचर्स का अहम रोल है, खासकर घर से शुरू होना चाहिए अवेयरनेस, और खासकर जब बच्चे बदलाव के साथ घर जाए, पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चा किस राह पे जा रहा है। ड्रग्स पे बहुत ज्यादा अहम हर सिटीजन का काम करना है।
1: पुलिस ने नशा मुक्त अभियान के तहत कार्रवाई जारी रखते हुए कनी दिवर शेख मोहल्ला हवल श्रीनगर के निसार अहमद शेख नामी ड्रग्स स्मगलर की 1,20,00,000 रुपए मालियत की जायदाद को अटैच कर दिया है। पुलिस ने अनंतनाग और हंदवाड़ा में 8 ड्रग्स स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से काफी मकदार में नशीली अशिया बरामद की हैं। पुलिस ने पुलवामा में NPDS एक्ट के तहत 2 मुलजिमों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग मुनक्कद हुई। इस दौरान बजट 2026-27 के दौरान कलीदी ऐलानात की तेज तर अमल आवरी से मुतलिक उमूर का तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला ने जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए शुरू की गई फलाही स्कीमों की मौसर और बरवक्त अमल आवरी को यकीनी बनाने की अफसरों को हिदायत दी। नायब वज़ीर-ए-आला सुरेंद्र चौधरी, तमाम काबिनी वज़रा, वज़ीर-ए-आला के मुशीर, चीफ सेक्रेटरी और मुख्तलिफ महकमों के इंतजामी सेक्रेटरी ने भी इस मीटिंग में शिरकत की। मगरबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात में तारीखी जीत दर्ज करने के बाद रियासत में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनने वाली है। बीजेपी ने 206 निशस्तों पर कामयाबी हासिल करके इंतखाबात में वाज़े अक्सरियत हासिल की है और इस तरह मगरबी बंगाल में 15 साल से जारी तृणमूल कांग्रेस की क्यादत वाली हुकूमत तब्दील हो रही है। इस दौरान तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम पार्टी ने 108 सीटें जीत ली हैं और ये पार्टी सबसे बड़ी वाहिद जमात बनकर सामने आई है। असम में बीजेपी के क्यादत वाले NDA ने तीसरी दफा जीत हासिल की है, जबकि केरल में कांग्रेस की क्यादत वाले UDF ने जीत दर्ज की है। पुडुचेरी में NDA ने जीत दर्ज करके अपनी पोजीशन बरकरार रखी है। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर अमित शाह को मगरबी बंगाल में लेजिस्लेटिव पार्टी के इंतखाब के लिए सेंट्रल ऑब्जर्वर तैनात किया है। इस तरह उड़ीसा के वज़ीर-ए-आला मोहन चरण मांझी को इस रियासत के लिए मरकज का को ऑब्जर्वर तैनात किया गया है, जबकि मरकजी वजीर JP नड्डा आसाम में लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर चुनने के लिए मरकजी ऑब्जर्वर, जबकि हरियाणा के वज़ीर-ए-आला नायब सिंह सैनी इस रियासत के लिए मरकज के को ऑब्जर्वर होंगे। इन नामों को बीजेपी पार्लियामानी बोर्ड ने मंजूरी दी है। दरियास्ता वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी को तारीखी और बेमिसाल करार देते हुए मगरबी बंगाल, आसाम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के लोगों और पार्टी कारकुनों का शुक्रिया अदा किया है। नई दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पर पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी NDA अब 20 से ज्यादा रियासतों में इख्तदार में है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर के तमाम कॉलेजों में तालीमी साल 2026-27 के लिए 4 साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और 5 साल इंटीग्रेटेड PG प्रोग्रामों के दाखिले का ऐलान किया है। इस सिलसिले में डायरेक्टर कॉलेज जम्मू कश्मीर डॉक्टर शेख एजाज बशीर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: इस साल हम सारे एडमिशन 10+2 मेरिट के बेस पे कर रहे हैं, तो ये सारा एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन है। 9 तारीख को ये हम लिंक लाइव कर रहे हैं, 27 तारीख तक ये खुली रहेगी, फिर 30 तारीख को हम पहला लिस्ट निकाल रहे हैं, उसके बाद हम 9 जून को दूसरा लिस्ट निकालेंगे, तो दूसरे लिस्ट के बाद फिर ये एक स्पॉट राउंड होगा लास्ट में, वो 18 जून से 25 जून तक चलेगा और 15 जून से कश्मीर डिवीजन में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे और 15 जुलाई से जम्मू डिवीजन में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन एडमिशन प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलेगा विंटर जोन कॉलेज के लिए भी और समर जोन कॉलेज के लिए भी।
1: भारत ने मुत्तहिदा अरब अमारात में फुजैरा पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज जोन पर किए गए ईरान के हमले को नाकाबिल कबूल करार देते हुए इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। इस हमले में 3 भारतीय शहरी जख्मी हो गए हैं। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि भारत मगरबी एशिया में कयाम अमन के लिए मुजाकरात और सिफारती कोशिशों की मुसलसल सिफारिश कर रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फुजैरा मुत्तहिदा अरब इमारात में हुए हमलों की मजम्मत की है। इन हमलों में 3 भारतीय शहरी जख्मी हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि शहरियों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना नाकाबिले कबूल है। वादी के एक मारूफ रेडियो और TV अदाकार रफीक मतू आज सुबह अचानक हरकत कलब बंद होने से फौत हुए। कई समाजी और अदबी शख्सियात

आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर थी आईदा पहाड़ी प्रोग्राम किन का मैं तुस्ता मेजबान शब्बीर अहमद शमस तुस्ती खिदमत बिच हाजिर हाँ और सारियों को अदब तय ताजीम नाल अस्सलाम वालेकुम अर्ज करदा और उम्मीद है जे तुसी सारे खैर खरीयत नाल होसो। सामीन पुराने वक्तां थी लोग जमींदारी करदे आए तो एक वेला आसा जे रवायती खेती बाड़ी वास्ते दांद आल तो दस्ती औजार होंदे आसे। अक्सर जमियां बारिश तो मौसम तय टिकी दी होंदियां आसियां जिस भी इंसानी मेहनत ज्यादा फसलां घट वेला भी ज्यादा लगता आसा। पर वेला बदलिया टेक्नोलॉजी आई और इसको अज स्मार्ट फार्मिंग आखे गेंद है। हुण ड्रोन कंप्यूटर तो सेंसर नाल मिट्टी की जाँच होंदी है। मिट्टी की तरावत तो फसलों दी बीमारियां खाद की जरूरत अंदाजा लाया गेंद है। इस वेले ट्रैक्टर तो दुई मशीन घट वेले भी ज्यादा कम कर दियाँ पैदावार बिच भी वाधा चंगे बी साइंसी खादा और नवे सग लाए के जरिए नाल पैदावार बिच काफ़ी वाधा हो गया है। नवे सेंसर दसते हैं जे कितना पानी तो खाद बकार है। आर्गेनिक फार्मिंग यानी कुदरती खेती को वाधा दिता जुल रहा है ताजे मिट्टी आली टिकी रो है रकड़ ना हो। इस वेले जरूरत है जे असी जदीद तरीकों को अपनावा और अपनिया जिमिया को जरखैज बनावा। तो सामीन गल असी और भी कर सो पहले सुन दिया मास्टर करतार चंद की आवाज़ में एक गीत।

0: समय ना पहाड़ी प्रोग्राम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी श्रीनगर है। अब पहाड़ी खबरों का बुलेटिन नशर होगा।
1: सामीन आदाब, ए आकाशवाणी दा श्रीनगर स्टेशन है। 4:20 हो गए। पहाड़ी खबरनामा केन कहमे जावेद मुगल। सब ते पहला पेशन खास खास खबरां दियां सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दा आरे कुंभे समाजी तंजीम दे अलावा रूहानी ते सियासी लीडरां थी नशा मुक्त अभियान बिच तेजी आणने दी अपील। पुलिस हुण हवल श्रीनगर बिच एक बदनामे जमाना ड्रग स्मगलर दी 1.20 करोड़ रुपए मालियत दी जायदाद को कीता अटैच। अनंतनाग और हंदवाड़ा बिच 8 ड्रग स्मगलर गिरफ्तार। वजीराला उमर अब्दुल्ला सुन लोकां वास्ते शुरू कीतियां गईयां फलाही स्कीमां दी मौसर और वेले उते अमल आवरी ते दिता जोर। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी सुन हालिया असम्बली इंतखाबात बिच बीजेपी दी कामयाबी को तारीखी और बेमिसाल दिता करार। हुण पेश है इन्हां ता दुनिया खबरां दी तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन बडगाम बिच हरे कुंभे समाजी तंजीम रूहानी ते सियासी लीडरां थी अपील कीती है जी ओ जिले बिच चलाई जुर रही नशा मुक्त जम्मू व कश्मीर अभियान बिच तेजी आणन। उन्हां सुन यकीन दियाले जे इंतजामिया पूरी मजबूती दे नाल नशे दी लानत को जड़ों कट के फेंकणा वास्ते पुरअज़म है। बडगाम थी अस्ते नुमाइंदे शौकत शाह सुन खबर दीती है जे बडगाम बिच अज नशा मुक्त मुहिम एक हिस्से दे तौर ते कढ़ी गई बड़ी पद यात्रा बिच शिरकत दे बाद लोकां थी खिताब करदे होए मनोज सिन्हा सुन आख्या जे मनशियात दा जहर अस्ते नौजवाना को अंदरों खा रहा है। उन्हां सुन आख्या जे इस बुराई बिच मुबतला नौजवाना दे नाल हमदर्दाना रवैया इख्तियार करना चाहिए। उन्हां सुन आख्या जे ड्रग ट्रैफिकिंग और टेरर फंडिंग एक दूए दे नाल जुड़े देन।
2: मैं बटगांव में सक्रिय ऐसे सभी तत्वों और नार्को टेरर से जुड़े हुए लोगों से कहना चाहता हूं कि बडगाम की धरती पर अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। और मैं आज हर बडगाम वासी के नागरिकों को भरोसा देता हूं कि एक भी ड्रग स्मगलर बचेगा नहीं, कानून के दायरे में लाया जाएगा। जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों को मिलाकर ऐसे तमाम आंकड़े हमारे पास हैं जो दर्शाते हैं कि ड्रग्स के सप्लाई चेन को पूरी तरह नष्ट करने के लिए अवाम के साथ मिलकर सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही जीरो टॉलरेंस टू ड्रग्स की नीति अपनाकर शिद्दत से काम कर रहे हैं। और आज मैं यहाँ उपस्थित हर एक नागरिक से, हर एक नौजवान से, हर एक बहन से निवेदन करना चाहता हूँ कि जागरूकता अभियान में आप भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए।
1: जम्मू व कश्मीर को नशे दी बिदत थी पाक करने वास्ते 100 दिहाड़ियां उत्ते मुश्तमल नशा मुक्त जम्मू व कश्मीर अभियान दे तहत सरगर्मियां जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दा सुनिया।
3: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड, आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: नौजवानों को इस बुराई बुरी आदत थी दूर रखने वास्ते दरकार इकदामात के बारे बिच एक शहरी खान बिलाल सुन आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर दे नाल गल करदे होया आख्या।
4: गुजारिश करता हूं आजकल के जवानों को कि हमारी गवर्नमेंट ने अच्छी सारी स्पॉन्सरिंग स्कीम्स लाई हैं। कोशिश करें, इस दलदल से निकलें, अपना फ्यूचर बनाएं, कोई बिजनेस खड़ा करें, अपनी सेहत की तरफ ध्यान दें। हमारी पुलिस बहुत अच्छा रोल निभा रही है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं और ज्यादा सख्ती बरतने की जरूरत है।
1: बीजेपी दी सीनियर लीडर डॉक्टर हिना भट्ट सुन आख्या है जे जम्मू व कश्मीर को नशा मुक्त बनाने वास्ते लेफ्टिनेंट

साथियों, एसी प्रोग्राम दी पहली सौगात। साथियों, आज 5 मई है अते आज दे दिन एक बहुत ही विशेष दिन मनाया जांदा है पूरे विश्व दे विच, जेड़ा कि विश्व दमा दिवस यानी वर्ल्ड एजमा डे दे नाल जाने जांदा है। साथियों, ए दिन पूरे विश्व विच आज दे दिन ही मनाया जांदा है खास करके, अते जिस दा आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा GINA द्वारा पुरानी साह दी बीमारी प्रति विश्वव्यापी जागरूकता वधाउण लई कीता जांदा है। साथियों, 2026 दा थीम दमा वाले हर एक लई साड़ विरोधी इनहेलर तक पहुंचे, इस दा जड़ा थीम है इस साल दा रख्या गया है। अजे भी एक जरूरी लोड़ है जो लक्षणा नू कंट्रोल करन, हिमलियां नू कटाउण अते बेलोड़ियां मौतां नू रोकण लई पहुंचना इनहेलर दी महत्वपूर्ण लोड़ नू उजागर करता है। विश्व दमा दिवस 2026 बारे मुख वेरवे विच शामिल कुछ नुक्ते इस प्रकार हन कि दमा वाले हर एक लई जिहड़ी लोड़ है इनहेलर दी उह पहुंचनी चाहीदी है, अते GINA दा उद्देश दमे दे प्रबंधन लई साह राही ले जान वाले विश्वव्यापी लोड़ नू पूरा करना है जो दुनिया भर विच 260 मिलियन तो वध लोकां नू प्रभावित करता है। अति इस दी महत्व ए दिन सिख्या देखभाल विच सुधार अते इलाज तक पहुंच योग्यता विच पाड़े नू पूरा करन ते केंद्रित करता है। साथियों, इस दा फोकस केंद्र जड़ा है कंट्रोलर अते रिलीवर दोवें इलाजां लई सुमेल 2-in-1 इनहेलर दी वरतों नू उत्साहित करना है, दमे दे हमलियां नू रोकना अते हस्पताल विच दाखले नू घटाउणा, क्योंकि अजकल जिहड़ा है आबो हवा ही कुछ ऐसी हुंदी है ते जिस दे कारण ऐसे जिहड़े पेशेंट हुंदे हन, मरीज़ हुंदे हन, उन्हां दा खास ध्यान रखना पैंदा है। मुख जागरूकता कारवाइयां जिहड़ियां

0: समीन आप पंजाबी प्रोग्राम सुन रहे थे। प्रोग्राम की प्रोड्यूसर हैं समीना शाह। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है मीडियम वेव के अलावा एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजे ही समाप्त करें आज का कुछ प्रोग्राम इस वक्त के बाद।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

आज का प्रोग्राम चूंकि जिस मीडियम के जरिए हम थारे ना जुड़ रहे हैं वो रेडियो है, तो जिस दौर में हम इस वक्त रह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ा इनकलाब आई है। इस डिजिटल दौर के बीच में अगर हम देखा रेडियो ना आज की जो टेक्नोलॉजी है वह नहीं हटा सकी। आज भी अगर भरोसेमंद नशरियात को है जिसके ऊपर भरोसा क्यों जा सके वो रेडियो है। रेडियो की इस साल की थीम है रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI एक टूल है ना आवाज़ है, यानी कि इसकी जुड़ो फायदों तब दमन पहुंचेगा जब AI फोकस करेगी इस बारे कि इंसान की सलाहियत ना उसमें बेहतरी करे, ना कि नशरियात में जरा लोग शामिल है उन्हें हटा छोड़े। फरवरी 1946 ना पहली बार दुनिया में तारीख रकम करता में यूनाइटेड नेशन रेडियो ने अपनी जड़ी है पहली नशरियात शुरू की। पूरी दुनिया का लोग इस नशरियात के नाल जुड़ गया। अगर हम अपना मुल्क की गल करा या यूनियन टेरिटरी की गल करा, क्योंकि जिस मीडियम के जरिए जी आवाज़ थारे तक इस वक्त पहुंच रही है वह रेडियो कश्मीर श्रीनगर तक पहुंच रही है। 1948 में रेडियो कश्मीर श्रीनगर व जम्मू की नशरियात शुरू की गई। रेडियो स्टेशन जम्मू ने यू शर्फ हासिल है कि इस स्टेशन उस वक्त का महाराजा जनाब हरी सिंह की आवाज़ में उनको प्रोग्राम नशर किया गया और इसी नाल रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई। ये रेडियो कश्मीर जम्मू ते श्रीनगर को ना भी महाराजा की देन है, विचावे था कि जम्मू और कश्मीर की आवाज़ रेडियो के जरिए लोगों तक पहुंचे। तो जित जित ये रेडियो की आवाज़ पहुंचेगी लोगों ना रेडियो का प्रोग्राम सुनने फायदों मिलेगा। रेडियो जम्मू तो हर तबके वास्ते प्रोग्राम नशर किया जाने लगा।

रेडियो बनाने वाला साइंसदान मार्कोनी था कि उन्होंने पहली बार प्रैक्टिकल रेडियो वेव बेस्ड वायरलेस टेलीग्राफ सिस्टम 1895 और 96 के दरमियान ईजाद किया, और इस शॉर्ट वेव टेक्नोलॉजी की ईजाद वास्ते उन्होंने 1909 में नोबल प्राइज फिजिक्स में दिता गया। तो बाद का साइंसदाना ने इसको फायदो चाहता ट्रांजिस्टर की ईजाद की। ट्रांजिस्टर मार्कोनी का रेडियो की तरक्की याफ्ता शक्ल है, जिस ना विलियम शाकले तो बाकी दो साइंसदानों ने मिलकर 24 दिसंबर 1947 ना ईजाद किया। उन्होंने इस काम वास्ते जुड़ा वो फिजिक्स को नोबल प्राइज दिता गया। इस ट्रांजिस्टर ने रेडियो की दुनिया में एक इनकलाब पैदा कियो। मारा मुल्क हिंदुस्तान में रेडियो की नशरियात 1924 से शुरू हो गई थी, पर मुनजम तो बाकायदा तौर पर 1936 से नशरियात शुरू हुई।

हमारा रेडियो असल में अवामी इदारा है, इनको मकसद आम लोग का ना सहूलियत पहुँचाना है। ऑल इंडिया का रेडियो स्टेशन थे, हर तबका वास्ते प्रोग्राम नशर किया जा रहे हैं। तमें पता है कि अदब वास्ते, खेती बाड़ी वास्ते, इंडस्ट्री वास्ते, तालिब इल्म की तरबियत वास्ते, वातीन वास्ते, फौजी भाइयों वास्ते रेडियो ते प्रोग्राम नशर किया जा रहे हैं। प्रसार भारती बनने तो बाद रेडियो अपनी खुद मुख्तियारी में काम कर रही है और इस वक्त 46 बोलियाँ यानी कि डायलैक्ट है उनमें नशरियात पूरा मुल्क में हो रही है। रेडियो कौमी यकजहती ने मजबूत करने में बड़ा शानदार काम कर रही है। रेडियो हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, इस नबात उद्देशन हमारा जमहूरी फर्ज भी है। देखियो जाए तो इस वक्त हमारी यूनियन टेरेटरी 7 स्टेशन पे हर किस्म का प्रोग्राम नशर हो रहे हैं। रेडियो कश्मीर श्रीनगर पे पहली बार 1 जुलाई 1948 ने मादरी मेहरबान शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की आवाज़ में तलावत कुरान पाक ते इस रेडियो की शुरुआत हुई। तो उस वक्त का पहला जो अनाउंसर था वे जनाब मरहूम गुलाम रसूल नाज़की था।

मौजूद सामीन हम गल कर रहा था बिलखसूस रेडियो का क्या रोल रहा हमारा इस गोजी प्रोग्राम ना नशर करना प्रोग्राम में जिन बुजुर्गों ना नशर किया जान लगो उनमें हजरत मियाँ निजामुद्दीन लारवी रहमतुल्लाह अलैह हाफिज चिराग साहब खुदा बख्शार इसराइल असर मौलाना मोहम्मद इस्माइल जब्बी मोहम्मद इसराइल महजूर सरवरी कसाना डॉक्टर साबर आफाकी राना फजल हुसैन राजौरवी मियाँ जुनेद निजामी मियाँ जावेद मोहम्मद इस्माइल निजामी कैसरद्दीन कैसर गुलाम रसूल आजाद और की तकरीर त शायरी शामिल होती है। आज तमारा कुल गोजरी शायरा कहानीकारा की लंबी लिस्ट है। इस जाहिर हुआ कि मारा गोजरी प्रोग्राम ना रेडियो कश्मीर श्रीनगर त जम्मू लोग बड़ी दिलचस्पी न सुने तदाद थे।

0: खुफिया राज बेदार समझाया हर जान।
1: शुरू शुरू में रेडियो श्रीनगर ते बेहद कानाला मोहम्मद अजीम गुलाम हुसैन उधमपुरी उब्द रशीद कुरैशी गुलाम हुसैन नूर हुसैन जितेंद्र कौर जगजीत सिंह जरवी जलाल गिलानी तृप्ता बाटिया आसा सिंह मस्ताना सुरेंद्र कौर महेंद्रजीत सिंह सूरत सिंह शमीम देव का गीत पेश करता रहा। इस तो अलावा चौधरी मोहम्मद शफी मियां बशीर अहमद लारवी रहमतुल्लाह अलैह मुफ्ती अब्दुल गनी शाशी अल हजरी चौधरी मोहम्मद असलम चौधरी तालिब हुसैन जनाब नूरुद्दीन खटाना चौधरी गुलजार अहमद खटाना चौधरी वजीर मोहम्मद हकला उनका इंटरव्यू त मशवरा प्रोग्राम में शामिल हुए था।

ऑल इंडिया कठुआ स्टेशन 29 अप्रैल 1991 ने रेडियो कश्मीर जम्मू का असिस्टेंट डायरेक्टर जनाब घनश्याम ने शुरू करवाए थे। इस स्टेशन की पहली आवाज़ जस्टिस मराठा की थी। ऑल इंडिया पुंछ को अफ्तिता जनाब मरहूम राजेश पायलट जड़ा मरकज में मिनिस्टर था उन्होंने 12 अक्टूबर 1994 ने शुरू करवाया। मौका पर डायरेक्टर जनरल उस वक्त का स्टेशन डायरेक्टर जनाब फयाज शेरियार रेडियो श्रीनगर का डायरेक्टर कबीर अहमद भी शामिल था। ऑल इंडिया करगिल 12 अगस्त 1977 में शुरू करवायो ते भद्रवाह को स्टेशन को इफ्तिताह 13 जुलाई 2002 ना जनाब प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता जड़ा के मरकज मा वजीर मुमलिकत बराए डिफेंस था। इन स्टेशन ते बाकायदा बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम नशर हो रहे हैं।

कि रेडियो कश्मीर श्रीनगर तक जम्मू भरोसे मंद नशरियात है। तो हमारी यही दुआ है कि रेडियो कश्मीर श्रीनगर तक जम्मू और बाकी जो हमारा स्टेशन है फिर आवाम की सही तर्जुमानी करता रहे। इसके नाल ही हमारा प्रोग्राम को विलम मुक्यो। प्रोग्राम का प्रोड्यूसर वसीम फारूक वानी, तो अपना मेजबान ना दे इजाजत। अच्छा जी, रब रखो।

समीन आप कोचरी प्रोग्राम सुन रहे थे। प्रोग्राम की प्रोड्यूसर हैं वसीम फारूक। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। समीन हमारे प्रोग्रामों के हवाले से एक इतला समाप्त करें। प्रोग्राम हेलो रेडियो क्लिनिक के ताज़ा शुमारे की रिकॉर्डिंग कल यानी बुधवार को दिन के 2 बजे से 3 बजे तक होगी। इस बार प्रोग्राम में जिस मौजू का इंतखाब किया गया है वो है कैंसर से बचाओ। मौजू पर तफसीली मालूमात फराहम करने के लिए हमने मधु किया है नामवर माहिर सरदान डॉक्टर शबनम बशीर को। अगर आप हमारे मेहमान मौलिस से मौजू की मुनासबत से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो रब्ता करें। हमारा फोन नंबर है 01942483064। रिकॉर्डिंग का वक्त रहेगा कल बुधवार को दिन के 2 बजे से 3 बजे तक। ये थी एक इतला हमारे प्रोग्रामों के हवाले से। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव के अलावा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समीन, अब हमारे यहां से गोजरी खबरों का बुलेटिन नशर होगा।

0: गवर्नर मनोज सिन्हा को हरेक कुंभ समाजी तंजीम ते रूहानी ते सियासी लीडर ना नशा मुक्त अभियान में शिद्दत लान की अपील। मनशियात फरोशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी, कनी कनी इलाकों ते 70 ड्रग स्मगलर गिरफ्तार। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अवाम के वास्ते शुरू की गई फलाई स्कीम की मोसर ते बरवकत अमल अवरी व दितो जोर। तय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हालिया इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी न तारीखी ते बेमिसाल दितो करा। उन पेश है खबर तफसील के नाल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बड़गाम में आरे कुंभा समाजी तंजीम ते रूहानी ते सियासी लीडर न अपील की है कि वे जिला में चलाया जा रहा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में शिद्दत लावे। उन्होंने यकीन दितो है कि इंतजामिया पूरी मजबूती के नाल मनशियात की लानत न उखाड़ फेंकन के वास्ते पुरअजम है। बड़गाम ते मारा नुमाइंदा शोकत शाह ने खबर दी है कि बड़गाम में आज नशा मुक्त मुहिम का एक हिस्सा के तौर पर काढ़ी गई बड़ी पद यात्रा में शिरकत के बाद लोगों नाल खिताब करता हुआ मनोज सिन्हा ने कहा है कि जहर मारा नौजवानों ने अंदर अंदर ते खोखलो कर रहे है। उन्होंने कहा कि इस लत में पिया नौजवानों के नाल हमदर्दाना रवैयो अख्तियार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ड्रग ट्रैफिकिंग ते टेरर फंडिंग एक दूजा के नाल जुड़िया वाई।
1: मैं बड़गांव में सक्रिय ऐसे सभी तत्वों और नार्को टेरर से जुड़े हुए लोगों से कहना चाहता हूं कि बड़गांव की धरती पर अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया है और मैं आज हर बड़गांव वासी के नागरिकों को भरोसा देता हूं कि एक भी ड्रग स्मगलर बचेगा नहीं, कानून के दायरे में लाया जाएगा। जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों को मिलाकर ऐसे तमाम आंकड़े हमारे पास हैं जो दर्शाते हैं कि ड्रग्स के सप्लाई चेन को पूरी तरह नष्ट करने के लिए आवाम के साथ मिलकर सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही जीरो टॉलरेंस टू ड्रग्स की नीति अपना कर शिद्दत से काम कर रहे हैं। और आज मैं यहाँ उपस्थित हर एक नागरिक से, हर एक नौजवान से, हर एक बहन से निवेदन करना चाहता हूँ कि जागरूकता अभियान में आप भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए।
0: जम्मू कश्मीर ने मंशात की बिदती पाक करण के वास्ते सोतियाना पर मुश्तमल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मी शदो माद नाल जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को पैगाम।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: नौजवानों ने इसे बुरी आदत से दूर रखने के वास्ते दरकार इकदाम का बारे में एक शहरी खान बिलाल ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करता में क्यों
3: गुजारिश करता हूं आजकल के जवानों को कि हमारी गवर्नमेंट ने अच्छी सारी स्पॉन्सरिंग स्कीम्स लाई हैं। कोशिश करें इस दलदल से निकलें, अपना फ्यूचर बनाएं, कोई बिजनेस खड़ा करें, अपनी सेहत की तरफ ध्यान दें। हमारी पुलिस बहुत अच्छा रोल निभा रही है लेकिन शायद कहीं ना कहीं और ज्यादा सख्ती बरतने की जरूरत है।
0: बीजेपी की सीनियर लीडर डॉक्टर हीना भट्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर न नशा मुक्त बनाने के वास्ते लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की बखीती शुरू किया गया सो त्याड़ा वर मुश्तमल नशा मुक्त अभियान कलीदी अहमियत को अमल है। श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदा के नाल गल करता हुआ उन्होंने कहा कि इस मुहिम में समाज का सारा तबका ने बढ़ चढ़ के अपना रोल अदा करना चाहिए।
4: जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हालात हो रहे हैं ये अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे बच्चों के लिए, यूथ के लिए। टीचर्स का अहम रोल है, खासकर घर से शुरू होना चाहिए अवेयरनेस और खासकर जब बच्चे बदलाव के साथ घर जाए पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चा किस राह पे जा रहा है। ड्रग्स पे बहुत ज्यादा अहम हर सिटीजन का काम करना है।
0: पुलिस ने नशा मुक्त अभियान के तहत कार्रवाई जारी रखता करना देवर शेख महल्ला हवल श्रीनगर का निसार अहमद शेख नामी ड्रग स्मगलर की 1,20,00,000 रुपया मालियत की जायदाद न अटैच कर दितो है। पुलिस ने अंतनाग ते हिंदवाड़ा में 8 ड्रग स्मगलर न गिरफ्तार करके इनका कब्जा ते काफी मकदार में नशीली एशिया बरामद किए। पुलिस ने पलवामा में एनडीपीएस एक्ट के तहत दोवा मुलजमा का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिता है। ये खबर तम आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। ये खबर तम आकाशवाणी का मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर ते डीटीएच वरुण भी सुन सकें।

0: वादी का एक मारूफ रेडियो ते टीवी अदाकार रफीक मत्तु आज सवेरे अचानक हरकत कलब बंद होने ते फोत हुआ। कई समाजी ते अदबी शख्सियात ते अंजमना ने इनका इंतकाल व दुख ते सदमा को इजहार करता हुआ सोगवार कुंभा के नाल ताजियत की है। आर्टिस्ट कलेक्टिव गोल्ड का सदर अजाज रा, यमरजल यूथ क्लब का सदर खुर्शीद मेर, आल जे एंड के रेडियो टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन का सदर शेख तारक जावेद, गुलफाम बारजी मैक ड्रामेटिक क्लब श्रीनगर एंड कल्चर फोरम सुंबल रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन का सदर साहिल डार ने इना का इंतकाल पर दुख को इजहार करता हुआ इस ना आर्टिस्ट बरादरी के वास्ते बड़ो नुकसान करा दितो है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में सिविल सेक्रेटरियट श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग मनकद हुई। इस दौरान 2026 तारीख के दौरान कलीदी एलानात की तेज अमल अवरी ते मतलक अमूर व तबादलों ख्याल कियो गयो। इस मौका पर वजीर आला ने जम्मू कश्मीर की आवाम के वास्ते शुरू की गई फलाई स्कीम की मौसर ते बरवकत अमल अवरी ने यकीनी बनान की अफसराना हदायत दी। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, तमाम काबिनी वजरा, वजीर आला का मशीर चीफ सेक्रेटरी ते कनी कनी महकमा का इंतजामी सेक्रेटरी ने भी इस मीटिंग में शिरकत की। मगरबी बंगाल का असेंबली इंतखाबात में तारीखी जीत दर्ज करने के बाद रियासत में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बन आली है। बीजेपी ने 206 सीटों पर कामयाबी हासिल कर गए इंतखाबात में वाजे अक्सरियत हासिल की है। ते इसी तरह मगरबी बंगाल में 15 साल से जारी तृणमूल कांग्रेस की क्यादत आली हुकूमत तब्दील हो रही है। इस बीच तमिलनाडु में तमिलीगा वित्री कसगाम पार्टी ने 108 सीट जीत ली है। तय यह पार्टी सबसे बड़ी वाहिद जमात बन के सामने आई है। असम में बीजेपी की क्यादत आली एनडीए ने तीजी दफा जीत हासिल की है, जबकि केरला में कांग्रेस की क्यादत आली यूडीएफ ने जीत दर्ज की है। पांडुचेरी में एनडीए ने जीत दर्ज करके अपनी पोजिशन बरकरार रखी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी न तारीखी ते बेमिसाल करा देता हुआ मगरबी बंगाल, असम, पांडुचेरी, तमिलनाडु ते केरलम का लोकां ते पार्टी कारकुना को शुक्रिया अदा कियो है। नई दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पर पार्टी कारकुना नाल खिताब करता हुआ उन्होंने कहा कि बीजेपी एनडीए हुण भी ते ज्यादा रियासत में इकदार माए। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर का तमाम कॉलेजों में तालीमी साल 2026 तारीख के वास्ते 4 साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ते 5 साल इंटरग्रेड पीजी प्रोग्राम का दाखला को ऐलान किया है। इस सिलसिला में डायरेक्टर कॉलेजेस जम्मू कश्मीर का प्रोफेसर डॉक्टर शेख आजाद बशीर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करता हुआ क्यों
1: इस साल हम सारे एडमिशन 10+2 मेरिट के बेस पे कर रहे हैं, तो ये सारा एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन है। 9 तारीख को ये हम लिंक लाइव कर रहे हैं, 27 तारीख तक ये खुली रहेगी, फिर 30 तारीख को हम पहला लिस्ट निकाल रहे हैं, उसके बाद हम 9 जून को दूसरा लिस्ट निकालेंगे, तो दूसरे लिस्ट के बाद फिर ये एक स्पॉट राउंड होगा लास्ट में, वो 18 जून से 25 जून तक चलेगा और 15 जून से कश्मीर डिवीजन में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे और 15 जुलाई से जम्मू डिवीजन में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन एडमिशन प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलेगा विंटर जोन कॉलेज के लिए भी और समर जोन कॉलेज के लिए भी।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फजीरा मतदा अरब अमारात में हुआ हमला की मजम्मत की है। इस हमला में 3 भारतीय शहरी जख्मी हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि शहरियों ते बुनियादी ढांचा ना निशानों बनाना नाकाबले कबूल है। उन्होंने मतदा अरब अमारात के नाल भारत की यकजहती को इजहार करते हुए कहा कि भारत तमाम मसायल न गलबात सफारतकारी के जरिए पुरमन हल कढ़ने का अमल को तामन करेगा। भारत ने मतदा अरब अमारात में फजीरा पेट्रोलियम इंडस्ट्री जोन पर किया गया ईरान का हमला नाकाबले कबूल करा देता हुआ इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। इस हमला में 3 भारतीय शहरी जख्मी हो गए। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि भारत मगरबी एशिया में क्याम अमन के वास्ते मुजाकरात ते सफारती कोशिशों की लगातार सफारत कर रही है। इसके नाल ही गोजरी खबरनामो मुख्य अगलो खबरनामो आकाशवाणी श्रीनगर ते शाम 6:05 पर कश्मीरी में नशर वैगो। देव सामेन इजाजत, खुदा हाफिज।
2: आकाशवाणी श्रीनगर, अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन नशर होगा।
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम।

0: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इसी दिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। केरलम में कांग्रेस पार्टी में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। विधायक दल की आधिकारिक बैठक के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। पार्टी बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगी। पुदुचेरी में मनादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वीवयम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। आज पार्टी विधायकों के परामर्श बैठक में उन्हें चुना गया। केंद्रीय मंत्री और पार्टी चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया बैठक में उपस्थित थे। उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में दूरसंचार अनुसंधान मानकीकरण और नवाचार समिति के हितधारक सलाहकार समिति के बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क्स सीपीआर के प्रमुख उपयोग और उनके अनुप्रयोगों पर चर्चा हुई। ये नेटवर्क नागरिकों और उद्यमों दोनों के लिए अधिक विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान कर नवाचार को बढ़ावा और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत कर सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में तमिलनाडु, पुदुचेरी और गुजरात में राजमार्ग रखरखाव के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों की मजबूती, सुरक्षा मानकों और यात्रा को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। श्री गडकरी ने कहा कि भारतीय अवसंरचना विकास में न केवल विस्तार पर बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता पर भी बल दिया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए थे। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और जमैका के बीच विकास सहयोग साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। जमैका की विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य मंत्रियों के साथ बैठक के बाद श्री जयशंकर ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही। दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इंकार कर दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि हालिया चुनाव परिणामों के मद्देनजर वो इस्तीफा नहीं देंगी। उनका मानना है कि वोटों की हेराफेरी की गई और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली हुई है। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। चेन्नई अंक तालिका में 6ठे और दिल्ली 7वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ईशा आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव अलावा एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर समय

من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن

0: कारोबार हर दिल में जगह बनाए, तो देर किस बात की। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: क्या बशीर सर
2: हजरत
1: तथ जाये बसान या जाये वस वन तरफा तौर पर सहलन
2: बिल्कुल वन सौ पश ग नजर
1: आ अगर सहलन यन योर तो यह कारोबार फहलान यह पोस फहलान यह पोस वाता अक जाये पे बेस जाये तो इतना गरीबी दूर
2: गान मशहूर तीन वाती तो वन अलहमदिल्ला मेहमान नवजी मन मान सी वाती तो वन दूर दराज इलाकों पर योर मेहमान टूरस्ट तमो ये वापस गैकुन लायक तयान दिवान
1: बेशक तो اہم تعلیم زان وی تھو ات واس پان وی تھو بھائی بندت پان و روزیو مائ تو محبت سان پان ویو تنہ یہ سلام مشورہ کن گھر باسو
2: بالکل صحیح

Gami Boys Pan Program Bozan Programik Producer Che Vaseem Farooq Wani Ye Akashwani Ka Srinagar Station Hai Samin Hamare Program Ke Hawale Se Ek Itla Se Baat Karein Program Hello Radio Clinic Ke Taza Shumare Ki Recording Kal Yani Budhwar 6 Mai Ko Din Ki 2 Baje Se 3 Baje Tak Ho Rahi Hai Is Baar Program Mein Jis Mauzu Ka Intikhab Kiya Gaya Hai Wo Hai कैंसर से बचाओ। मौजू पर तफसीली मालूमात फराहम करने के लिए हमने मदु किया है नामवर माहिर सरतान डॉक्टर शबनम बशीर को। अगर आप हमारे मेहमान मौले से मौजू की मुनासबत से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो रब्ता करें। हमारा फोन नंबर है 01942483064। फोन नंबर एक बार फिर सुनिए 01942483064। रिकॉर्डिंग का वक्त रहेगा कल बुधवार को दिन के 2 बजे से 3 बजे तक। ये थी एक इतला हमारे प्रोग्रामों के हवाले से।

0: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव के अलावा एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर समय हमारे अगले ऐलान का इंतजार फरमाइए।
1: आकाशवाणी श्रीनगर अपनी घड़ियां मिलाइए शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे हैं।
2: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
3: शेरबीन के सामईन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूआत हैं

0: ध्यान यही दरिया पूछ रहा है, इसी का बेस सोर्स जो है वो छट्टा पानी ही है। तो छट्टा पानी में नाले में पानी ज्यादा था, लेकिन उसने गाड़ी बीच पर डाल दी थी शायद उससे, तो वो गाड़ी जो थी बीच में वो बह गई, उसमें गाड़ी पूरी की पूरी बह गई। उसमें 5 सवारियां थी, एक डिजायर टैक्सी थी, तो डिजायर टैक्सी इसका नंबर था JK 12 98 75। गाड़ी का जो है मलबा जो है वो बरामद कर दिया गया है, नीचे ज्यादातर मलबा जो है उसका मिल गया है वहां पर। लेकिन दो आदमी जो दो लाशें जो है वो भी उनके जिसके खासी जो थे वो भी हासिल हो चुके हैं वहां पे, और 3 जो है उनकी अभी तलाश जारी है। थोड़ा कहते हैं कि ये जो 3 गली है ना, उस वक्त पूरी दृश्य में था, ये इतना जबरदस्त किस्म का तूफान था कि एक तरफ लाल ग्राम से 3 गली तक जो वहां से कुछ 150 गाड़ी वहां फंसी हुई थी, और दूसरी 3 गली से लेकर सत्ता पानी तक जो है जो वहां पर भी कुछ 150 गाड़ी जो 200 गाड़ी जो थी वहां पर भी फंसी हुई थी। तो इनको क्या हुआ कि वहां पर SDM सरकोट जो है वो गए हैं वहां पर चट्टा पानी में गए हैं, और उन्होंने वहां पर मदद की, उस वक्त जो अब उनके साथ पुलिस भी थी और अमला भी था, उधर तक सिपाही से भी आए होंगे, लेकिन यहां से जो है SDM या फारूक मोहम्मद नाम था उनका, वो गए हैं और उन्होंने जाकर वहां पर उनको रेस्क्यू गाड़ियों को निकलवाया वहां पर। 150 गाड़ी जो थी वो वहां पर उसमें फंसी हुई थी, तो गाड़ियां निकाल ली उन्होंने, लेकिन ये जो गाड़ी जो थी ये बीच पर उसी से पहले जाते ही जो था उसी है, ये बता रहे हैं जो लेकर जो आ रहा है।
1: अगर 2 लाशें अभी तक बरामद हो पाई हैं, क्या ये माना जाए कि जो बाकी 3 लोग थे उनकी लाशें पानी के साथ बह गई?
0: अब बह गई क्योंकि नाला बहुत तूफानी है और ऊपर से सीधा नाला जाता है, वो पता नहीं कहाँ लेकर चला गया, बह गया ना नीचे, बिल्कुल ऊपर से जो है 60 डिग्री पर है वो नाला, तो वहां से जो छत्ता पानी जो आता है वो नीचे गया है पशियाना की तरफ, तो आप नीचे हो सकता है पशियाना के करीब जाकर मिले, तो उसमें 1-2 दिन लगेंगे लाशों को ढूंढने में, जो काकी को ढूंढने में। तो इस तरह ये जो है ये नाखुशगवार वाक्य पेश आया है, और यहाँ पे जबरदस्त किस्म का लोग घरों में इसके इस बारे में जो है अफसोस है और दुख जो पाया जाता है, और एक दूसरे से लोग पूछ रहे हैं। अभी पूरी इतलात भी सामने नहीं आ रही, ठंड कर आ रही है ना, क्योंकि वहां पर जो आज का दिन भी जो था ना, आज का दिन अगर के मौसम साफ था, लेकिन वहां पर लोगों का जाना भी बड़ा मुश्किल था ना वहां पर जाकर, तो ये जो है ये लवाइकीन जो है उनके घर भी नहीं है, तो ये सारा माहौल था।
1: आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेनी साहब, आपने हमें ऑनलाइन ताजा तरीन जानकारी दी इस हादसे के बारे में, आप अपडेट लेते रहिएगा, कल हम इस बारे में आपसे एक और रिपोर्ट जरूर लेंगे, शुक्रिया आपका। तो समीन ये थे पुंछ से हमारे नुमाइंदे KD मैनी, जो गुज़श्ता रोज पेश आए हादसे के हवाले से तफसीला दे रहे थे। अब एक और मौसम, जमीन इतलात के मुताबिक हजरत बाबा खिजर ट्रेन्स में एक लकड़ी का तना गिराने से एक बच्चे की मौत हुई है। बताया जाता है कि महाराजान दख्तर बाबू खान नामी कमसिन खेलकूद के दौरान लकड़ी के तने की जद में आकर मौके पर ही हादसा हुई। महरुखा का ताल्लुक राजौरी से बताया जाता है, ये खानदान इस वक्त बाबा खिजर ट्रंज इलाके में मुकीम था। अब एक और मौजूद, समी जम्मू कश्मीर में नशा मुखालिफ 100 रोजा मुहिम बड़े पैमाने पर जारी है, और इस मुहिम के तहत जहां एक तरफ नशे के कारोबार में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है, वहीं इस नेटवर्क की जड़ें कमजोर करने पर भी तमाम तर तवज्जो मरकूज की जा रही है। मुहिम के दौरान जहां आवाम में बेदारी पैदा करने और मनशात के मुजर असरात के बारे में जानकारी पर जोर दिया जा रहा है, और साथ ही मनशात के आदि नौजवानों पर भी तवज्जो खासतौर पर मरकूज की जा रही है, ताकि उन्हें नशा छोड़ने की कोशिश में तमाम तर मदद और रहनुमाई की जा सके। 100 रोजा मुहिम के तहत जिला सब जिला और तहसील सतह पर तकरीबात का एहतमाम जारी है, जबकि इस मुहिम की निगरानी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज खुद कर रहे हैं। LG मनोज सिन्हा ने गुज़श्ता 28 रोज में जिला सतह के कई तकरीबात में आज खुद हिस्सा लिया, और खासतौर से तलबा को इस बारे में आज खुद जानकारी दी और उनका हौसला बढ़ाया। इसी सिलसिले के तहत आज बड़गाम में एक पद यात्रा निकाली गई, जिसमें 45,000 से जायद अफराद और तलबा ने शमूलियत की, जबकि LG मनोज सिन्हा ने इस रैली की आज खुद रहनुमाई की। मुकम्मल रिपोर्ट यूनस परे से।
2: जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने पहले ये इतला फरहम कर दिया है कि किसी भी मंशा फरोश या स्मगलर उसे सख्ती से निपटा जाएगा और इनकी दस्तावेजियत मंसूख कर दी जाएगी। जम्मू कश्मीर का कोई भी बच्चा मंशात का शिकार न हो और मंशात के इस्तेमाल से निपटने के लिए गांवों की सतह पर एक वालिदैन ब्रिगेड का ऐलान करते हुए जोर दिया कि पूरी इंतजामिया खत्ते से मंशात की लानत को खत्म करने के लिए पुरअजम है। जम्मू कश्मीर में मंशात के खिलाफ जंग जारी है और 100 दिन के लिए नशा मुक्ति भारत अभियान शुरू किया है, और इस सिलसिले में नाफिज करने वाली एजेंसियां और اور انتظامیہ منشیات فروشوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرتی ہے. ان باتوں کا اظہار آج لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے بڈگام ضلع کے نیو بس اسٹینڈ میں منشیات کے استعمال اور نشہ آور چیزوں کے خلاف ایک بڑی مہم کے آغاز کے موقع پر خطاب کر رہے تھے. انہوں نے صبح 10:14 پر بڑگام کا دورہ کیا اور 1 کلومیٹر پد یاترا کی قیادت کی اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد سے اپیل کی کہ وہ منشیات کے خلاف جدوجہد میں

0: भरपूर हिस्सा लें और ये रैली ओल्ड बस स्टैंड में इख्तिताम पजीर हुई। 11:06 पर न्यू बस स्टैंड के मकाम पर 45,000 से जायद लोगों से खिताब करते हुए LG मनोज सिन्हा ने कहा कि मंशियात के स्मगलरों और इनके नेटवर्क हमारे नौजवान को निशाना बना रहे हैं। वही 11 अप्रैल से शुरू की गई मुहिम बड़गाम मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ खड़ा है और मुझे उम्मीद है कि जिला बड़गाम के तमाम बाशिंदे मंशियात की लानत से निमटने में इंतजामिया की मदद करेगी और मंशियात से पाक कश्मीर का ख्वाब पूरा करेंगे। सऊदी की कोशिश के बारे में कहा कि 72 दिन बाकी है और हर दिन आम है। वही जो खानदान इस मकसद से लड़ रहे हैं और मंशियात के इस्तेमाल की वजह से बदतरीन हालात से गुजर चुके वो इस मंशियात के असरात को जानते हैं। बकौल LG मंशियात फरोशों के खिलाफ ब्रेकडाउन, बेदारी मुहिम और अवामी शमूलियत के लिए 90 दिन की हिकमत अमली अपनाई है। उन्होंने कहा कि हमारी एजेंसियां, हमारी इंतजामिया, पुलिस और लोग मुतहद हैं ताकि हर स्मगलिंग नेटवर्क और मंशियात फरोशों को खत्म किया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि इंतजामिया अकेले इसका मुकाबला नहीं कर सकते बल्कि आवाम, मजहबी रहनुमाओं, समाजी कारकुनों और माशरे के हर फर्द को इस मकसद के लिए बाहर निकलना होगा। वही पुलिस और इंतजामिया दोनों दुकानदारों की इमलाक पर कड़ी नजर रखे हुए हैं और मंशियात फरोशों ने जो जायदादें कायम की इसे तबाह कर दिया जाएगा और मंशियात फरोशों को खबरदार किया कि आप उनका वक्त नहीं रहा बल्कि उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा।
1: सबसे पहले इस सच को स्वीकार करना होगा कि अनेक बच्चे बच्चियां नशीले पदार्थों की गिरफ्त में हैं। इसे स्वीकार करने में न कोई संकोच होना चाहिए और मुझे कोई हर्ज भी नहीं दिखता है क्योंकि वे तो हमारे ही बच्चे हैं। वे अपराधी नहीं है बल्कि विक्टिम्स हैं और उन्हें गले लगाने की जरूरत है। साथ ही आवाम से इस स्टिग्मा को भी समाप्त करने का मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर कोई परिवार पीड़ित है तो खामोश रहकर अपना दर्द कब तक झेलेगा। इस रिवाज को अब हमें बदलना होगा क्योंकि आज हालात ऐसे हो गए हैं कि खामोशी से इसका मुकाबला नहीं हो सकता। आवाम को अपनी आवाज निश्चित रूप से बुलंद करनी होगी। आवाम को इस बात को याद रखना होगा कि ड्रग एडिक्शन केवल ये हेल्थ की समस्या नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर का भी सवाल नहीं है बल्कि आंतरिक सुरक्षा का एक बहुत बड़ा संकट भी है। नशा न केवल नौजवानों की आकांक्षाओं को खोखला करता है बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी चोट पहुंचाता है।
0: इस मौके पर कानून साज असेंबली के स्पीकर व MLA सलाहदार शरीफ अब्दुर्रहीम राठौर, MLA बीरवा डॉक्टर शफिया मदवानी, MLA चाडवा अली मोहम्मद डार, MLA खान साहब सैफुद्दीन भट, MLA बड़गाम आगा सईद मुंतजर मेहदी, साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासिन, साबिक DDC चेयरपर्सन नजीर अहमद खान, साबिक DDC काउंसिल के मेम्बरान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग, IGP कश्मीर VK वर्दी के अलावा BSF, CRPF और सिक्योरिटी एजेंसियों के सीनियर आला अफसरान के अलावा जिला तरकियाती कमिश्नर बड़गाम अथर आमिर खान और SSP KK हरी प्रसाद भी मौजूद थे। इसी दौरान इंतजामिया की तरफ से रैली को अहसन तरीके से मुनकिद कराने के लिए वसी इंतजाम किए गए थे और लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट, पानी और तबी व दीगर सहूलियात फराहम रखी गई, जबकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पहले से ही मुतबादल ट्रैफिक रूट का प्लान मुरतब किया गया था ताकि मुसाफिर को मुश्किल का सामना न करना पड़े।
2: आपने बड़गाम से यूनुस परी की रिपोर्ट सुनी। इस दौरान पटन में भी आज नशा मुक्त अभियान के तहत एक बेदारी रैली निकाली गई जिसका एहतमाम ड्रग कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन बारामूला ने क्रिमिनल्स एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले किया था। रैली में पटन पुलिस, अंजुमनी शरिया पटन के मुफ्ती तारिक रहमानी, सोल सोसाइटी पटन के चेयरमैन सलीम फारूक वानी समेत मुख्तलिफ शोबाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररी ने माशरे को मनशियात से पाक बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि नशे की बढ़ती हुई वबा नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल के लिए एक संगीन खतरा बन चुकी है। इधर त्राल में नशा मुक्त अभियान के तहत आज कमिश्नर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन की जानिब से एक आगाही प्रोग्राम मुनक्कद किया गया जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल साजिद यहिया नकाश बतौर मेहमान खास शामिल रहे। तकरीब के दौरान मुकर्ररीन ने माशरे में तेजी से फैलती मनुष्यात की बिदत पर गहरी तशवीश का इजहार किया और इसके तदारक के लिए इज्तिमाई कोशिश पर जोर दिया। शर्बीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा।
3: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुँचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
4: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता

0: जोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
1: University of Kashmir invites online applications. 5-year integrated programs ke liye admissions open hain. Applied Geology, Arabic, BA LLB, Botany, Data Science and Artificial Intelligence, Electronics, Energy Studies, Hindi, Home Science, Kashmiri, Linguistics and English Language Teaching, Mass Communication and Journalism, Persian, Physics, Sanskrit aur Tourism and Travel Management jaise courses mein. Saath hi 4-year UG programs bhi available hain. Design your own degree, Music aur Fine Arts mein. लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है 7th मई तक। अप्लाई नाउ। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें www.kashmiruniversity.net। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, शेपिंग लीडर्स ऑफ टुमारो।
2: शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। समीन वादी के मारूफ रेडियो, स्टेज और टेलीविजन अदाकार मोहम्मद रफीक मत्तू के इंतकाल पर फन व अदब से ताल्लुक रखने वाली मुख्तलिफ शख्सियात और अंजुमनों ने रंज व गम का इजहार करते हुए सोगवार खानदान के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। इधर आज ऑल जे एन के रेडियो टेलीविजन आर्टिस्ट्स फ्री लांस प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स एसोसिएशन के सदर शेख तारिक जावेद, गुलफाम बारजी, मैक ड्रामेटिक क्लब श्रीनगर और इंदर कल्चरल फोरम सुम्बल ने भी मोहम्मद रफीक मत्तू के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए मरहूम की खिदमत को याद किया है। इस दौरान सागर कल्चरल फोरम चक्करपट्टन के सदर बशीर जोगियारी और सरपरस्त सागर नजीर, नो अदबी कारवान पुलवामा के सरपरस्त अब्दुलरहमान फिदा, रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन के सदर साहिल डार ने भी मरहूम की वफात पर रंज का इजहार किया है। दरअसल जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी की सेक्रेटरी हरविंदर कौर ने भी मोहम्मद रफीक मत्तू के इंतकाल पर रंज का इजहार किया है और अपने ताजियती पैगाम में उन्होंने कहा कि मरहूम के इंतकाल से सकाफती बरादरी एक मुखलिस बासलाहियत और बेहतरीन फनकार से महरूम हो गई है। अब एक और मौजूद समीन वादी के तूल अरज से आयरोज कुत्तों की हड़बों के हवाले से शिकायत सामने आ रही है। वादी कश्मीर में जहां आवारा कुत्तों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है, वहीं उनके हमलों में आयरोज किसी न किसी शख्स के जख्मी होने की खबरें भी मौसूल होती रहती हैं। इधर इनमें से बाज औकात कई कुत्ते बावले हो जाते हैं और लोगों पर हमला आवर हो जाते हैं और बाज औकात बच्चों पर हमला आवर होने के नतीजे में जान का खतरा भी लाख हो जाता है। अगर कुत्तों को कानूनी तहफ्फुज हासिल है, मगर आम लोगों को इनके हमलों से किस तरह बचाया जाए, इस बारे में न कोई पॉलिसी है और न ही लाह अमल, और ये आवाम के लिए बाइस तशवीश है। इधर आज आवारा कुत्तों के हमले में गांधरबल जिले में 47 के करीब भेड़ बकरियां हलाक कर दी गई हैं, जो कि काफी तश्वीशनाक बात है। तफसीलात रहीम रिजवान से।
3: सब डिवीजन कंगन के गुंड इलाके में गुज़श्ता रात आवारा कुत्तों ने भेड़ बकरियों के रेवड़ पर हमला करके 43 भेड़ बकरियों को मौके पर ही हलाक कर दिया, जबकि दीगर 6 मवेशियों को शदीद तौर जख्मी कर दिया गया। शहरबीन को मिली इतलात के मुताबिक जहां तहसील गुंड के दर्जनों इलाकों में आवारा कुत्तों ने लोगों का जीना दोबर कर दिया है और आवारा कुत्तों की हड भूख से लोग घरों में ही महसूर होकर रह जाते हैं, वहीं गुज़श्ता रात इन आवारा कुत्तों ने मौका पाकर गुंड इलाके में मौजूद एक बकरवाल कुंबे के माल मवेशियों पर हमला कर दिया, जिस दौरान इन आवारा कुत्तों ने 43 भेड़ बकरियों को चीर फाड़ कर हलाक कर दिया, जिनमें 17 भेड़ और 26 बकरियां शामिल थी, जबकि इस वाके में मजीद 6 भेड़ बकरियों को शदीद तौर जख्मी कर दिया गया। इस तरह इन आवारा कुत्तों ने एक गरीब खाना बदोश के रेवड़ पर हमला करके उसका सफाया कर दिया और इस बकरवाल कुंबे को भारी नुकसान से दो चार होना पड़ा। वाजह रहे ये बकरवाल कुंबे इस सीजन में अपना माल मवेशी लेकर बहकू में जाते हैं और राजौरी, पूंछ और दीगर अजला से आने वाले ये कुंबे रास्ते में कई मकामात पर आरजी तौर अपना डेरा जमाते हैं। इसी तरह नजीर अहमद बरकत, वलद महमूद बरकत, साकिन क्राट राजौरी के नामी शख्स ने यहाँ चंद रोज के लिए अपना डेरा जमाया, जिस दौरान उन्हें अपने माल मवेशियों से हाथ धोना पड़ा। ये खबर सुनते ही अगर गुंड पुलिस की एक टीम और मकामी लोग जाई वारदात पर फौरन पहुंचे, ताहम ये आवारा कुत्ते तब तक वहां से ना दो गहरा हो चुके थे। मकामी लोगों का मानना है कि ऐसे कई वाकात यहां आए रोज पेश आते हैं, जिसमें माल मवेशी पालने वाले लोगों को नुकसान से दो चार होना पड़ता है, क्योंकि आवारा कुत्तों की डर से अब लोगों, खासकर बुजुर्ग और स्कूली बच्चों का घरों से निकलना महाल बन चुका है और वो आवारा कुत्तों की डर से घरों में ही सहम जाते हैं। मकामी लोगों का इंतजामिया से मुतालबा है कि तहसील गुंड के दर्जनों इलाकों के लोगों को इन आवारा कुत्तों से नजात दिलाने के लिए फौरी इकदाम की जानी

0: चाहिए।
1: ये थे गांधरबल से रहीम रिजवान। समीन, एसडीपीओ ऑफिस त्राल में आज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तर्क के पाने वाले मुतअद्दिद हेड कांस्टेबलों के एजाज में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर एसएसपी ओंतीपोरा सजाद अहमद शाह ने तरक की पाने वाले अहलकारों को नए ओहदे के रैंक के निशानात लगाए और उन्हें मुबारकबाद दी। तकरीब में एसडीपीओ त्राल राजेश कुमार समेत दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। समीन, जिला किश्तवाड़ के मुख्तलिफ इलाकों में कायम छोटे बड़े तिबी मराकज पर तिबी और नीम तिबी अमले की कलील तादाद और साथ ही लाजमी साजो सामान की किल्लत इन तिबी मराकज के बुनियादी मकसद को ही बेमानी कर देती है। बताया जाता है कि किश्तवाड़ जिले के कई प्राइमरी हेल्थ सेंटरों और कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों में आने वाले मरीजों को अक्सर मायूसी हाथ लगती है, क्योंकि वो इलाज मुआलजे की जो उम्मीद लेकर आते हैं वो अस्पताल के हालात के आगे दम तोड़ जाती है। एक रिपोर्ट के साथ किश्तवाड़ से मुश्ताक देव।
2: जिला किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर का एक वाहिद जिला है जिसके दूर दराज इलाकों में वहाँ रिहायश पजीर गरीब कश्मपुरसी के शिकार लोगों के इलाज और मुआवजे के लिए ऐन जरूरत के मुताबिक सहूलियात मुहैया नहीं है। अगरचि कई मकाम पर तिबी मराज कायम किए गए हैं जिनमें या तो मुआलिज ही तैनात किए गए या फिर तैनात मुआलिज उन पसमादा व अफलास ज़दा इलाकों में जाने से गुरेज करते हैं। कई इलाकों में टिबी अमला न होने के बराबर है और कहीं कहीं उन मराकज वगैरह में जरूरी अद्वियात आलात जराही और वो आलात नहीं है जिनसे फिशारे खून ज़ियाबतीस वगैरह का मुआयना किया जा सकता हो। ऐसे इलाकों के इलालत में मुबतला लोगों को चाहे अनचाहे में किश्तवाड़ या जम्मू या फिर कश्मीर का रुख करना पड़ता है, जो माली एतबार से हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसे में अगर कतई तौर पर पहाड़ी इलाका बोंजवा की बात की जाए तो वहाँ के गुंजान आबादी वाले मरकजी गांव पतराजी में एक न्यू टाइप पब्लिक हेल्थ सेंटर कायम किया गया है। लोगों के मुताबिक वहाँ तैनात डॉक्टर मर्जी से ही हाजिर हुआ करता है। ये भी सच ही है कि लगभग 10,000 नफूस जो इस मरकज के कुर्ब जवार में रिहाइश रखते हैं के लिए कायम किए गए मरकज की इमारत सिर्फ एक कमरा पर मुश्तमिल है और कुछ महदूद सी कुर्सियां उसमें रखी गई है। इसमें फिशारे खून चेक करने के लिए मुबैना तौर पर बीपी ऑपरेटर तक नहीं है। दीगर आलात के मुयसर होने का अंदाजा इसी से किया जा सकता है। जहां तक छात्रों में कायम शिफा खाने का ताल्लुक है, अगर जिसका दर्जा सब जिला अस्पताल का होना चाहिए था लेकिन अरसा से इसे अभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जुमरा में ही रखा गया है। इस अहम शिफा खाने में मालूमात के मुताबिक जरूरत के मुताबिक मशीनरी हत्या की अल्ट्रासाउंड मशीन भी मुहैया रखी गई है, लेकिन इसका माहिर अमला तैनात ही नहीं किया गया है, जिस बिना पर इस मशीन का होना या न होना एक मसावी सी बात समझी जा रही है। इस शफाखाना पर मुकामी व गैर मुकामी बीमारों का काफी बोझ रहता है, जिससे निपटने के लिए तिबी अमला मजीद अद्वियात एम्बुलेंसेज और आलात जराही की बहुत जरूरत है। अगर ये चीजें मुहैया की जाए तो फिर लोगों को किश्तवाड़ वगैरह इलाज के लिए जाना नहीं पड़ेगा। पहलगाम सिद्धी में कायम टीबी सेंटर तो अब बंद ही पड़ा हुआ है और सिद्धी में शिफाखाने की जो खूबसूरत दो मंजिला इमारत तामीर की गई है वो बस इमारत ही है और कुछ नहीं। इनमें न डॉक्टर तैनात है और न अद्वियात मुयसर है। इंतहाई दूर उफ्तादा व पसमानदा मगर खूबसूरत हयाती मकाम वनवन में आपती नामी गाँव के लिए कायम किए गई पब्लिक हेल्थ सेंटर में कुछ अकसाम की मशीनरी मुयसर नहीं है जो आवाम के लिए मुफीद साबित हो सकती थी। ये भी मालूम हुआ है कि ये मशीनें जरी कलील के सरफा से हासिल हो सकती है। आवाम की शिकायत है कि इंशन में कायम शिफाखाना के लिए 12 साल कबल एक MBBS डॉक्टर को तैनात किया गया है जो अभी तक वर्द इंशन नहीं हो पाया है। इन मुश्किलात और शिकायत का मौजूदा वजीर बराए सेहत को अजाला करना चाहिए ताकि तकाजा इंसाफ पूरा हो सके। मेज ये सेंटर गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर कायम है, इसे मरकजी जगह पर मुंतकिल किया जाना चाहिए, ये अवाम का मुतालबा है। जिला सदर मुकाम किश्तवाड़ पर कायम जिलाई शिफाखाने में भी डॉक्टरी व दीगर तिबी अमले व अद्वियात की काफी जरूरत है। यहाँ 100 बिस्तरों वाले जदीद इमारत का काम अब फिर से शुरू किया गया है और जो MRI की मशीन यहाँ नस्ब की गई है वो भी काम करना शुरू करेगी। महज इस शफाखाने के वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के साथ एक MOU पर दस्तखत हुए हैं जिनके तहत जरूरत के मुताबिक वहाँ से मुख्तलिफ अमराज के माहिरीन किश्तवाड़ में आकर बीमारों की तशखीस और इलाज किया करेंगे, जो महीने में 2 मरतबा हुआ करेगा। मजीद उम्मीद की जा रही है कि जिन क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेज के मुहैया किए जाने का मेंबर पार्लियामेंट सजाद अहमद किचलू ने ऐलान किया है वो जल्द यहाँ पहुँच जाएंगी और उनका बवक्त जरूरत इस्तेमाल किया जा सकेगा और लोगों

0: को यह सहूलियत भी मिल सकेगी।
1: सभी जम्मू कश्मीर बैंक ने आज अपने सालाना नताइज मंजर आम पर लाए। जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और MD अमिताभ चटर्जी के बकौल बैंक ने 2025-26 के माली साल में 2363 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है, जो अब तक का रिकॉर्ड मुनाफा है। बैंक के MD ने मजीद बताया कि बैंक अपने मुलाजमीन, शराकत दारों और आवाम की मदद से नए संग मील कायम करता रहेगा। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौजूदात मुकम्मल हुआ। चाहते हैं अपने मेजबान और शेरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर शेरबीन की निगरान समीना शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
2: शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताबुन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपने तामीरात दिल से बनाइए।
3: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर। फोन नंबर 9419000025।
4: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स।
5: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
6: आज आई मैंने मेडिकल रिपोर्ट तो मैंने शरीर विटामिन ए तो विटामिन बी कमी द्रामस।
7: तो क्या शक में फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेलों के इस्तेमाल करान?
6: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छो?
7: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में त्रावने यहाँ। विटामिन ए छो सानी इम्यूनिटी बढ़ावान तो विटामिन डी छो अड़जी मजबूत करान। दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में।
6: मगर यह है सठा द्रोग?
7: हाँ ना ना, सुई कमत मज मुशुक ते सुई छो बेहतर पोषण दिवान।
8: पनुन तो पन्ने आयाली जिंदगी बनाई सेहत मंद प्लस एफक निशान वोल फोर्टिफाइड फूड पानो बाजरस में दस्तियाब फोर्टिफाइड वसाइलन की जानकारी खतर करो www.ffrc.fssai.gov.in पर।
9: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
10: एक ही मोहल्ले के दो दोस्त जो साथ पले, एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़े, पर दोनों दोस्तों का अंतर पता है क्या है? एक ने अच्छा उज्जवल जीवन चुना, अच्छी पढ़ाई, अच्छी संगत, खेलकूद और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाया,
11: जबकि वहीं दूसरा दोस्त गलत संगत में पढ़कर नशे की लत लगा बैठा। फर्क सिर्फ इतना रहा कि वो गलत संगत में फंसते चला गया, पर उसे बाहर निकालने वाला कोई दोस्त ना मिला।
10: ये दोस्त आप बन सकते हो। अगर अपने आस पास आपको भी कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो नशे की तरफ जा रहा है, तो आप उसकी मदद कर सकते हो, उसे डी एडिक्शन रिहेबिलिटेशन एंड काउंसलिंग सेंटर तक ले जाके और उसके जीवन में नई रोशनी, नई आशा की किरण बन सकते हो।
11: आओ हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम अपने आसपास अपनी कम्युनिटी को ड्रग फ्री बनाएं और इस नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में अपना योगदान दें।
10: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, खुशहाल जम्मू कश्मीर। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।

0: तो रोहिणी के उसे ऐसी लीडर ने अपील कर मजी तिमन जलसंधर चलाने इवान नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान मजीजी तमो दिखें इंतजामिया पूरे मजबूती सान मनशियात के लान तक मूल प्रार्थन अजम कर्मुत बड़गाम पे सन नुमाइंदे शौकत शाहन खबर दिशमें आज बड़गामे नशा मुक्त मुहिम हिंद अक हिस्सरंग मुनद कर आम बज पद यात्रा में शिरकत कर लूकन खताब करान वन मनोज सिन्हा जनशियात के जहर सत सान नौजवान अंदरी सोसुर जामुत तमो वो अत बिद मुबतला नौजवान सत गि हमदर्दी हूं रवि अख्तियार कर तमो मनशियात कारोबार तो टेरर फंडिंग अखिस सुड़ित जम्मू कश्मीर मनशियात के बित निश पा कर गर्ज अख दोन पे मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान तहत सरगर्मी तेजी सन जारी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुंद पैगाम
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट उसका ड्राइविंग लाइसेंस का आधार नंबर उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा
0: नौजवान अमी बित निश दूर थाने बाप दरकार इकदाम हवाले वो अक शहरी खान बिलालन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत कर
2: नौजवान कर इन गुजारिश गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्पॉन्सरिंग स्कीम अनम कोशिश करो पन पान करो थोड़ा डाइवर्ट टुवर्ड्स बिजनेस टुवर्ड्स जॉब्स टुवर्ड्स सोशल सर्विसेज तो पन पान मत करो खराब यह तुथ वबा इस वबा हे सोन सोर माश तबाह कर गुजारिश कर सी पुलिस तिमन पज थोड़ा बे स्ट्रिक्टनेस थी
0: सीनियर बीजेपी लीडर डॉक्टर हिना भट्टन वोन जम्मू कश्मीर मनशियात के लान निश पा कर गर्ज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सन्द दस शुरू कर आमुत अख दोन पे मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान अहमियत वोल श्रीनगर वो मीडिया सत कर तमो अत मुहिम मजन समाजिक सारी तबक बढ़ित बोलित शिरकत कर पुलिसन नशा मुक्त अभियान तहत कार्रवाई जारी थवान कन देवर शेख मोहल्ला हवल श्रीनगर के निसार अहमद शेख नव मनशियात फरोज सुंद करोड़ वह लच रुपये हिंद मालियत जायदाद अटैच कर्मुत पुलिसन अनंत नाग तो हंदवारे ठ मनशियात फरोज गिरफ्तार कर तिंद कब्जे तल बार मकदार मनशियात बरामद कर्मुत ये जन पुलवामे एनडीपीएस एक्टस तहत दोन मुलजम ड्राइविंग लास्ट मनसूख कर दौरान पुलिसन कुलगामे अके बड़े ड्रग रैकेट पाई कड़ित त्रे मनशियात फरोज गिरफ्तार कर पुलिसन नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान तहत बारामूला कें मुख्त इलाकन मज नशा मुक्त रैलियन तो बेदारी प्रोग्राम सज अ दौरान पुलिसन अशमुकाम अनंत नाग गैर कानूनी तौर दवा कन वे त्रे मेडिकल स्टोर सील कर जन पुलिसन बड़गामे नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान तहत कैन बेदारी प्रोग्राम तो पी सी पी जी मीटिंग सज तर पुलिसन कंदवारि शुपियन तो उंत पोर नशा मुक्त बेदारी प्रोग्राम इनका वजीर अला उमर अब्दुल्ला सिंह सदारत में सपल सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर का आला सूत्रिच मीटिंग मुनद मीटिंग दौरान आव जतवु सतवु किस बजटस में कर आम अहम ऐलान हिंज वान अमलावरी सुड़ित मामलन दल दिन वजीर अला दूत अत मौक पे जम्मू कश्मीर कैन लूकन हंद खुद शुरू कर आम फलाई स्कीम असरदार तो वक्त पे अमलावरी यकीनी बनान अफसर हिदायत मीटिंग में नए वजीर अला सुरेंद्र चौधरी काबीना वजीर वजीर अला सिंद मुशीर चीफ सेक्रेटरी तो मुख्त महकमन हंद इंतजामी सेक्रेटरी तौजूद वजीर अला उमर अब्दुल्ला डायरेक्टर फाइनानस जहूर अहमद वानी सिंद फर्जंद अमान जहूर सिंद गुजरनस पे दुख अफसोस बोमुत अकि सोशल मीडिया पोस्टस में वजीर अला गमजद अयाल तजियत हमदर्दी हूं इजहार कर मरहूम सिंज जन्नत नशीनी बाप दुआ कर्मुत नए वजीर अला सुरेंद्र चौधरी हिच आज श्रीनगर अकिस आला सूत्रिच मीटिंग दौरान दुरुस्त जम्मू कश्मीर में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कैन प्रोजेक्टन हंदिस पेशरफ्त साम तमो दूत अफसर हिदायत जम बढ़ कामें मयार बरकरार थान प्रोजेक्टन वक्त पे मुकमल सपदन यकीनी तमो वो प्रोजेक्टन में चेर लागन वाले ठेकदार खिलाफ यी सख्त कार्रवाई कर तमो कैंसन प्रोजेक्टन बुथि ठिर ग फिल फोर दूर कर सेहत तबी तलीम हिज वजीर सकीना यतुवन हूं आज पांपर हल्के किस दौरस दौरान कई तरक्ती प्रोजेक्टन हंद पेशरफ्त जायज तमो अत मौक पे पी एच सी पारगामे अक डिजिटल एक्सरे यूनट तो थायराइड एनालाइजर तफ्तः मगरबी बंगाल में असम्बली इंतखाबन में तारीखी जीत दर्ज करने पे रियासत में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनन वाजिन बीजेपी दोन शन असम्बली सीटन पे कामयाबी हासिल कर चुनाव में वाजे अक्सरियत हासिल कर यम पत मगरबी बंगाल में पंद्रह वर्यो पे जारी तृणमूल कांग्रेस क्यादत में सरकार दौर वन खत्म सपदन वोल अत दौरान तमिलनाडु में तमिलग्गा वेत्री काजगम टीवी के पार्टी अखत अठ सीट हासिल कर यह पार्टी रियासत कैन असम्बली चुनाव में वाहिद बड़ सियासी पार्टी बनित वतलम आसाम में बीजेपी क्यादत वाल एनडीए इतिहादन त्रेमी फिर जोनमुत जन केरलम में कांग्रेस क्यादत वालस यूडीएफ कामयाबी हासिल सपजम पुडुचेरी में एनडीए जीत दर्ज कर पोजिशन बरकरार थ भारतीय जनता पार्टी पार्टी हिंद सीनियर लीडर

0: मर्केजी वजीर अमित शाह मगरबी बंगाल लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर सिंधी चुनाव बापत मर्केजी ऑब्जर्वर तैनात करमित इथे पछि उड़ीसा के वजीर आला मोहन चरण मांझी रियासती बापत मर्केजी को ऑब्जर्वर तैनात करना आमित जन मर्केजी वजीर जे पी नड्डा आसामस मज लेजिस्लेटिव पार्टी हुंद लीडर मुंतखब करना बापत मर्केजी ऑब्जर्वर तो हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी मर्केज किस को ऑब्जर्वर सिंधी हैसियत तैनात करना आमित इमन नावन बीजेपी पार्लियामेंटी बोर्डन मंजूरी दिच यम खबर तु आकाशवाणी श्रीनगर पे बोजान खबर हेकू तु आकाशवाणी हि मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआर ते डीटीएचएस पे बूज दौरान वजीर अजम नरेंद्र मोदी हाल कल असेंबली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हज कामयाबी तारीख तो बेमिसाल करार दिवान मगरबी बंगाल आसाम पुडुचेरी तमिलनाडु तो केरलम कें लूकन तो पार्टी कारकुनन हुंद शुक्रिया अदा कोरमुत नई दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टरस पे पार्टी कारकुनन खिताब करान वोन तमो बीजेपी एनडीए वन जायदस वहन रियासत में हुकूमत करान जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन तो सीनियर बीजेपी लीडर डॉक्टर सईद दरख्शां अंद्राबी छु मुख्तलिफ रियासतन अंदर असेंबली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हज कामयाबी पे वजीर अजम नरेंद्र मोदी तो पार्टी हंदन दोयमें लीडरन मुबारक कोरमुत गांधरबल से तल्लुक थावन वल सीनियर बीजेपी लीडर मोहम्मद अमीन शाहन तो मगरबी बंगाल तो आसाम में पार्टी हज कामयाबी पे बीजेपी किस अलाकायतस मुबारक कोरमुत आला तलीम महकमन जम्मू कश्मीर कें तमाम कॉलेजन में एकेडमिक सेशन जतवुह सतवुह बापत चौवहन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम तो पांचवहन इंटीग्रेटेड पीजी प्रोग्राम में एडमिशन ऐलान कोरमुत अत सिलसिल मन डायरेक्टर कॉलेज जम्मू कश्मीर प्रोफेसर शेख एजाज बशीरन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत कान
1: इस साल हम सारे एडमिशन 10+2 मेरिट के बेस पे कर रहे हैं तो ये सारा एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन है 9 तारीख को ये हम लिंक लाइव कर रहे हैं 27 तारीख तक ये खुली रहेगी फिर 30 तारीख को हम पहला लिस्ट निकाल रहे हैं उसके बाद हम 9 जून को दूसरा लिस्ट निकालेंगे तो दूसरे लिस्ट के बाद फिर ये एक स्पॉट राउंड होगा लास्ट में वो 18 जून से 25 जून तक चलेगा और 15 जून से कश्मीर डिवीजन में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे और 15 जुलाई से जम्मू डिवीजन में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे लेकिन एडमिशन प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलेगा विंटर जोन कॉलेज के लिए भी और समर जोन कॉलेज के लिए भी
0: क्राइम ब्रांच इक्तसदी जुर्मन मुतलिक विंग जसा सदास में दर्ज करना आमतिस केसस में श्रीनगर अकिस कार्रवाई दौरान टंगपुर श्रीनगर सेहत महकमस में काम करान सीनियर असिस्टेंट शाहनवाज अहमद मीर गिरफ्तार कोरमुत शाहनवाज अहमद मीरस पे सेहत महकमस में गैर कानूनी तौर हेल्थ एजुकेटर नौकरी लागू इल्जाम वादी हंदिस मारूफ सूफी बुजुर्ग लाल आरगेम रहमतुल्लाह अलैह सालान उर्सी 7 मई ब्रेसवार दो मनाना अत सिलसिल मज यह चिट्ठी बांडे आरगाम बंडपुर तिंदिस अस्तान आलियास पे 7 मई दरूद अजगार तो खत्मातुल मुअज्जमात चन मजलिसन सज कर कश्मीर वादी हंद नामवार रेडियो तो टी वी अदाकार रफीक मुत्तू सपद आज सुबह अचानक दिलुक दौर पेन कन फोत तिंदिस गुजरनस पे कैयाव समाजी तो अदबी शख्सियतों तो अंजुमनों दुख तो अफसोस बवान गमजद अयालस तजियत इजहार कोरमुत इन मज आर्टिस्ट कलेक्टिव गिल्ड सदर एजाजरा यम्बरजल यूथ क्लब सदर खुर्शीद मीर आल जेंट के रेडियो टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन हिंदी सदर शेख तारिक जावेद गुलफाम बारजी महक ड्रामेटिक क्लब श्रीनगर इंदर कल्चरल फोरम सुंबल रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन हिंदी सदर साहिल डार तो सागर कल्चरल फोरम चुकरपटनिक सरपरस्त सागर नजीर तो मारूफ शायर डॉक्टर हसरत हुसैन शामिल दौरान जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी हिंद सेक्रेटरी हरविंदर कौर तो अकेडमी हिंद अमलन ते रफीक मुतू सिंदिस गुजरनस पे दुख तो अफसोस बोमुत नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दि सईद अली अली बल्खी रहमतुल्लाह अला पखरपुर जियारत अलमदार कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अला चरारी शरीफ हाजरी अत मौक पे वो डॉक्टर फारूकन बुजुर्गान दीन तो अवलियाई किरामन दरगाह च लूकन रूहानी तस्कीन फराहम कर सान तहजीब क्यों तमदन आगुर रोजम तमो वो लूकन सत कर मौजूदा सरकार लूकन आसाइश वातान बापत दन पन कर मौसम मौसमियात महकमे मुताबिक जम्मू कश्मीर में पगह शाम तम कुन जाए सोत सोत रूद या वुजमलन गगरायन सूद लव पेन इम्कान श्रीनगर आज दुख ज्यादा दर्जे हरारत 2.8 डिग्री सेल्सियस तो रात रुद कम खुद कम दर्जे हरारत आव 9.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कर जमे आज दुख ज्यादा दर्जे हरारत 33.1 डिग्री सेल्सियस तो रात रुद कम खुद कम दर्जे हरारत 17.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कर सत खबर यह बुलेटिन अंत खुदा हाफिज़।

0: हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर के तमाम कॉलेजों में तालीमी साल 2026-27 के लिए 4 साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और 5 साल इंटीग्रेटेड पीजी प्रोग्रामों के दाखिले का ऐलान किया है। इस सिलसिले में डायरेक्टर कॉलेज जम्मू कश्मीर प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
1: इस साल हम सारे एडमिशन 10+2 मेरिट के बेस पे कर रहे हैं, तो ये सारा एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन है। 9 तारीख को ये हम लिंक लाइव कर रहे हैं, 27 तारीख तक ये खुली रहेगी, फिर 30 तारीख को हम पहला लिस्ट निकाल रहे हैं, उसके बाद हम 9 जून को दूसरा लिस्ट निकालेंगे, तो दूसरे लिस्ट के बाद फिर ये एक स्पॉट राउंड होगा लास्ट में, वो 18 जून से 25 जून तक चलेगा और 15 जून से कश्मीर डिवीजन में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे और 15 जुलाई से जम्मू डिवीजन में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन एडमिशन प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलेगा विंटर जोन कॉलेज के लिए भी और समर जोन कॉलेज के लिए भी।
0: क्राइम ब्रांच की इक्तिसादी जराइम से मुतलिक विंग ने साल 2017 में दर्ज किए गए एक मामले के सिलसिले में श्रीनगर में एक छापामार कार्रवाई के दौरान महकमे सेहत में सीनियर असिस्टेंट के ओहदे पर तैनात टंकीपुरा श्रीनगर के रहने वाले शहनवाज अहमद मीर को गिरफ्तार किया है। शहनवाज अहमद मीर पर महकमे में एक हेल्थ एजुकेटर को गैर कानूनी तौर नौकरी दिलाने का इल्जाम है। बताया जाता है कि शहनवाज अहमद इस तरह के कई दीगर मामलों में भी मुलविस है। वादी के एक मारूफ रेडियो और टीवी अदाकार रफीक मतू आज सुबह अचानक हरकत कलब बंद होने से फौत हुए। कई समाजी और अदबी शख्सियात और अंजुमनों ने उनके इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार करते हुए सोमवार को उनके के साथ ताजियत की है। आर्टिस्ट कलेक्टिव गिल्ड के सदर एजाज रा, यमरजल यूथ क्लब के सदर खुर्शीद मीर, आल जेंड के रेडियो टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के सदर शेख तारिक जावेद, गुलफाम बारजी, महक ड्रामेटिक क्लब श्रीनगर, इंदर कल्चरल फोरम सुंबल, रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन के सदर साहिल डार, सागर कल्चरल फोरम सुकुरपटन के सरबराह सागर नजीर और नामवर शायर डॉक्टर हसरत हुसैन ने उनके इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए इसे आर्टिस्ट बरादरी के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। दरियासना जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की सेक्रेटरी हरविंदर कौर और कल्चरल एकेडमी के अमले ने भी मरहूम के इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार किया है। पेश हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की सरगर्मियों से मुतलिक खबरें। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा ने पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में एक मीटिंग के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के सिलसिले में मुनक्कद होने वाले तरबियती कैंपों की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इन तरबियती कैंपों का इनेकाद एक मुनज्जम तरीके पर किया जाना चाहिए और तमाम तैयारियां वक्त पर मुकम्मल की जानी चाहिए। दरियस्ता पार्टी की जनरल सेक्रेटरी संजीता डोगरा ने कच्ची छावनी जम्मू में खवातीन के लिए एक अवामी दरबार का इनेकाद करके उनके मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। बीजेपी जम्मू कश्मीर के मीडिया इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप महोत्रा ने एक प्रेस बयान में कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत मजबूत से मजबूत तर हो रहा है और ये तरक्की की एक नई राह पर गामजन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सईद अली आली बलखी रहमतुल्लाह पखरपोरा और जियारत अलमदार कश्मीर हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह चरार शरीफ पर हाजिरी दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बुजुर्गान दीन और अवलियाई किराम की दरगाहें लोगों को रूहानी सुकून देने के साथ साथ हमारी तहजीब व तमद्दन का एक रोशन बाब रही हैं। इस मौके पर लोगों के साथ बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत लोगों की राहत रसानी को यकीनी बनाने में कोई भी दकीका फरोजदाश्त नहीं कर रही है। और अब रेल से मुतलिक खबर। श्रीनगर जम्मू के दरमियान हाल ही में शुरू की गई बराह रास्त वंदे भारत एक्सप्रेस सर्विस की अवामी सतह पर वसी पजीराई की जा रही है और मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद इस सर्विस के जरिए सफर करने लगी। कल 4 मई को तकरीबन 4,680 मुसाफिरों ने वंदे भारत एक्सप्रेस से सफर किया, जो कि कुल सीटों का 82% इस्तेमाल दिखाता है और सीटों के इस्तेमाल की यह शरह 96% तक बढ़ गई। रेलवे के जम्मू डिवीजन के पब्लिक रिलेशंस इंस्पेक्टर की तरफ से जारी करदा एक प्रेस रिलीज में रेलवे के सीनियर डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंगल ने उम्मीद जताई है कि अगले चंद ही रोज में 100% सीटों पर मुसाफिर सफर करते हुए मिलेंगे। भारत ने मुत्तहिदा अरब इमारात में फुजैरा पेट्रोलियम इंडस्ट्री जोन पर किए गए ईरान के हमले को नाकाबिले कबूल करार देते हुए इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। इस हमले में 3 भारतीय शहरी जख्मी हो गए हैं। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि भारत मगरबी एशिया में कयाम अमन के

0: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव के अलावा FM 103.5 MHz पर समय समाप्त करें प्रोग्राम वादी की आवाज इस वक्फे के बाद।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: वादी की आवाज। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश होता है।

वादी की आवाज़ आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से। समीन कई दिहाइयों तक आज़ादी की जंग लड़कर आखिरकार 1947 में भारत के लोगों को अंग्रेज़ों की गुलामी से नजात मिली। मुल्क में रहने वाले सभी तबकों हिंदू मुस्लिम सिखों वगैरह की बेशबाह कुर्बानियां रंग लाई और इस मुल्क के अवाम को आज़ादाना तौर पर अपने मुल्क को चलाने का मौका फराहम हुआ और तब से भारत तरक्की और खुशहाली की एक नई राह पर चल पड़ा है। भारत से निकलते निकलते अंग्रेज़ों ने इस मुल्क के अवाम के दरमियान दूरियां पैदा करने की एक मज़मूम हरकत की और कुछ लोग उनके इस नापाक

वादी की आवाज आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से। समीन 1947 में जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर नाजायज कब्जा करने के बाद पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के कुदरती वसाइल और हरे भरे जंगलों को लूटता आया है। मकबूजा कश्मीर के सीधे साधे लोगों को अब ये कई बरसों के बाद महसूस हुआ है कि पाकिस्तान उनके इलाके पर गैरकानूनी तौर कब्जा करके उनका कोई भला नहीं कर रहा है, बल्कि वो कश्मीर के उस हिस्से में मौजूद कुदरती वसाइल को लूटने के इरादे से काबिज हुआ। अब जब लोगों ने पाकिस्तान के नापाक अजायम को बांप लिया है तो उन्होंने पाकिस्तानी सरकार और वहां की फौज के खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने पर मकबूजा कश्मीर के लोगों को पाकिस्तानी फौज के गैज़ो गज़ब का शिकार होना पड़ रहा है, मगर मकबूजा कश्मीर के गयूर अवाम ने जो आवाज पाकिस्तान के खिलाफ उठाई है वो लाख मजालिम के बावजूद आज भी शिद्दत से जारी है और इसमें हर गुजरते दिन के साथ मजीद शिद्दत आ रही है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों का इल्ज़ाम है कि पाकिस्तानी फौज और वहां की सरकार मकबूजा कश्मीर में मौजूद हरे भरे जंगलों को काट कर सरकारी लकड़ी पाकिस्तान पहुंचा रहे हैं, जिस वजह से इन जंगलात का काफ़ी नुकसान होने के साथ साथ कुदरती माहौल और वहाँ की खूबसूरती भी मुतासर हो रही है। वहाँ के लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी सरकार मकबूजा कश्मीर में गैरकानूनी तौर पर ज़मीन हड़प करने, सियाहती मकामात पर नाजायज़ तजावुजात खड़े करने और पाकिस्तान के दीगर सूबों से लोगों को मकबूजा कश्मीर में बसाने में मुलविस है। द यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने इस मामले को लेकर लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को एक यादाश्त पेश की है जिसमें ऐसी कार्रवाइयों को फौरी तौर रोकने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जिला बाग के लसदाना और मुजफ्फराबाद जिला के नीलम और सपीर चनासी इलाकों में पाकिस्तानी सरकार ने ऐसे गैरकानूनी कामों से कुदरती माहौल को तबाह करके रख दिया है। इस पार्टी ने पाकिस्तानी सरकार पर वाजिया किया है।

0: इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है, तो दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। खुदा हाफिज।
1: वादे की आवाज। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश्र होता है।

समीन आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम वादी की आवाज। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। समीन हमारे प्रोग्रामों के हवाले से एक इतला समाप्त करें। प्रोग्राम हेलो रेडियो क्लिनिक के ताजा शुमारी की रिकॉर्डिंग कल बुधवार को दिन के 2 बजे से 3 बजे तक होगी। इस बार प्रोग्राम में जिस मौजू का इंतखाब किया गया है वो है कैंसर से बचाओ। मौजू पर तफसीली मालूमात फराहम करने के लिए हमने मदऊ किया है नामवर माहे सरतान डॉक्टर शबनम बशीर को। अगर आप हमारे मेहमान मौलिस से मौजू की मुनासबत से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो रब्ता करें। हमारा फोन नंबर है 01942483064। वक्त रहेगा दिन के 2 बजे से 3 बजे तक। ये थी एक इतला हमारे प्रोग्रामों के हवाले से। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। बीडीवे के अलावा FM 103.5 MHz पर समय सबात करें शोबे खबर आकाशवाणी श्रीनगर की ये पेशकश।

0: प्रोसेस भी साथ साथ चलाया कि क्षतिकंठ लल दिल से लेकर आज के बच्चों तक जिसकी भी कोई तकलीफ मुझे पसंद आई तो मैंने चाहा कि उसको अंग्रेजी में डाला जाए ताकि और लोग कश्मीरियों को समझें, कश्मीरी अदब को समझें। मैं अकेला इसमें नहीं हूँ, अंग्रेजों ने बहुत काम किया है इस सिलसिले में, पर्टिकुलरली हिंटन नोल्स, रॉबर्ट वॉल्टर लॉरेंस और ऑरल स्टाइन और ग्रेर्सन, जॉर्ज इब्राहिम ग्रेर्सन, जितनी भी तकलीकात उनको मिली उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है। लेकिन मैंने ये सोचा कि उनको शायद हमारी जबान का पूरा इल्म नहीं था, मैंने आई स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग फ्रॉम लल्दत टू प्रेजेंट डे ऑल द राइटर्स, ऑल द पोएट्स आई हैव ट्रांसलेटेड, मुझसे बहुत छोटे और आज मुझसे मेरे स्टूडेंट्स को भी मैंने ट्रांसलेट किया है, इसमें मुझे अच्छा लगा। तो एक सीरीज मेरा चल रहा है द बेस्ट ऑफ कश्मीरी लिटरेचर, उनके 4 वॉल्यूम तो छप चुके हैं, बाजार में खूब बिकते हैं, मैंने इंटर लैंग्वेज हिंदी में मैंने ट्रांसलेट किया इन सब को, तो ये भी मेरा काम रहा। मैंने पहले ही अर्ज किया कि मैं अपने आप को बिजी रखना चाहता हूँ, एक तरह का इंडल्जेंस है अपने आप को खुश करने के लिए, और मैं अपने आप को बिजी रखना चाहूँ, वरना लोनलीनेस एंड सेंस ऑफ सॉलिट्यूड, सेंस ऑफ पेन एंड सफरिंग ओवरवेलम्स मी। आई कीप माईसेल्फ बिजी ऑलवेज फ्रॉम मॉर्निंग टू लेट इवनिंग, आई कीप राइटिंग यूजिंग माई कंप्यूटर, वॉट एवर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर अवेलेबल, इवन इन द एरोप्लेन आई राइट
1: व्हाइल ट्रैवलिंग। व्हाइल यस,
0: क्या अकेले क्या करूं तो टैब लेके बैठता हूं और पोएट्री लिखता हूं या शॉर्ट स्टोरी लिखता हूं, तो बहुत सारी चीजें, मेरी 106 किताबें छप चुकी, कुछ बहुत बड़ी हैं, कुछ छोटी भी हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में, ये मेरा काम रहा।
1: आज की तारीख में बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर में या कंट्री में अब इल्म हो जाएगा, अब दे आर बीइंग इन्फॉर्म्ड थ्रू योर गुड सेल्फ की 106 बुक्स, दिस इज द ट्रेजर ऑफ नॉलेज, ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस, ऑल ऑब्जर्वेशंस अक्रॉस बोर्ड, अक्रॉस लैंग्वेज, अक्रॉस डाइवर्स कल्चर आपने लिखा है, इस सारी चीजों में हु हैज इन्फ्लुएंस्ड यू द मोस्ट एज राइटर?
0: एक तो इंटरनेशनल डेवलपर तो बहुत सारे हैं जिनको मैंने पढ़ा है और जिनकी तरह लिखना चाहा है मैंने, मसलन मैंने शेक्सपियर का नाम लिखा
1: जी,
0: क्योंकि मेरे सिलेबस में ही था, वहां से लेकर आज के दौर के 20वीं सदी के फ्रांस काफ्का, टॉलस्टॉय वगैरह सब लोगों को मैंने पढ़ने की कोशिश, बहुत ही मैं ओमनिवर्स रीडर रहा हूं, और प्रेमचंद वगैरह, मंटो वगैरह सब, इनको न सिर्फ मैंने ट्रांसलेट किया बल्कि पढ़ा भी है, तो जो कुछ मुझे अच्छा लगा उसको इमीडिएटली मैंने रेंडर किया किसी और लैंग्वेज में, पर्टिकुलरली कश्मीरी, तो कश्मीरी में जो भी अच्छा लगा उनको रैंडमली अंग्रेजी में या हिंदी में डालने की कोशिश की, कुछ चीजें पसंद की गई, कुछ चीजों को इग्नोर किया गया, ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन जो मास्टर्स ऑफ लिटरेचर हैं पूरी वर्ल्ड में उनसे मैं मुतासर रहा हूँ, मैं उनकी तरह लिखना चाहता हूँ लेकिन नहीं लिख पाता, वो मेरी कोताही है, और लेकिन वही मेरी ताकत भी है। आई एम कॉन्शियस दैट आई एम नॉट एज गुड एज शेक्सपियर इज वॉज, I am not as good as Tolstoy is, but still that consciousness of being lesser than the greater makes me, is my strength.
1: Professor Ashok sir, how do you count? We can say, I would request that as an academic, as a teacher, as a guide for so many researchers or so many students, specifically say, would like to know that writers, authors, or scholars, jo aapke supervision mein kahun, aapke influence mein kahun, how do you count that? Can you count certain success stories from Jammu and Kashmir, from across the country?
0: The happiest person when I read something good written by my contemporaries, younger or senior, unmein bhi mera koi prejudice nahi raha hai. For instance, when I translated Somnath Zutshi, When It Dawned, Yellow Fulgash, bahut hi huge collection of short stories tha, to kuch logon ne us par tanqeed ki ki bhai ye kitab hai hi nahi. मैं हंस पढ़ा कि उन्होंने ये किताब देखी भी नहीं, इतने बड़े मास्टर जो हुज द फाउंडर ऑफ कश्मीर शॉर्ट स्टोरी, इनको मालूम ही नहीं वो कौन था, हंस पढ़ता हूँ। और आज के दौर के बच्चों में द स्टूडेंट्स ऑफ माय स्टूडेंट्स, मसलन हाल ही में कुछ लोगों ने कश्मीरी में नॉवल लिखी है, मसलन मेरा एक आसिफ एक नाम का एक लड़का है, छोटा है 20-22 साल का, तो उसने एक बहुत ही उम्दा नॉवल लिखी खाबन ख्याल मस, तो मैंने उसका फॉरवर्ड वगैरह सब कुछ लिखा, फिर अब परसों ही मैंने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन रिलीज किया, तो इतना खुश हुआ मैं, वो खुश हुआ हो या न हुआ हो लेकिन मैं तो खुश हुआ कि इस छोटे बच्चे को, इसी तरह कोई लड़की है शायरा वो लिखती है मलाल, उसने एक नॉवल लिखी एक दूर दराज गांव में लिखती, मैं उसे जानता भी नहीं, उसने इतनी उम्दा नॉवल लिखी है मलाल,
1: मीन्स मलाल, कैन यू

0: Explain it to the our listeners, our viewers.
1: Depression or anxiety is tumalal. Tumalal ko main chahta hoon ki main angrezi mein iska translate karun agar zindagi ne saath diya to. Lekin khush hota hoon ki ye chote bacche aaj ke is tarah se likhte hain aur mujhe ye bhi gham nahi ki kaun kis zuban mein likhta hai. Koi angrezi mein likhta hai, bahut sare acche poets humne produce kiye younger generation mein Gen Z se. Bahut khush hota hoon main unke saath milta julta hoon. To older generations मैं से भी बहुत सारे हिंदी अंग्रेजी या किसी और लैंग्वेज में लिखते रहे अपनी लैंग्वेज को छोड़ के किसी और लैंग्वेज में भी एक्सेल कर पाता है मिसालें तो इतनी हैं मसलन मिर्ज़ा गालिब खुद ही उसको हम जानते हैं देवानी गालिब उर्दू की वजह से लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अगर मिर्ज़ा गालिब को समझना है ही है वन हैज टू रीड हिज कुलियाते गालिब इन पर्शियन इतना ग्रेट है कि फारसी दुनिया में उसको अजीम शायरों में तस्लीम किया जाता है और खुद भी वो फख्र से कहता था कि मैं फारसी हालांकि उर्दू शायर की वजह से उसको फिल्में भी बनी ड्रामे भी बने अच्छे गुलोकार मिले लेकिन फारसी देवान जो उसका है देवानी गालिब पर्शियन इसी तरह अलामा इकबाल उर्दू छोड़कर फारसी में लिखते थे तो ज्यादा बड़े शायर बने ऐसे बहुत सारे फ्रांसिस बेकन वगैरह इन्होंने अपनी लैंग्वेज को छोड़कर दूसरी लैंग्वेज में लिखा ऐसी हमाकत कोशिश मैं भी करता हूँ कभी कभी कभी हिंदी में गजल लिखता हूँ कभी हिंदी में अंग्रेजी में नज़्म वगैरह वगैरह ये तो मैंने कहा कि मुझे कोई अजमत की ख्वाहिश नहीं मैं चाहता हूँ कि मैं मीनिंगफुली ये लाइफ जो मुझे मिली है इसको बिताऊं
0: कुदरत की तरफ से एक देन है एक नेमत है कि जिंदगी है तो जिंदगी में करके जाए
1: वरना बिस्तर लिए रजाई के नीचे बैठना है वो अच्छा नहीं है इससे बेहतर है कि जिए ही नहीं
0: जो आज की तारीख में इंसान या आज कंटेम्पररी वर्ल्ड में एक हम जी रहे हैं तो किस तरह आप इसको एज अ राइटर एज अ कीन ऑब्जर्वर आप देखते हैं समझते हैं और अपनी इंटेलेक्ट के हिसाब से इसको आप ढालते हैं इसको आप ट्रांसलेट करें या इसको आप क्रिएट करते हैं इन योर ओन वर्ड्स ब्लैक एंड व्हाइट में जी, जी. तो किस तरह से आप इसको देखते हैं
1: मेरी जिंदगी में पिछले 10-15 साल से मैं देख रहा हूँ एक अलमनाक सूरत हाल है कि ट्रेजेडी हुई है लिटरेचर के साथ किताब का जमाना गया हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा हालांकि मैंने कहा कि मैं 106 किताबों का मुसन्निफ हूँ लेकिन किताब यानी हार्ड बाउंड या पेपर बाउंड किताब हाथ में लेना और पढ़ना वो जमाना ही गया क्योंकि अब बुक ने एक नई सूरत इख्तियार की है जिसको हम ई बुक भी कहते हैं पीडीएफ भी कहते हैं AI जनरेटेड बुक कहते हैं तो ये सारे नई चीजें आ गई जो ट्रेडिशनल पेपर पर सेलुलोज पर छपाई से बनती थी प्रिंटेड बुक उसका जमाना शायद गया और कुछ अगले 1-2 दिहाइयों में तो हमारे बच्चों के बच्चे पूछेंगे ग्रैंडपा व्हाट वाज दैट बुक लाइक ऊपर पेंट हाउस में जाएंगे और वहां से ढूंढ निकालेंगे बुक व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड एज असिमोव ने इसको कहानी भी लिखी है द प्लेजर्स ऑफ द पास्ट तो बच्चे दौड़ के जाते हैं ऊपर और वहां से चीज लाते हैं फिर ग्रैंड फादर से पूछते हैं ये क्या चीज है तो वो रो पड़ता है कि इनको मालूम ही नहीं क्या एक बात पेन की भी है हमारे आज के बच्चे तो अब पेन यूज ही नहीं कर हमारे घर में अब पेन का जमाना ही गया अब तो नए पेन आ गए हैं ये डिजिटल मोड आ गया है ये आज की ही ट्रेजेडी नहीं बल्कि इससे पहले भी इस किताब ने बहुत सारी सूरतें बदली हैं पहले तो
0: वेरियस फॉर्म्स
1: मतलब पहले तो एपिटाफ्स हुआ करते थे स्टोन पर एनग्रेविंग्स हुआ करते इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे वहां से फिर भोजपात्र पर लिख सीखा इंक का यूज आ गया फिर हाइड हैवानों की चमड़ी पर लिखना
0: खालों पे चमड़ी पर हाँ, बिल्कुल
1: जब तक कागज का जमाना आ गया कहाँ से भी आया है कागज जहाँ से भी आया है तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था कि कागज आ गया कागज पर किताब पहले तो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी एक किताब अगर होती 1000 सफाहत की तो जिंदगी में 2-4 कापियां ही बना सकता और वो 2-4 दोस्तों को मैं सोचता हूँ कि शेक्सपियर ने क्या किया होगा किस तरह लिखा होगा सफोक्लीज ने कैसे लिखा होगा छोटे छोटे भोजपात्र पर लिखा होगा और फिर इतनी बड़ी किताबों को कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट किया होगा उसकी सर्कुलेशन महदूद थी जब 18th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस आ गया एलिजाबेथ आइंस्टाइन थी जिसने पहली बार प्रिंटिंग प्रेस लाया, एक ही किताब की हजारों कापियां बनी, वो जो मोनोपोली थी, जायरादारी थी बुक पर, वो खत्म हो गई। मिडिल क्लास सामने आ गया बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से सबसे बड़ा कारनामा ये हुआ कि मिडिल क्लास, मुझ जैसे लोग आ गए, जो न तो रईस हैं, बादशाह हैं, न राजा हैं, न रानी हैं,

0: न तो खाकसार हैं वो कीड़े मकोड़ों की तरह जो रहते हैं मेहनत कश, बीच में हम अपने अदब की अपनी जिंदगी की तर्जमानी चाहते हैं अदब में, तो ये मिडिल क्लास आना और उधर से प्रिंटिंग प्रेस आना, तो लाखों करोड़ों पढ़ने वाले आ गए किताबों के। लेकिन देखते देखते ये किताबें अब स्लीट हो रही हैं, मिलियंस ऑफ बुक्स आई कैन स्टोर इन वन चिप।
1: क्या इसको मार्जिन दिया जाना चाहिए कि वी शुड प्रिजर्व प्रोटेक्ट ऑल दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑल दीज राइटिंग्स?
0: मैं उसकी मिसाल आपका रेडियो कश्मीर है, सबसे बड़ा अलमिया। ये यहाँ बेहतरीन लाइब्रेरी थी, तमाम राइटर्स जो हमारे सबसे उम्दा राइटर हैं 20वीं सदी के, उनके हाथ की लिखी चीज़ें थी वो मौजूद थी, उनकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद। 2014 का जो फ्लड्स आ गए,
1: yes.
0: ये पूरी
1: डिवास्टेटिंग फ्लड,
0: डिवास्टेटिंग, वो सबकी सब बह गई, खत्म हो गया सब कुछ। कल्चरल एकेडमी का भी यही हाल हुआ, जो भी कुतुब खाने थे जाती थे या स्टेट लेवल,
1: इट वाज वॉश्ड अवे इन द फ्लड्स,
0: तो खत्म हो गया। ये हमें इस्तकबाल करना चाहिए कि मैं इस वक्त आपसे हम कलाम हूँ तो हमारी बात रिकॉर्ड हो रही है, न सिर्फ रिकॉर्ड होगी बल्कि इनकी मिलियंस ऑफ कॉपीज
1: बन सकती हैं, बनेंगी, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली।
0: तो ये अच्छी बात है कि हम हदूद को पार कर रहे हैं, ट्रांसग्रेस कर रहे हैं।
1: थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर शफी शोक साहब फॉर बीइंग विद अस।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: सामिन, इसके साथ ही इस खसूसी प्रोग्राम सीरीज के तीसरे शुमारे का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है। प्रोग्राम सीरीज के अगले शुमारे में 7 मई जुमेरात को दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।
2: समीन, आप पद्मश्री प्रोफेसर शफी शौक के साथ यह खसूसी प्रोग्राम सुन रहे थे। होस्ट डायरेक्टर न्यूज तारिक राठौर, पेशकश रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर। यह आकाशवाणी श्रीनगर है।

यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव के अलावा एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर रात के 8:45 हो रहे हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार पेश होंगे।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेराह पर हुए हमले की निंदा की। इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। उन्होंने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए

0: संवाद और कूटनीति का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज और भारत आईसीसी क्रिकेट पुरुष टी20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से आयातित कपास पर निर्भरता कम करने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में भी मदद मिलेगी।
1: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की

0: 2.5% के लिए किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा। और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स हैं देश में, उन सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
1: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें गैलियम नाइट्राइड तकनीक पर आधारित देश की पहली वाणिज्यिक मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले सुविधा और एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सुविधा शामिल है।
0: 2 नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स, अब तक 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में, उसमें से 2 में कमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक 31 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, एक 30 अप्रैल को उसका सेकेंड वाले का। और अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों प्लांट्स की फुल कैपेसिटी बुक हो चुकी है, मतलब जितना मैन्युफैक्चर करे वो फुल्ली उसकी बुकिंग हो चुकी है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने संसद में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
0: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इम्पोर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं, और ये जजेस बढ़ाए गए।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेराह पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मूज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बताया कि पिछले महीने ही फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की और कहा कि भारत भाग्यशाली है जो उन्हें श्री मोदी जैसा नेता मिला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। उधर निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों को निराधार और झूठ बताया है। दक्षिण कोलकाता के जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पूरी मतगणना आयोग के नियमों और विनियमों के अनुसार ही संपन्न हुई। मतगणना के दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद किए जाने के आरोप का खंडन किया गया।

0: है और कहा गया है कि कैमरे पूरी मतगणना के दौरान चालू रहे हैं। उधर भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने कहा कि चाहे वो इस्तीफा दें या न दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। केरला में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। एक रिपोर्ट।
1: केरलम में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस खेमे में चर्चाएं जारी है, लेकिन विधायक दल की आधिकारिक बैठक के संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने केरलम में 140 विधानसभा सीट में से 102 सीट पर शानदार जीत हासिल की है। विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी सरकार गठन के लिए राज्यपाल से संपर्क करेगी। यूडीएफ सूत्रों के अनुसार विधायक दल की बैठक दिल्ली से पार्टी कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कड़गम के नवनिर्वाचित विधायकों ने आज औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को नेता चुना है। एक रिपोर्ट।
2: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल केरल में हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र भेजने में देरी हो सकती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एक बयान में स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। एआईएडीएमके के महासचिव ई पलानीसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी राजनीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: पुदुचेरी में मनादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वियम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुदुचेरी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम की अध्यक्षता में आज नव निर्वाचित विधायकों की परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री और पुदुचेरी में भाजपा चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, प्रदेश प्रभारी निर्मल कुमार सुराणा और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान मन्नादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वयम को विधानसभा में पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के संबंध में विचार विमर्श किया गया। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी है।
4: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा, देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने डिजिटल फोरेंसिक, साइबर सुरक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र में 5 वर्षीय सहयोग के लिए एक समझौता किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक चंद्र वर्मा ने कहा कि यह सहयोग भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 252 अंक गिरकर 77,018 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 87 अंक फिसलकर 24,033 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.21 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति तो लाम ने बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा किया। इस यात्रा को भारत और वियतनाम के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

0: सी ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट्स ईजीआर को जारी करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सोने की व्यापक खरीद बिक्री में पारदर्शिता लाना है। इसके जरिए सोने की लिवाली और बिकवाली की प्रक्रिया को एक विनियमित तथा सुरक्षित आधार मिलेगा। ये सोना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त वॉल्ट में रखा जाता है और डिपॉजिटरी के जरिए डिजिटली सुरक्षित रहता है। भारत ने आईसीसी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनी थी। साथ ही टीम ने रिकॉर्ड तीसरी बार यह खिताब जीता था। भारत 275 अंक के साथ शीर्ष पर काबिज है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। चेन्नई अंक तालिका में छठे और दिल्ली 7वें नंबर पर है। मौसम विभाग ने कल बिहार और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में कल तेज बारिश की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा पर हुए हमले की निंदा की। इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज और भारत आईसीसी क्रिकेट पुरुष T20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियमवेव के अलावा FM 103.5 MHz पर समय समाप्त करें फिल्मी नक में।

आगाज में आपने सूरज फिल्म से नगमा सुना, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन की मौसीकी। अब आइए सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में ये दुगाना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं, आर डी बर्मन की मौसीकी। फिल्म का नाम है यादों की बारात।

तेरी हया तेरी शर्म तेरी कसम मेरे होठ सिए जाए शाम मस्तानी।

सभी इन आखिर में आपने किशोर कुमार की आवाज़ में कट्टी पतंग फिल्म से नगमा सुना। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव के अलावा FM 103.5 MHz पर। 9:15 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू खबरों का बुलेटिन शुरू होगा।

0: ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। मरकज ने कपास की पैदावारियत के मिशन के लिए 5,600 करोड़ रुपए की रकम की मंजूरी दी है। मरकज ने कारोबार को मदद देने के तनाजुर में मुख्तसर मुद्दती नकद रकूमात की फराहमी के सिलसिले में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 को भी मंजूरी दी है। काबीना ने गुजरात में सेमी कंडक्टर की मैनुफैक्चरिंग के 2 मजीद यूनिटों की मंजूरी दी है। उसने 2026-27 के सीज़न के लिए गन्ने की मुनसिफाना और एजाजी कीमत 365 रुपये फ़ी क्विंटल की भी मंजूरी दी है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद में 4 का इजाफा करके 37 कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के फुजैरा पर हमले की मजम्मत की है, जिसमें 3 भारतीय बाशिंदे जख्मी हुए हैं। उन्होंने बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया है ताकि पूरे मगरबी एशिया में अमन इस्तेहकाम को बहाल किया जा सके। मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में हुकूमत की तश्कील के लिए सियासी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। और क्रिकेट में भारत ने ICC मर्दों की T20 रैंकिंग में अपने पहले मकाम को बरकरार रखा है। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने कपास की पैदावारियत के मिशन कपास क्रांति को 5,660 करोड़ रुपए की रकम के साथ मंजूरी दी है, ताकि भारत के कपास के सेक्टर में राह पा जाने वाली रुकावटों, तरक्की में कमी और मेयार से मुतालिक तशवीश को दूर किया जा सके। नई दिल्ली में एक प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णो ने बताया कि ये मिशन हुकूमत के 5F विजन से मुताबिकत रखता है।
1: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
0: वजीर मौसूफ ने कहा कि इसका मकसद ज्यादा पैदावार वाले मुतनव्वे बीजों

0: को तैयार करना है जो बीमारियों और कीड़ों से मज़ाहमत कर सकते हों। साथ ही इसके तहत फसल की पैदावार से मुताल्लिक जदीद टेक्नोलॉजी के वसी पैमाने पर इख्तियार करने पर जोर दिया जाएगा। इन कोशिशों पर रियासती सरकारों, कृषि विज्ञान केंद्रों और रियासती ज़रई यूनिवर्सिटियों के जरिए अमल किया जाएगा। मरकजी काबीना ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 को भी मंजूरी दी है। वजीर मौसूफ़ ने बताया कि इस स्कीम का मकसद क्रेडिट गारंटी तआवुन फराहम करना है ताकि कारोबारी इदारे मगरबी एशिया के बहरान के सबब पैदा हो जाने वाली मुख्तसर मुद्दती नकद रकम की फराहमी की कमी को पूरा कर सकें। इस स्कीम के तहत MSMEs को 100% क्रेडिट गारंटी फराहम की जाएगी जबकि गैर MSMEs और एयरलाइन सेक्टर को 90% गारंटी फराहम की जाएगी। काबीना ने 2026-27 के गन्ने के सीजन के लिए गन्ने की एक मुनसिफाना और एजाजी कीमत 365 रुपये फी क्विंटल की भी मंजूरी दी है जो 10.25% की बुनियादी रिकवरी शरह पर मबनी है। जनाब वैष्णो ने बताया कि इस फैसले से गन्ने के तकरीबन 5 करोड़ किसानों को फायदा होगा जबकि चीनी की मिलों और इससे मुताल दीगर सरगर्मियों से वाबस्ता तकरीबन 5 लाख कारकुनों को भी फायदा होगा। मरकजी काबीना ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 2 मजीद सेमीकंडक्टर प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी है जिसमें मुल्क का पहला कमर्शियल मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले प्रोजेक्ट शामिल है जो गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पर मबनी है। इसके साथ सेमीकंडक्टर की पैकिंग की सहूलत भी शामिल है। जनाब वैष्णो ने बताया कि मंजूर शुदा तजावीज के तहत तकरीबन 3,936 करोड़ रुपए की मजमू सरमायाकारी के साथ गुजरात में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट कायम किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इन प्रोजेक्टों से तवक्को है कि तकरीबन 2,230 तरबियत याफ्ता पेशेवर अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे।
1: अब तक अपन ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं एक एक सेक्टर को लेके किए और अब डिस्प्ले वाला अपने पास बाकी था तो ISM 1.0 का लास्ट 2 प्रोजेक्ट आज के अप्रूव हुए। उसमें पहला प्रोजेक्ट हुआ डिस्प्ले जिसमें कि पहली माइक्रो LED का फैब इंडिया में लगेगा। करीब 3,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा। सेकेंड प्लांट आज अप्रूव हुआ है SSPL का, सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये सूरत के पास में है और ये बेसिकली चिप्स बनाएगा।
0: मरकजी काबीना ने आज पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद के तरमीमी बिल 2026 पेश करने की तजवीज़ को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मरकजी काबीना की मीटिंग के बाद नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए इत्तलात नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णो ने कहा कि इस बिल के जरिए सुप्रीम कोर्ट जजों की तादाद एक्ट 1956 में तरमीम की जाएगी ताकि सुप्रीम कोर्ट में जजों की मंजूर शुदा तादाद में 4 का इजाफा किया जा सके। इस तरमीम के बाद भारत के चीफ जस्टिस के अलावा जजों की तादाद मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जजों की तादाद में इजाफे से सुप्रीम कोर्ट ज्यादा मौसर और बेहतर अंदाज में काम कर सकेगा जिससे मुकदमात के जल्द फैसले और फौरी इंसाफ की फराहमी में मदद मिलेगी।
1: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं और ये जजेस बढ़ाए गए।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के फुजैरा में किए गए हमलों की सख्त मजम्मत की है जिनमें 3 भारतीय शहरी जख्मी हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा है कि शहरियों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाना नाकाबिले कबूल है। उन्होंने कहा कि भारत मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ यकजहती का इजहार करता है। उन्होंने इस बात का इरादा किया कि सभी मामलात बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए पुरअमन तरीके से हल किए जाने चाहिए। जनाब मोदी ने इस ज़रूरत को उजागर किया कि आबनाए हरमुज से बिला रुकावट और महफूज जहाज़ों का गुजरना इलाकाई अमन इस्तेहकाम और आलमी सतह पर तवानाई की फराहमी के लिए ज़रूरी है। ये आकाशवाणी है। मगरबी बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में असम्बली इंतखाबात के नतज के ऐलान के बाद हुकूमत की तश्कील के सिलसिले में सियासी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात में BJP की शानदार जीत के बाद रियासत में नई हुकूमत की तश्कील और हलफबरदारी की तकरीब के लिए तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। तो है कि काबीना के नए अरकान इस माह की 9 तारीख को हलफ लेंगे जो गुरुदेव रविंद्र टैगोर का योम पैदाइश है। हलफबरदारी की तकरीब में उम्मीद है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखला अमित शाह शरीक होंगे। तमिलनाडु में अदाकार से सियासतदान बने सी जोसेफ विजय की तमिलागा वेटरी कजगम TV के रियासत में वाहिद सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है।

0: सर आम जिंदगी हूं रफ्तार तूत तेज बजोमुत कि कह पोज या कह चूह हसा चु यमी सु बयान करान चु सु चु बयान करान करना से सुते सु प्राणा
1: ओके ये छ अति मकला ना
0: अति इसने हसा चु अफसान निगारस पे वनक मुतवजी दुनिया म छोड़ दित एम खतर मोरूज करो सु चु अत इजारस योय वना राय
1: ओके
0: ठीक सु चु वना ये छ अबुक अमुक जवाब
1: ठीक
0: मगर कुलशत पांच शीत आसपास हालस रोत नुत वन जिक्र अमक फॉरवर्डस मे हरिकृष्ण कौल साहब लेखान दपान हे आज हसा इस पे पायस पेमित अस फिक्र तोर्मुत यह कि जन यह नरेटिव लिटरेचर अफसानवी अदब अत मा हयती शोबद बजे तूत खास माने
1: कहें
0: यूत माने तजुर्ब किस तंजरस
1: ठीक
0: सो रवायती अंदाज मन सो जदीद अंदाज मन यूत सोन तजुर्ब
1: आूत
0: लबि अफसान वही
1: ठीक
0: अगर सर हयती शोबद बजे आन से कर
1: कहें यह बाजे कह नफसियती कैफियत तहन इंतार
0: इसलिए
2: जदीद अफसान बड़े रिच अफसान तो बने वो तो मगर तुम क्या जदीद क्या अब तुम तय तेल गुन मुत कर जदीद कत करो सो त्रो अगर जो आसान तखलीकार तम समानस तादे सह चेंज ग जमान पे जमान मतलब दपो सू क्या कोशिश कर यह जमान बदलान जमान किस बदलाव सोरे बदलान सू जो तखयल मुख्तलि जमान चंड कर अगर ये
1: सद बिल्कुल तखयल ताकत
2: तथ ताकत तो यह बितुर कोत लखन वालस
1: ठीक
2: जो सह काचे रट सह
1: तखयल के मदद खूबसूरत बन
2: यह सारी खत बड़ कथ यही तो लिटरेचर तो हमेशा इजतमी
1: ठीक
2: यह कैसा समाजस मम तरीक यम मसल समाजस मतलान
1: ठीक
2: तम चु लिहाजा कर अकाश बना लिटरेचर
1: ठीक प्रोग्राम किस आखिरी मरहलस पेटन

0: सुनते इस प्रोग्राम संगरमाल भोजन प्रोग्राम एक प्रोड्यूसर छे सतीश विमल।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
0: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, बीटा वेव के अलावा एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समय समाप्त करें फिल्मी नगमों का फरमाइशी फोन प्रोग्राम। हेलो, आपकी फरमाइश।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: जी जी
0: अल्हम्दुलिल्लाह। कमल
1: असल
0: छो
1: बोल छो शबीर अहमद डेंगे बचा रफियाबाद।
0: शबीर अहमद रफियाबाद पेट।
1: जनाब
0: शबीर सब क्या छे करान?
1: जनाब घर की कम करान
0: जमींदारी।
1: जनाब
0: बिल्कुल, चलो वारिया असल कम छी। वन तो शबीर सब आज कुछ हु बात छु तय बोजुन।
1: बोझो सनम देवाफाज
0: सनम बेवफा, अमे कुछ हु
1: टाइटल सांग
0: जरूर बोझनाओ तो ही बर्तन तो ऐसे छबे का।
1: जनाब मे सामने घर वाली शकीला बेगम
0: अच्छा
1: राशिद अहमद फैजान अहमद।
0: शबीर साहब सठा शुक्रिया तुहन कॉल करने बापत। वातनाओ तो तम फिल्म सनम बेवफा हो खूबसूरत नगमा।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: रोहित दीदी का इस प्रोग्राम में मैं तहे दिल से वालिहाना इस्तकबाल करता हूँ।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: उम्मीद है कि जिस तरह सकीना दीदी ने हमारा साथ दिया है, उन्हीं की तरह आप भी हमारा साथ निभाओगी।
0: इंशाल्लाह ज़रूर साथ रहेगा, इंशाल्लाह हमेशा, क्योंकि जब तक आपका और हमारा साथ बना रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तब तक ये गुलदस्ते ये सौगातें आकाशवाणी पे आपके लिए हमेशा आती रहेंगी।
1: जी बिल्कुल, आपने इससे पहले भी FM 2 पे फोन इन प्रोग्राम किए थे तो वो भी बहुत अच्छे किए थे। उम्मीद है कि आप उसी तरह ये प्रोग्राम भी अच्छी करोगी।
0: इंशाल्लाह। अपना नाम बताएं।
1: जी, साहिल बात कर रहा हूँ।
0: साहिल कहाँ से?
1: साहिल डार सोरा से।
0: साहिल डार। साहिल आप कैसे हैं?
1: बस मैं ठीक हूँ दीदी, आप सुनाए, आप भी ठीक
0: अल्हम्दुलिल्लाह,
1: हो?
0: बिल्कुल खैरियत से। अल्लाह करे कि सब खुश रहे, खुशहाल रहे और ये प्यार ऐसे ही बना रहे। साहिल क्या सुनना पसंद करेंगे आज?
1: जी दीदी, आज तो कुछ समझ ही जाता है, इतनी खुशी हुई है आज।
0: बहुत बहुत शुक्रिया साहिल। यकीन माने हमें भी बहुत खुशी हो रही है जब हम अपने लिसनर्स के साथ प्रोग्राम जरिए या प्रोग्राम के वसातत से जुड़ जाते हैं, बहुत खुशी होती है।
1: जी शुक्रिया दीदी, आपका आपका जो ये अंदाज है वो बहुत ही अच्छा अंदाज है आपका,
0: बहुत
1: क्योंकि आपने
0: शुक्रिया।
1: FM 2 पे बहुत सारे प्रोग्राम किए,
0: थैंक यू
1: चाहे वो
0: सो मच।
1: ईमेल्स पर मबनी हो या फोन इन प्रोग्राम,
0: सराहना
1: तो
0: करने के
1: बहुत
0: लिए बहुत शुक्रिया साहिल, क्योंकि देखिए हमारी यही कोशिश रहती है, यकीन माने हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है। प्रोग्राम कोई भी आकाशवाणी पे जाता है, हम एंटरटेनमेंट के साथ साथ लिसनर्स तक इन्फॉर्मेशंस भी
1: जी
0: पहुंचाते हैं,
1: बिल्कुल
0: ताकि
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल
0: लिसनर्स का जो है एंटरटेन भी हो और फायदा भी हो।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: आज
1: बिल्कुल।
0: साहिल कौन सा नगमा सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है दिल है तुम्हारा।
0: दिल है तुम्हारा, बहुत ही
1: जी
0: खूबसूरत ये मूवी है, तो बताएं इसका कौन सा नगमा सुनेंगे?
1: इसका एक बहुत ही प्यारा नगमा है, चाहे जुबान से कुछ ना कहो ए मेरे सनम, आंखें तो कह रही है कि तुम्हें मुझसे प्यार है।
0: बिल्कुल। आपके साथ और कौन सुनेगा?
1: जी बिल्कुल, पहले तो जितने भी इस वक्त ये हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं वो सब सुनेंगे,
0: हाँ
1: और ये मेरे भाई दो मुश्ताक और इम्तियाज,
0: जी।
1: और ये गौरा गांधरबल से फारूक अहमद मलिक, फयाज अहमद गिल्लू,
0: जी।
1: मोहम्मद अल्ताफ वार, और ये मीरपुरा से बशीर अहमद कुंदू, नज़ीर अहमद कुंदू।
0: चलिए साहिल, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म दिल है तुम्हारा से ये खूबसूरत सा नगमा आपके लिए और आपके साथियों के लिए और हमारे बाकी लिसनर्स के लिए भी।
1: शुक्रिया दीदी, आपका भी। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: अस्सलाम वालेकुम दीदी।
0: वालेकुम अस्सलाम
1: दीदी आप ठीक हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: टेलर शौकत अर्ज कर रहा हूँ, जरीपुर। बहुत शौक था दीदी के साथ बात करने के लिए, आज तो मुलाकात हुआ।
0: टेलर शौकत कहां से?
1: जी जरीपुर अत्रगांव से दीदी।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक हूँ दीदी। आप दीदी ठीक हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए, आप कैसे हैं?
1: बस ठीक हूँ दीदी। इस वक्त चल रहा है मेरा काम, शॉप दीदी पर हूँ अभी, टेलर काम कर रहा हूँ
0: माशाल्लाह
1: दीदी।
0: माशाल्लाह। अभी अगर देखा जाए, शादियों का सीजन है, देखा जाए तो ईद की आमद है, तो इतना मसरूफ होने के बाद भी जो है आपने अपना कीमती वक्त निकाल के कॉल किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या सुनेंगे आज आप?
1: दरअसल दीदी आप ये तो मोहब्बत करवाता है दीदी, वरना तो इतना बिजी हूँ पूछो मत।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और
1: क्योंकि
0: आप
1: जो
0: जी
1: भी रेडियो है ना सर, उनके साथ हम बहुत दिल से मोहब्बत करते हैं दीदी, कसम से।
0: शौकत साहब, देखिए आपके इस मोहब्बत की हम कद्र करते हैं और यही दुआ करते हैं कि लिसनर्स और हमारे बीच इंशाल्लाह हमेशा ये प्यार बरकरार रहे।
1: जी जी दीदी, हम भी यही दुआ करते हैं, हमारी दीदी भी सलामत रहे।
0: आमीन सुमा आमीन। तो क्या सुनना पसंद करेंगे आज?
1: फिल्म का नाम है रंग, हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता।
0: फिल्म रंग से हर सवाल।

0: सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, यकीनन हर सवाल का जवाब मिलना मुश्किल है कि नहीं?
1: दीदी, इसलिए मैं ये गाना सुनना चाहता हूँ, क्योंकि कोई कोई लिसनर आता है ऐसा, क्योंकि ऐसा कपड़ा बनाओ ऐसा गाना, फिर हमको नेट का इस्तेमाल करना कर पड़ता है, इसीलिए मैंने यही गाना
0: जी, बहुत
1: चुना
0: अच्छी पसंद है, लेकिन आप उनके हर सवाल का जवाब फिर कैसे दे देते हैं?
1: है। नेट के जरिए हम
0: अरे
1: देते
0: वाह, बहुत अच्छी बात है,
1: हैं।
0: यानी इंटरनेट का फायदा आप भरपूर उठाते हैं।
1: जी बिल्कुल दीदी, बिल्कुल दीदी, क्योंकि आजकल तो जमाना ऐसा है कि मन पसंद सूट बनाना पड़ता है ऐसा लिसनर आजकल के, ये पुराना काम नहीं है दीदी, पुराने तो ऐसे ही चलते थे, लेकिन आज मन
0: बिल्कुल
1: पसंद सूट बनाना पड़ता है दीदी,
0: एग्जैक्टली,
1: बहुत ही
0: आजकल
1: मेहनत लगती है।
0: जी बिल्कुल डिजाइनर कपड़े बनते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को भी इस चैलेंज के लिए तैयार रहना पड़ता है।
1: बिल्कुल दीदी, बिल्कुल, और मेरा मन तो यही चाह रहा है कि दीदी के लिए भी अच्छा सूट
0: इंशाल्लाह
1: बनाएंगे
0: जरूर, इंशाल्लाह जरूर बनवाएंगे आपसे भी, आपके साथ आपके साथी जरूर होंगे।
1: जी बिल्कुल, साजिदा मंद मगलू ये भी हमारे साथ काम कर, टेलर फिरदौस लंगेट से दीदी।
0: और है कोई?
1: बस दीदी शुक्रिया,
0: शौकत जी, आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सुनिए अपने साथियों के साथ अपनी पसंद का नगमा।
1: सलाम अलैकुम दीदी।
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: मैम, आप ठीक हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रहे हैं
1: मैं उरनहाल अनंतनाग से एजाज सूफी बात कर रहा हूँ।
0: आप? कैसे हैं?
1: बस अल्लाह का करम है। और आप भी ठीक हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं अजाज साहब, क्या करते हैं?
1: एक्चुअली मैं, मेरा कार वॉशिंग स्टेशन है, मैं वही काम करता हूँ। मैम
0: चलिए, बहुत अच्छा। तो कैसा काम का चल रहा है आजकल?
1: बस अल्लाह का फजल है, बहुत बढ़िया चल रहा है।
0: चलिए, दुआ है कि इंशाल्लाह काम में बरकत हो, तरक्की हो। आज एजाज साहब को क्या सुनना है?
1: फिल्म का नाम है याराना,
0: याराना फिल्म से कौन सा नगमा?
1: वो है ना, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ
0: वाह
1: ऐसा
0: वाह,
1: याराना।
0: बहुत ही
1: वैसे
0: खूबसूरत
1: तो
0: नगमा।
1: सगीना दीदी इसकी रिकॉर्डिंग कर रही थी।
0: जी, आज उनकी जगह मैं हूं। तो ये तो विमान उड़ता रहता है, लेकिन पायलट्स बदलते रहते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर से उड़ान, कभी वो, कभी मैं, कभी कोई और, है कि नहीं?
1: मैम आपका नाम क्या है?
0: रोहित मुश्ताक।
1: अच्छा जी, खुदा आपको हमेशा खुश रखे। जी
0: आमीन सुम्मा आमीन। आपके साथ और कोई साथी है?
1: मैम, मेरा एक फ्रेंड सर्कल है, उनके नाम

0: मैं लेना चाहूंगा।
1: जरूर।
0: पहले है उमर फारूक शेख, आकिब गुलजार भट्ट,
1: जी
0: आसिफ सलाम, उबैद हुसैन शेख और मेहराज वानी।
1: जी, और कोई?
0: बस शुक्रिया मैम।
1: चलिए एजाज साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। सुनिए अपने सभी साथियों के साथ याराना फिल्म से ये नगमा।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: हमें ठीक हो
0: अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रही हैं आप?
1: जी? मैं खाग नौगाम से बोल रही हूँ जी।
0: कहाँ
1: ना,
0: से?
1: डिस्ट्रिक्ट बडगाम से, खाग इलाके से जी।
0: अच्छा जी, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम मुबीना
0: मुबीना जी क्या करती है?
1: जी। मैं घर का ही काम करती हूँ,
0: जी,
1: शाल का, शाल काम।
0: बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया काम है। मुबीना जी प्रोग्राम सुनती हैं,
1: हाँ,
0: तो
1: शाल
0: कैसे लगते हैं
1: प्रोग्राम
0: आपको आकाशवाणी पे हमारे प्रोग्राम?
1: बहुत अच्छे लगे
0: बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज क्या सुनना पसंद करेंगी आप?
1: जी। फिल्म का नाम मुझे पता नहीं, गाने के बोले ना, वो जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल रोना।
0: जरूर आप तक पहुंचाएंगे। आपके साथ और कोई साथी?
1: मेरी छोटी बहन है शबनम और मेरी कजन शबनम, दोनों शबनम।
0: अच्छा, जरूर
1: हाँ
0: पहुंचाएंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है,
1: जी।
0: अगर ये
1: मैं
0: नगमा मौजूद हमारे पास नहीं होगा तो कौन सा नगमा हम आपके लिए प्ले करें?
1: ये फिर कोई आप

0: पसंद पे कोई अच्छा सर
1: यानी हमारी
0: वो।
1: पसंद पे आप अब कोई नगमा सुनना चाहेंगी?
0: हाँ जी मैम,
1: मुबीना जी, ज़रूर हम जो है अपनी पसंद का नगमा आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं। आप सुनिए अपने सभी साथियों के साथ ये खूबसूरत सा नगमा। कॉल करने के लिए
0: अल्लाह
1: शुक्रिया।

मौजू का इंतखाब किया गया है वो है कैंसर से बचाओ। मौजू पर तफसीली मालूमात फराहम करने के लिए हमने मदु किया है नामवर माहिर सरतान डॉक्टर शबनम बशीर को। अगर आप हमारे मेहमान मौलिस से मौजू की मुनासबत से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो रब्ता करें। हमारा फोन नंबर है 01942483064। जी हाँ, फोन नंबर है 01942483064। रिकॉर्डिंग का वक्त रहेगा दिन के 2 बजे से 3 बजे तक। ये थी एक इतला हमारे प्रोग्रामों के हवाले से।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव एफआरपी प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमी कंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक तथा ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से होता रहा है। उन्होंने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नवनिर्वाचित

0: विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में जापान की आर्थिक सुरक्षा मामलों की मंत्री किमी ओनोडा से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के महत्व पर सार्थक बातचीत की। भारतीय नौसेना का जहाज INS सुनैना म्यांमार के यांगोन बंदरगाह पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये तैनाती और बंदरगाह पर आगमन भारत के महासागर विजन का हिस्सा है। ये तैनाती हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोगात्मक समुद्री गतिविधियों में भारतीय नौसेना की भूमिका को भी दर्शाता है। दिल्ली सरकार ने वोकेशनल और समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले शिक्षकों के वेतन में भारी वृद्धि को मंजूरी दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में विभिन्न विषयों में कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने वाले लगभग 1130 वोकेशनल शिक्षकों को अब प्रति माह 38,100 रुपये मिलेंगे। भारत ने ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में इतिहास रचते हुए T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बना था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by R.S. Raghu. The Union Cabinet has approved the Mission for Cotton Productivity, Kapas Kranti, with an outlay of over 5,600 crore rupees to address bottlenecks, declining growth and quality concerns in India's cotton sector. Addressing a press briefing in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the mission aligns with the government's 5F vision, farm to fibre, to factory, to fashion, to foreign, and focuses on enhancing cotton productivity. This project is worth 5,660 crore rupees and consists of three components. The first component is research. The second is enhancing production technologies. And the third is encouraging farmers towards new age fibers. This reflects the Prime Minister's 5F vision, creating fiber from the farm, moving from fiber to the factory, from factory to fashion, and maintaining the entire cotton supply chain from fashion to foreign shores. The Union Cabinet has also approved the Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0. Under the scheme, a 100% credit guarantee will be provided for MSMEs, while a 90% guarantee will be extended to non-MSMEs and the airline sector. The Union Cabinet has also approved two more semiconductor projects under the India Semiconductor Mission. These include the country's first commercial mini micro LED display facility based on gallium nitride technology, along with a semiconductor packaging facility. Mr. Vaishnaw said the approved proposals will establish semiconductor manufacturing units in Gujarat with a cumulative investment of around 3,936 crore rupees. The Union Cabinet today approved a proposal to introduce the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 in Parliament. Mr. Vaishnaw said the bill seeks to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 to increase the sanctioned strength of judges in the Supreme Court by 4, from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, also approved three multi-tracking railway projects with a total cost of 23,437 crore rupees. The CCEA has approved the development of a state-of-the-art ship repair facility at Vadinar, Gujarat, marking a major expansion of the national ship repair ecosystem. Following the BJP's sweeping victory in the West Bengal Assembly elections, the new cabinet members are likely to be sworn in on the 9th of this month, the birth anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore. In Tamil Nadu, actor-turned-politician C. Joseph Vijay's Tamilaga Vetri Kalagam, TVK, has emerged as the single largest party in the state, winning 108 seats. following the party's strong electoral debut

गजलों का फरमाइशी हफ्तवार प्रोग्राम हेलो महफिल गजल पेश होगा शब 10 बजे मेजबान इरम कुरैशी। सुबुगाई पेश होगा हमारी नशरियात के आगाज में सुबह 6:35 पर लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह समाप्त करें सुबह 7:10 पर प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करेंगे जहूर अहमदार सादत खान। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम जोर तो जहां और ब्रॉडकास्ट होगा सुबह 8:45 पर मकामी अखबार की सुर्खियां पेश होंगी सुबह 9 बजे। कश्मीरी मौसीकी पेश होगी सुबह 9:30 बजे। सूफी ख्यालात पर मबनी प्रोग्राम सूफी सदा रोज की तरह नश्र होगा सुबह 10 बजे। प्रोग्राम हजरत शेख बहाउद्दीन गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह से मुतल्लिक पेश होगा। तहरीर फयाज अहमद खुशखावा रावी गुलशन बदरनी और शाहिदा अलवी। छकरतरू पेश होगी सुबह 11:30 बजे दोपहर 2:30 बजे और सपहर 4:30 बजे मारूफ सूफी शायर लाला आरगम की बरसी के मौके पर इन्हीं का कलाम पेश होगा सुबह 11:30 बजे कलामी लाला आरगम पेश करेंगे फारूक अहमद गनाई और साथी दोपहर 2:30 बजे यही कलाम पेश होगा पेश करेंगे गुलाम नबी बुलबुल और साथी और सपहर 4:30 बजे कलामी लाला आरगम पेश होगी पेश करेंगे बशीर अहमद यतो और साथी।

वक्त मिला ले 11:22 और 20 सेकेंड हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz गीत मेरे मन मीत आप सुन रहे हैं। अगला गीत है आशा जी की आवाज में, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, फिल्म का नाम है डॉन। और इसके बाद होगा कारवा फिल्म से गीत, लता जी की आवाज़ है और एक बार फिर से आर डी बर्मन का संगीत है। और आज गीत मेरे मनमीत में आपके संग है अर्पणा।

गीत मेरे मनमीत सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 11:32 और 40 सेकंड हो चुके हैं। अगला गीत आप सुनेंगे आरडी बर्मन का ही संगीत है और आरडी बर्मन की ही आवाज है। फिल्म शोले से गीत होगा और इसके बाद बप्पी लहरी के संगीत से सजा हुआ गीत होगा और फिल्म का नाम है डिस्को डांसर। बैक टू बैक इन दो गीतों का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड पर। आज आपके संग है अर्पना और आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत।

11:45 और 10 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत।

11:56 हो चुके हैं। ये गीतों का जादू छाया रहेगा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अगला गीत मजरू सुल्तानपुरी का लिखा आरडी बर्मन का संगीत होगा, किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में फिल्म हम किसी से कम नहीं। और इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनिएगा समाचार। गीत मेरे मनमीत से अर्पणा को दे इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपये पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स हैं देश में, उन सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बताया कि पिछले महीने ही फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की थी और कहा था कि भारत भाग्यशाली है जो उन्हें श्री मोदी जैसा नेता मिला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कशगम के नव निर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली में अपने प्रमुख शोध पत्रिका

युवा संचार माध्यम का विशेष स्मृति अंक जारी किया। ये अंक भारत में हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रकाशित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ के निराला उपस्थित थे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन ने नाबाद 87 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्तिक शर्मा ने 41 रन का योगदान दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने 155 रन बनाए थे। मौसम विभाग ने बिहार और पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैकाल, केरलम और माहे में तेज बारिश की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

101.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:11 और 10 सेकेंड। निशिगंधा प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार की आवाज़ के साथ।

कभी कभी ना चेहरे का जादू सच में कोई जादू नहीं होता, बस हमारी नजर का धोखा होता है। मतलब सामने वाला वही होता है पर हम उसे ज्यादा खास बना देते हैं अपनी सोच से या फिर अपने प्यार से। और फिर एक दिन ऐसा भी आता है जब वही चेहरा होता है जो जादू लगता है, बिल्कुल साधारण वही चेहरा जो हमें पहले जादू सा लगता था बिल्कुल साधारण सा लगने लगता है। होता है आपके साथ ऐसा? अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में।

ये गाना सुनते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी जिंदगी थोड़ा स्लो मोशन में चलने लगी है. ना कोई भाग दौड़ है, ना कोई टेंशन लग रही है, बस बारिश है, आपका साथ है और साथ में है कुछ प्यारे प्यारे गाने. अगला गीत लता जी की आवाज़ में.

एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन, और बहुत गिनने के बाद शायद अनंत आता होगा। पर मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे बाद क्या आता है। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:34 और 25 सेकंड। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल। निशिगंधा सुन रहे हैं आप। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में।

वैसे मेरा नाम तो मंजू है और आप मुझे सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। रात का समा है, चांदनी रात है और ऐसे में दिल अक्सर थोड़ा सा शायर हो ही जाता है। और जब दिल शायर हो जाता है

फिर क्या होता है? फिर होती हैं बहुत सारी बातें, पर बातें वही रहती हैं, लफ्ज़ बदल जाते हैं। अगला गीत अभी के लिए।

100.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ मंजू। वक्त हुआ है 12:50 और 30 सेकंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम निशिगंधा।

ये तो सच बात है कि जब भी हम आपसे बातें करते हैं, आपसे जुड़ते हैं, तो लाखों ख्वाब निगाहों में सिमट कर आ जाते हैं, और उन लाखों ख्वाबों में सारे जो ख्वाब होते हैं वो खुशियों वाले हों ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता। उसमें से कुछ उदासी वाले भी होते हैं, मायूसी वाले भी होते हैं। तो थोड़ी सी बात रियलिटी की भी कर ली जाए। किसी भी इमोशन का असर हमारे दिलो दिमाग पर तब पड़ता है, तब तक ही पड़ता है जब हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। क्या हो अगर हम उसे एक्सेप्ट ही ना करें? शायद हम पर कोई असर ही नहीं होगा। अगर मैं कहूँ कि नेगेटिव थॉट एक्सेप्ट ही नहीं करना है, तो इसका मतलब हुआ कि हम कभी उदासी नहीं होंगे। मैं ऐसे थोड़ी कहती हूँ कि मुस्कुराओ, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो आप अपने साथ सबसे ज़्यादा होते हैं, और जब आप अपने साथ सबसे ज़्यादा होते हैं तो फिर मेरे साथ खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। अगला गीत आशा जी की आवाज़ में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमी कंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है।
1: अब तक अपन ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं एक एक सेक्टर को लेके किए, और अब डिस्प्ले वाला अपने पास बाकी था, तो ISM 1.0 का लास्ट 2 प्रोजेक्ट आज के अप्रूव हुए। उसमें पहला प्रोजेक्ट हुआ डिस्प्ले, जिसमें कि पहली माइक्रो LED का फैब इंडिया में लगेगा। करीब 3,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा। सेकेंड प्लांट आज अप्रूव हुआ है SSPL का, सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये सूरत के पास में है और ये बेसिकली चिप्स बनाएगा।
0: मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नव निर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1,400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल है। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली में अपनी प्रमुख शोध पत्रिका संचार माध्यम का विशेष स्मृति अंक जारी किया। ये अंक भारत में हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रकाशित किया गया। नीति आयोग ने सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य वास्तविक समय में शासन को मजबूत करना, विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय बढ़ाना और योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाना है। पोर्टल का शुभारंभ नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि छिब्बर ने किया। IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन ने नाबाद 87 रन बनाए और उन्हें प्लेयर

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 12 सेकंड। गीत सुहाने प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं रफी साहब की आवाज़ के साथ।

रफ़ी साहब की आवाज़ में सुना आपने ये गीत। फिल्म का नाम था चौदहवीं का चांद, संगीत था रवि का और गीतकार थे शकील बदायूनी। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1960 में और इस फिल्म का निर्देशन किया था मोहम्मद सादिक ने, निर्माण किया था गुरुदत्त साहब ने और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी गुरुदत्त, वहीदा रहमान और रहमान ने। 1959 की फिल्म कागज़ के फूल की असफलता के बाद ये फिल्म गुरुदत्त साहब के लिए कामयाब फिल्म रही थी और साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी ये फिल्म। अब सुनवाते हैं आपको अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

फिल्म का नाम दिल अपना और प्रीत पराई, आवाज़ थी लता मंगेशकर की, संगीत शंकर जयकिशन का और गीतकार थे शैलेंद्र साहब। ये फिल्म 1960 में प्रदर्शित हुई थी और ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण किया था एस ए बागर ने और इस फिल्म को लिखा और निर्देशित किया था किशोर साहू ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राजकुमार, मीना कुमारी और नादिरा ने। इस फिल्म की कहानी एक सर्जन के इर्द गिर्द घूमती है और ये फिल्म जो है वो अभिनेत्री मीना कुमार के करियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और हम सुनवाते हैं अगला गीत रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफ़र मंजू। वक्त हुआ है 1:37 और 10 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में।

नीलकमल फिल्म से रफ़ी साहब की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गीत। संगीत था रवि का और ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी 1968 में और इस फिल्म में वहीदा रहमान, राजकुमार, मनोज कुमार और ललिता पवार मुख्य भूमिका में थे। और अब सुनवाते हैं आपको अगला गीत रफ़ी साहब और आयशा जी की आवाज़ में, फिल्म तुमसा नहीं देखा।

वक्त हुआ है 1:51 और 30 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी मिली है।
1: अब तक अपन ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं एक एक सेक्टर को लेके किए, और अब डिस्प्ले वाला अपने पास बाकी था तो ISM 1.0 का लास्ट 2 प्रोजेक्ट आज के अप्रूव हुए। उसमें पहला प्रोजेक्ट हुआ डिस्प्ले, जिसमें कि पहली माइक्रो LED का फैब इंडिया में लगेगा। करीब 3,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा। सेकेंड प्लांट आज अप्रूव हुआ है SSPL का, सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड है, और ये बेसिकली चिप्स बनाएगा।
0: मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को भी मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कशगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन SIS से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश रचने के मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ये आरोपी सार्वजनिक जगहों पर रायसिन नाम के खतरनाक जहर से लोगों को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे थे। भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $1,10,000,000,000 के निवेश की घोषणा की है। ये निवेश एरोस्पेस, रक्षा, ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। ये घोषणा वॉशिंगटन के पास मैरीलैंड के नेशनल हार्बर में आयोजित सेलेक्ट USA निवेश शिखर सम्मेलन में की गई। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि उस पर लगातार दूसरे दिन मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं। ईरान ने इन घटनाओं में किसी भी भूमिका से सख्ती से इनकार किया है। ये घटनाएं ऐसे समय में हो रही हैं जब क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है और हॉर्मूज जल डमरू मध्य में समुद्री सुरक्षा को लेकर अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान जारी है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चल रही एशियन अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के युवा मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

इतनी हसीन, इतनी जवां रात, क्या करें? इतनी हसीन, इतनी जवां रात, क्या करें? जागे हैं कुछ अजीब से जज्बात, क्या करें? पेड़ों के बाजुओं में महकती है चांदनी, बेचैन हो रहे हैं ख्यालात, क्या करें? सांसों में घुल रही है किसी सांस की महक, दामन को छू रहा है कोई हाथ, क्या करें? शायद तुम्हारे आने से ये भेद खुल सके, शायद तुम्हारे आने से ये भेद खुल सके। हैरान है कि आज नई बात, क्या करें?

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप स्वादिष्ट प्लव 1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 42 सेकेंड। रात सुरमई प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के साथ।

इश्क में ऐसा ही होता है, दिल घर बन जाता है और आंखें संसार। इश्क में कभी कभी पागलपन भी बहुत ज़रूरी होता है, और अगर ये पागलपन इस गाने तक पहुंच जाए तो फिर सोने पर सुहागा। फिलहाल तो कार्यक्रम और इस पागलपन को, दोनों को आगे बढ़ाने का टाइम है, और सुनते हैं अगला गीत मुकेश, और मुकेश की आवाज़ में।

और मुझे लगता है पूछना चाहिए, क्योंकि पूछने और बताने से दर्द कम हो जाता है। जब बात दीवानगी की चली है तो ये गाना सुनना तो बनता है।

तू में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमान मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा, जा।

0: फूलों की तरह लब खोल कभी, खुशबू की जबां में बोल कभी। फूलों की तरह लब खोल कभी, खुशबू की जबां में बोल कभी। अल्फाज परखता रहता है आवाज हमारी तोल कभी। अनमोल नहीं लेकिन फिर भी, पूछ तो मुफ्त का मोल कभी। खिड़की में कटी हैं सब रातें, कुछ चौरस थी कुछ गोल कभी। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफ़र मंजू। वक्त हुआ है 2:34 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।
1: पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर।

मुझे लगता है प्यार अगर पूरा है तो फिर पल भर का ही काफी है। एक पल बगैर देखे उसे क्या गुजर गया, एक पल बगैर देखे उसे क्या गुजर गया, ऐसे लगा कि एक जमाना गुजर गया। प्यार को संगीत में सुन

आपने कभी? आइए अगला गीत सुनाते हैं आपको लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, किशोर कुमार की आवाज में।

ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, मुझे मुसलसल देख रहे हो तुम भी ना। दे जाते हो मुझको कितने रंग नए, जैसे पहली बार मिले हो।

ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, मुझे मुसलसल देख रहे हो तुम भी ना, दे जाते हो मुझको कितने रंग नए, जैसे पहली बार मिले हो तुम भी ना। वक्त हुआ है 2:51 और 13 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि

0: थी और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दे दी है।
1: अब तक अपन ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं एक एक सेक्टर को लेके किए, और अब डिस्प्ले वाला अपने पास बाकी था तो ISM 1.0 का लास्ट 2 प्रोजेक्ट आज के अप्रूव हुए। उसमें पहला प्रोजेक्ट हुआ डिस्प्ले, जिसमें कि पहली माइक्रो LED का फैब इंडिया में लगेगा, करीब 3,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा। सेकेंड प्लांट आज अप्रूव हुआ है SSPL का, सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये सूरत के पास में है और ये बेसिकली चिप्स बनाएगा।
0: मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री JP नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने सूचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कशगम TVK के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने C. Joseph विजय को अपना नेता चुना है। भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $1.10 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। यह निवेश एरोस्पेस, रक्षा, ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। ये घोषणा वॉशिंगटन के पास मैरीलैंड के नेशनल हार्बर में आयोजित सेलेक्ट USA निवेश शिखर सम्मेलन में की गई। वहीं अमरीका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने कहा है कि भारत और अमरीका व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के बहुत करीब हैं। उन्होंने बताया कि समझौते के अंतर्गत दोनों देशों का लक्ष्य 2030 तक आपसी व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाना है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल 6 दिन की यात्रा पर ताइवान पहुंचा। ये यात्रा 9 मई तक चलेगी। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख भारतीय राजनीतिक पार्टियों के युवा नेता शामिल है। मंत्रालय ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि अपने यात्रा के दौरान ये नेता ताइवान की सरकारी एजेंसियों से मुलाकात करेंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चल रही एशियन अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के युवा मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। अंडर 15 वर्ग में नोंग पोंग गनबा मेईती पारशांत मोहम्मद ने अपने बेहतरीन जीत दर्ज की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Vietnam Tho Lam in New Delhi today. Both leaders will hold wide-ranging discussions

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 3:11 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हमराही।

कार्यक्रम हमराही में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या, तुझे देखा।

एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, तुझे देखा तुझे चाहा। नजदीकियां भी रखें और कुछ फासले भी रखें, नजदीकियां भी रखें और कुछ फासले भी रखें, हर रिश्ते में नजदीकियों और फासलों का सामंजस्य बनाए भी रखें, पर जब भी लिखे दिखें लड़ने के आसार, पर जब भी दिखे लड़ने के आसार, कृपया उचित दूरी बनाए रखें। 3:18 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। कभी कभी हमारे जीवन में कोई ऐसा इंसान होता ही है जिसके बिना हमारा दिल अक्सर नहीं लगता है। कोई हो या ना हो मेरे पास, कोई हो या ना हो मेरे पास, पर ये रात तो है मेरे साथ। दिन में बहुत शोर है, दिन में बहुत शोर है, पर ये रात है बहुत ही शांत। हर कोई यहाँ सिर्फ अपनी सुनाना चाहता है, हर कोई यहाँ सिर्फ अपनी सुनाना चाहता है, सिर्फ ये रात है जो मुझे सुनती है तसल्ली के साथ। बात जो मैं किसी से नहीं कर पाता, बात जो मैं किसी से नहीं कर पाता, वो बात भी कर लेता हूँ इस रात के साथ, क्योंकि ये रात है सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ। और आप जुड़े रहिए अपने दोस्त अर्चित के साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

3:31 हो चुके हैं। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित।

इस कदर हम थे तन्हा, इस कदर हम थे तन्हा कि तन्हाइयों ने खुद ही मुझसे दोस्ती कर ली। इस कदर हम थे तन्हा कि तन्हाइयों ने खुद ही मुझसे दोस्ती कर ली। घूम रहे हैं अब तन्हाइयों के साथ दिन और रात हम। घूम रहे हैं अब तन्हाइयों के साथ दिन और रात हम, और लोग समझते हैं हम आज भी तन्हा हैं। 3:38 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

0: कोई भी इंसान हमें अच्छा या बुरा अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही लगता है। हमें ज़रूरत है तो वही हमारे लिए बहुत अच्छा, और हमें ज़रूरत ना हो तो वही हमारे लिए बुरा हो जाता है। क्योंकि सूरज हमेशा वही रहता है जो सर्दियों में तो हमें बहुत अच्छा और गर्मियों में हमें उतना अच्छा नहीं लगता। 3:44 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।
1: आज की रात कभी

वो हमें हासिल नहीं होती है, हासिल हो जाए फिर कहाँ उसकी कोई कीमत होती है। हासिल है जो उसे संभाल कर रखिए, हासिल है जो उसे संभाल कर रखिए। जो आपको मिला है उसकी कीमत किसी के लिए आज भी बहुत होती है। 3:56 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे।
1: किसी की कीमत तब तक ही होती है जब तक

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन

0: के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1,00,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दे दी।
1: अब तक अपन ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं एक एक सेक्टर को लेके किए और अब डिस्प्ले वाला अपने पास बाकी था, तो ISM 1.0 का लास्ट 2 प्रोजेक्ट आज के अप्रूव हुए। उसमें पहला प्रोजेक्ट हुआ डिस्प्ले, जिसमें कि पहली माइक्रो LED का फैब इंडिया में लगेगा, करीब 3,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा। सेकेंड प्लांट आज अप्रूव हुआ है SSPL का, सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये सूरत के पास में है और ये बेसिकली चिप्स बनाएगा।
0: मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री JP नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। विदेश मंत्री S. जयशंकर ने कहा है कि दुनिया इस समय तेजी से बदल रही है और कई चुनौतियों का सामना कर रही है। जमैका में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता और नई तकनीकों के कारण हालात जटिल हो गए हैं। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों और वैश्विक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $1,10,000,000,000 के निवेश की घोषणा की है। ये निवेश एरोस्पेस, रक्षा, ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। ये घोषणा वॉशिंगटन के पास मैरीलैंड के नेशनल हार्बर में आयोजित सेलेक्ट USA निवेश शिखर सम्मेलन में की गई। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चल रही एशियन अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के युवा मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। अंडर 15 वर्ग में नोंग पोंगनबा मेईती, पारशांत, मोहम्मद यासिर और निवेश पाल ने अपने अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। रणवीर को वॉक ओवर से जीत मिली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 4:10 हो चुके हैं और अब हमेशा की तरह सुनिए कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

आशा भोसले जी की आवाज में जिंदगी इत्तेफाक है। ता उम्र भटकते रहे मंजिलों की तलाश में, ता उम्र भटकते रहे मंजिलों की तलाश में, मिली जब मंजिल तो पता चला असली सफर तो अब शुरू हुआ है, अभी तक तो सिर्फ भटक ही रहे थे। 4:18 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अपने दोस्त अर्चित के साथ।

लता मंगेशकर जी की आवाज में गीत तेरे साज का। छोटी छोटी खुशियों में ही खुश होना अब सीख लीजिए। किसी बड़ी खुशी का इंतजार अब ना कीजिए। कोई बड़ा गम नहीं है, इसी बात की खुशी मनाइए। गम है दुनिया में कितने हैं गमगीन, यहाँ पर विश्वास ना हो तो किसी से भी पूछ लीजिए। 4:25 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

किशोर कुमार जी की आवाज में दूरियां नजदीकियां बन गईं। 4:30 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं कुछ और प्यारे प्यारे से गीत।

रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, विश्वास अपने पैरों पर रखें। जाना खुद ही पड़ेगा चलकर आपको, जाना खुद ही पड़ेगा चलकर आपको, रास्ते आपको कहीं नहीं पहुंचाते। 4:36 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा।

किशोर कुमार जी की आवाज़ में अभी अभी आपने सुना ये प्यारा सा गाना, जिसके बोल हैं कोरा कागज़ था ये मन मेरा।

मुकेश जी की आवाज में चल अकेला। हासिल है जमाने की खुशियां तुमको, फिर गमों की चर्चा क्यों करते हो। हासिल हैं जमाने की खुशियां तुमको, फिर गमों की चर्चा क्यों करते हो। बैठे तो हो सुकून से घर में, फिर इतना परेशान क्यों लगते हो। परेशानियां तो होती ही हैं सभी के पास दो चार, परेशानियां तो होती हैं सभी के पास ही दो चार, पर तुम हर समय इतना परेशान क्यों दिखते हो। 4:49 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा, मेरे यानी अपने दोस्त अर्चित के साथ।

लता मंगेशकर जी की आवाज़ में दिल ने दिल को पुकारा। 4:54 हो चुके हैं, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुणिमा। लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
1: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत

गत गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। वियतनाम के राष्ट्रपति कल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उनका स्वागत किया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। शपथ ग्रहण समारोह की 9 मई को होने की संभावना है। भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस कथित बयान पर कि वे इस्तीफा नहीं देंगी, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने इन टिप्पणियों को अराजक बताया और इस तरह के बयान देने में संयम बरतने का आग्रह किया। वहीं केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कशगम टीवीके के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समितियां निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों में बुनियादी पढ़ने लिखने और गणना क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने 155 रन बनाए। संजू सैमसन ने नाबाद 87 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्तिक शर्मा ने 41 रन का योगदान दिया। आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 5:11 हो चुके हैं और अब रोजाना की तरह समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है भोर सुहानी। कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ एक बार फिर से आपका दोस्त अर्चित। तो आज का ये प्रोग्राम शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

जन्म जन्म का साथ है। जागना ही है तो हर दिन उम्मीद के साथ ही जागिए, जागना ही है तो हर दिन उम्मीद के साथ ही जागिए, निराशा के साथ जागे तो पूरा दिन निराश ही रह जाएंगे। उम्मीद के साथ ही कीजिए हर काम को, उम्मीद के साथ ही कीजिए हर काम को, कभी न कभी सफल जरूर हो जाएंगे। 5:17 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

किशोर कुमार जी की आवाज में ये दुनिया वाले पूछेंगे। किसी होनहार प्रतिभावान व्यक्ति से जुड़ना है तो उसके शुरुआती दौर में ही जुड़ जाइए। किसी होनहार प्रतिभावान व्यक्ति से जुड़ना है तो उसके शुरुआती दौर में ही जुड़ जाइए। उसके सफलता के शिखर पर पहुंचने का इंतजार ना करें, क्योंकि आप उगते हुए सूरज से तो नजरें मिला सकते हैं, पर दोपहर के तेज सूरज से नहीं। 5:22 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।